0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
1: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
0: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
1: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
0: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
1: बस एक कदम
0: और सपनों को नई रफ्तार।
1: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में आइए
0: या विजिट करें बैंक वेबसाइट।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक
0: सचमुच आपका।

0: कश्मीर योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का

0: सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।

0: के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र सवा साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना ये है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है, उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments, Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today, Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
5: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। जुड़ चुके हैं आप आनंद के साथ एक और प्यारी सी सुबह में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आई होप हमारे सारे लिसनर बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत कर चुके होंगे। जिन लोगों ने रेडियो अभी अभी ट्यून इन किया है, उन सभी का इस्तकबाल करते हैं, पूरे दिल से आपका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ ए मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम दिस इज बिंदास मॉर्निंग। श्रोताओं, बड़ी खूबसूरत सी लाइन आज मैंने पढ़ी तो मुझे लगा आपके साथ जरूर साझा करनी चाहिए। लाइनें बहुत ही खूबसूरत बात लिखी थी कि रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान का साफ होता है। तो इसीलिए कहते हैं स्मरण रहिए, संक और मूर्ख हमेशा दूसरों के बारे में सोचने से और दूसरों के लिए अच्छा सोचकर उनको अच्छी फीलिंग नहीं आती, वो हमेशा चिढ़ते हैं, जेलस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें सबके लिए अपने मन में अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छी जो है चीज़ों को अपने मन में हमें रखना चाहिए सबके प्रति। कोई भी जेलसी की भावना, कोई भी ईर्ष्या की भावना हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आप अपने मन को साफ रखें, अपनी ज़ुबान को भी साफ रखें और अपने दिल को भी साफ रखें। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा सब देखता है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, खुदा, उस सब पर नज़रें रखता है। तो उस परमपिता परमात्मा पर जो है नज़रें, उसकी नज़रें हम सभी पर हैं ना, और हमें भी अपनी नज़रों को उस पर हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन में प्रभु का होगा, एक कहीं ना कहीं प्रभु का भय होगा, प्रभु का डर होगा, तो हम खुद अच्छी चीज़ें करेंगे, गलत चीज़ें हम करेंगे ही नहीं। राइट, फिलहाल जुड़ चुके हैं आप आनंद के साथ। और अगर आज कुछ बेहतरीन करने का प्लान है तो मुझे बताओ यार, 9837896896 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। अपनी गुड मॉर्निंग की शुरुआत आपने कैसे की है? आप ब्लैक टी बना के कर रहे हैं या फिर चाय बनाकर कर रहे हैं अदरक वाली, या फिर आप गुनगुने पानी से शुरुआत कर रहे हैं? आप जो भी जिस भी तरीके से आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, आप मुझे जरा बताओ मैसेज करके 9837896896 पर। चलो, व्हाट्सएप का नंबर रिपीट कर दिया, एक प्यारा गाना, इसके बाद हम लौट कर आएंगे। वक्त हो गया है 8:22। आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ ए मुरादाबाद 89.6। 29 जुलाई है आज, बहुत ही प्यारी तारीख, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी देर में।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या सॉन्ग है, सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। बाजीगर फिल्म का एक गाना, इसको सुन के मजा आ गया। एकदम 90s वाली जो यादें हैं ना, वो एकदम ताजा हो जाती हैं इस गाने सुन के। हाय हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? सुप्रभात, नमस्कारम। आपने रेडियो खोल लिया है भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए, कुछ लोग तो सुबह सुबह अपने काम पर लग चुके हैं और अपने काम को जो है शुरू कर चुके हैं ऊपर वाले का नाम लेकर। बहुत अच्छी बात है, अपनी रोजी रोटी को शुरू करना, उस परम पिता परमात्मा को याद करना, उसके बाद तो यकीन मानिए आपका काम ऐसे छू मंतर तरीके से आगे बढ़ेगा ना। जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उसका शुक्राना करते हैं, अपनी हर चीज़ के लिए उसको शुक्राना अदा करते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ हो, हमारा परिवार हो, हमारी फैमिली हो, हमारा काम हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आपके काम को और आपकी फैमिली को और ज्यादा खुशियों से भरते हैं और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो अगर अभी तक आपने शुक्राना नहीं किया है उस ऊपर वाले का, उस परवरदिगार का, तो मैं कहता हूं जरूर करो यार। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद के साथ और तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। और आज है 29 जुलाई, यानी कि आज 29 जुलाई है और आज का दिन बहुत स्पेशल है हमारी जिंदगी में, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन को जीना सिखाते हैं, हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे गुरुओं की। सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सही गलत की चीजें हमें समझाते हैं। और उसके बाद एक ऐसा गुरु हमारे जीवन में आता है जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है। हमारी जिंदगी में वैसे तो शिक्षक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जिंदगी में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या हम गुरुकुल में जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं, हमें वहां हमारे शिक्षक मिलते हैं, हमारे टीचर मिलते हैं, जो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु जरूर आता है जो हमारी लाइफ का मेंटोर होता है और हमें हमारी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं सिखाता, हमें सही गलत, हमारे संस्कार, हमारी रीति रिवाज, अगर हमारी जिंदगी में हम सफलता को लेकर हमारे अंदर अगर अहंकार आ रहा है तो कैसे उसे रोकना है, तमाम सारी चीजें जो है हमें हमारे गुरु सिखाते हैं। तो आज का दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करने का दिन है, नमन करने का दिन है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कहने का दिन है। अब देखिए, गुरु तो कोई भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी में आपको सही डायरेक्शन दे दे, वही तो आपकी लाइफ का गुरु है ना, जो आपको आपकी नैया पार लगा दे, आपके जीवन को थोड़ा आसान बना दे, वही तो गुरु है। आपकी जिंदगी का कौन है गुरु, आप मुझे जरूर बताइएगा। आप अपनी लाइफ में अपना मेंटोर किसको मानते हैं, आपके जीवन का कौन गुरु है, या आपने कभी किसी को कोई अच्छी सलाह दी है, या आपने कभी कोई किसी को अच्छी एडवाइस दी है। हो सकता है आज आप भी उस लेवल पे हो कि आपने लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। तो जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर, आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरी लाइफ की गुरु को तो सभी जानते हैं, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूं, मैंने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं इस खास ओकेजन पर, उसके लिए हमें आपको जो है इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा। हम तो आपको करते हैं, आप भी हमें करो भाई। लेकिन फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से पूरे एफएम मुरादाबाद की एंटायर फैमिली की ओर से गुरु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत पल है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने गुरु के बारे में दो शब्द कहें, कोई अच्छा मैसेज लिखें। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहिए, ये आपके दिल की बात शायद आज आपके गुरु तक पहुंच जाए। बहुत ही स्पेशल दिन है गुरु पूर्णिमा का, आपको आज के दिन की ढेर मंगल शुभकामनाएं। श्रोताओं, 8:38 हो गए हैं और देखिए सोनालिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं गायत्री नगर से। लिखती हैं, हेलो आनंद जी, सुप्रभात, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही आनंद में हूँ जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने लिखा है, आनंद जी आज गुरु पूर्णिमा है, ओ माय गॉड, आज तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच आनंद जी बताने के लिए। और सबसे पहले आप सभी लिसनर्स को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू मैम, आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। रोहन मेरे साथ जुड़े हैं कटघड़ से, इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुप्रभात, आप कैसे हैं? आपका रेडियो सुन के बहुत आनंद आता है और तमाम तरह की जानकारियां भी मिलती हैं। रोहन जी, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और भी ढेर सारे मैसेज हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा इंतजार करना है, हम लौट कर आएंगे और आज के दिन के बारे में बात करेंगे क्यों स्पेशल है। बाकी आप कुछ अपने गुरुओं को कहना चाहते हैं, कौन है आपकी लाइफ का बेस्ट गुरु, आप किसे मानते हैं, आप उनके बारे में मुझे जरूर बताइए, मैसेज करिए, मुझे इंतजार है आपके संदेशों का। 9837896896। और ये गाना हमारे सभी दोस्तों के लिए, हमारे सभी उन दोस्तों के लिए या उन इंसान के लिए जो हमारी जिंदगी में अचानक से आते हैं और बहुत कुछ सिखाकर बताकर जाते हैं, फिर हम उनको कहते हैं तुमसे अच्छा कौन है। मैं बिल्कुल नहीं गाने वाला, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, प्यारा सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, डोंट गो एनीवेयर।

और ये गाना उन दोस्तों के लिए भी जो जिंदगी में हमें अच्छी और बुरी सारी चीजें समझाते हैं, उनसे अच्छा सच में कोई नहीं है यार। गुरु तो हमारी जिंदगी में है ही, हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन हमारे दोस्त भी बहुत खूबसूरत होते हैं जो हमें सही सही डायरेक्शन देते हैं। कभी कभी हम गलत करते हैं तो हमें समझाते भी हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे रेडियो लिसनर भी हैं जो हमें समय समय पर बहुत सारी अपडेट्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें सही चीजें बताए, हमें सही डायरेक्शन दे, वही तुम्हारी लाइफ का गुरु है ना, वही तो सुप्रीम पावर है। तो उनको

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेरी वेरी नॉस्टैल्जिया वाला ट्रैक एंड आई लव दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म राजू बन गए जेंटलमैन. बहुत ही अच्छा गाना अलका याग्निक एंड कुमार शानू की आवाजों में. बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आज की सुबह निकल गया है आपके रेडियो सेट पे आपकी मॉर्निंग को और भी सुपर डुपर अमेजिंग बनाने के लिए. बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत ही प्यारी फिल्म थी. बात करेंगे लौट के आएंगे तो अभी जरा सी देर में, और आज का दिन क्यों खास है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं. फिलहाल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपने एंजॉय के लिए फ्रॉम द फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। आप आनंद के साथ हैं जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, अलका याग्निक एंड कुमार शानू साहब की आवाज़ें थी। बहुत ही प्यारा ट्रैक था, बहुत ही खूबसूरत मूवी थी। एंड सच बताऊँ तो इतने प्यारे गाने सुन के ना सच में मज़ा आ जाता है, सुबह एकदम फ्रेश हो जाती है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आनंद को।
1: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉल को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

चलिए श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। क्यों खास है आज का इतिहास, क्या महत्वपूर्ण रहा है आज की तारीख में। तो दोस्तों, आज 29 जुलाई है। आज के दिन बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन को स्पेशल बनाती हैं। आपको बता दें, अमेरिका में अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना आज के दिन हुई थी। 1958 मिशन 1958 में आज के दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी श्रोताओं। और आपको बताते चलें, आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना थी वो आज के दिन की थी 1957 में। हाँ जी, और आपको बताते चले 1987 में आज के दिन भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे श्रोताओं आज के दिन। और आपको बता दें, सन 1904 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और पहले पायलट JRD टाटा जी का जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। आपको बताते चलें, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को इसको मनाया जाता है श्रोताओं। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं आपके स्टेशन ऑफ द नेशन पर, क्योंकि आप आनंद के साथ हैं। आपको बता दें, सन 2004 में आज ही के दिन 29 जुलाई को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के स्वरूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए जो है वो एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हुए थे श्रोताओं आज ही के दिन। और एक और खास चीज जो आज के दिन को और स्पेशल बनाती है, जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें, श्रीलंका के बल्लेबाज जो है जयवर्धन और कुमार संकारा ने 624 रनों की भागीदारी का टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया था सन 2006 में आज ही के दिन। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे आपके रेडियो स्टेशन पे। आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, एंड ढेर सारे संदेश भी आपके पहुंचे हैं, तो मैं जरूर उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। बस थोड़ी सी देर में मैं लौट कर आता हूं। उसके बाद आपने जो भी संदेश, जो भी अपनी वॉइस नोट मुझ तक पहुंचाए हैं आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल, वो सब कुछ, वो सारे मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे इस स्टेशन पर। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। और अभी लौट कर आते हैं तो बात करेंगे आज के दिन के बारे में। और आज बहुत ही कमाल की सुपरस्टार का भी बर्थडे आते हैं। और वो जो हीरो है ना, मतलब क्या कमाल के बॉलीवुड एक्टर हैं ब्रो। उन्होंने मतलब क्या धाकड़ फिल्में दी हैं, क्या धाकड़ एक्टिंग की है। और स्पेशली इस गाने में तो क्या लगे थे कि तो लंबे से बाल, यू नो, एक अलग ही हेयर स्टाइल, एक अलग ही लुक, एंड ही इज एक्सीलेंट एक्टर। किन की बात कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ अभी आपको। ब्यूटीफुल ट्रैक यार, क्या गाना है। छोटे से बड़े हो गए हूँ मैं इस गाने को रेडियो पे सुनते सुनते, बहुत अच्छा गाना। और आज देखिए आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, कितनी अमेजिंग बात है। वेंसडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। अभी लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर के बाद। गुड मॉर्निंग बोलना तो बनता है यार, देखो सुबह है, हम आपको जगाते रहेंगे ये बोल बोल के बार बार, है ना। जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है उनका भी वेलकम है जी।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: Hey, you're tuning into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: सुबह के 9 बज चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में 9:01 हो गए हैं जी। ये वेंसडे की सुबह है, ढेर सारे लिसनर्स भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो आप पहुंचा रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। आज की सुबह सच में बहुत ही अल्टीमेट मैसेज किए हैं आपने।
7: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
8: नलायक बेटा।
9: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

भाई साहब, हम आपको कह रहे थे कि देखो ये हमारा लास्ट आ रहा है, कैसे 9 बज जाते हैं पता नहीं चलता है। वेल, आप लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट यार, बहुत अच्छी बात है, निकलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और भैया, आप सभी के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी इस वक्त जुड़े हैं, बस एक एक मैसेज पहुंचा दो यार, आपका एक मैसेज हो सकता है किसी की सुबह को धाकड़ बना दे, लेकिन हमारे लिसनर सच में बड़े भी आ रहे हैं भाई, बहुत प्यारे मैसेज करते हो यार, सच में तुझे दिल खुश कर देते हो पाजी। हैं जी, इतने बढ़िया मैसेज सुबह सुबह, मैं कह रहा पाजी इतने मैसेज कर देते हो यार, कभी कभी तो मैंने लगता है यार मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा, पंजाबी थोड़ी खराब है यार, तो बुरा शुरा मत मानियो। मैं क्या जी, तुसी मजाक क्या हो है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अभी काम की बात करते हैं। कल बारिश हुई शहर में, परसों बारिश हुई, उसके बाद जो हैवी वाटर लॉगिंग हुई है ना शहर के अंदर, मतलब मैं कैसे बताऊं, लेकिन उसके बाद भाई साहब क्या कमाल हो गया, मतलब नगर निगम की टीम आई और किस तरीके से पानी को एकदम से साफ कर दिया, पता ही नहीं चल रहा था बहुत यहाँ वाटर लॉगिंग हुई है यानी, क्या काम किया यार। सबसे पहले नगर निगम के लिए जोरदार तालियां यार, सच में, मतलब एक्टिव तो है टीम, नो डाउट। अगर कोई भी चीज़ होती है तो ऐसा नहीं कि उस पर काम नहीं होता है, डेफिनेटली काम होता है यार। तो थैंक यू सो मच नगर निगम की पूरी टीम को, जो इतनी अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को मेंटेन भी करते हैं यार। आई डोंट नो कि कैसे हो जाता है, बट सीरियसली जब ये होता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। और अब आपसे हमारी ये भी रिक्वेस्ट है भैया कि अगर आप कांट रोड पे निकल रहे हैं या आप डेली रोड पे निकल रहे हैं, तो अब जितने भी चौराहा हैं वहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगी कि भैया कौन से वाहनों की किधर से एंट्री हो रही है, कब हो रही है, सारी डिटेल्स आपको सुनाई देंगी, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। कल शाम 5 बजे से ही कांट रोड पर जो हैवी ट्रैफिक की एंट्री बंद हो चुकी है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया अगर आपको सही डायरेक्शंस नहीं पता है, क्या है सही डायवर्जन प्लान, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी से मैंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है, थोड़ी सी देर में सुनवाऊंगा सर ने क्या कहा है, कौन कौन सी रूट्स पर जो है जाम नहीं होगा, कहां कहां से आपको अपनी गाड़ियां निकालनी है, अगर आप हैवी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, हैवी वाहन की एंट्री कहां से होने वाली है, कब कब जो है प्लान चेंज होंगे ट्रैफिक के, सारी चीजें आपको पता लगेंगी, ट्रैफिक की सारी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी हमारे साथ होंगे एक्सक्लूसिवली यहीं पर, और वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेंसडे की सुबह है और आपको पता है अपने मुरादाबाद के साईं मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, इतना प्यारा साईं मंदिर है यार। जब मैं आया था मुरादाबाद में तो मैं सर्च कर रहा था क्या यहाँ पे पॉपुलर है, पता चला साईं मंदिर बहुत फेमस है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से जो है उस मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोर किया गया है, क्योंकि अभी आज वहाँ पर

अरे अयो जी, तुम रुला के भी मानोगे ऐसी बातें करोगे। चलिए यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हो, मैं इसी बात पे आपके लिए अच्छा सा गाना प्ले करता हूँ। और ये वो गाना है जिसको सुन के ना आप थोड़े से फ्लैश बैक में चले जाओगे। मतलब सुबह सुबह बोलो कि यार आनंद कौन सा गाना तूने बजा दिया। आज की शुरुआत ना इसी गाने के साथ करता हूँ। चलो बाजी, बहुत ही बढ़िया गाना है, सुनो इसको जरा। दबंग फिल्म का ट्रैक, ममता शर्मा की आवाज, बहुत ही अच्छा गाना है। राजा कश्यप मेरे साथ जुड़ गए हैं, चौराहा गली से लिखते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग। रणवीर जेठालाल मुरादाबाद यूपी से जुड़े हैं, लिखते हैं आपके और आपके एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। विक्की सागर जुड़ गए हैं, रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ शिवम भैया जुड़े हैं, सूर्यनगर लाइन पार से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। बबली गीता एंड लक्ष्मी कश्यप, संतोष भाभी जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग ये भी पहुंचा रहे हैं। बहारुल हुसैन सिद्दीकी साहब जुड़े हैं अपने पूरे मित्रों की टोली के साथ और ये जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ अमरोहा से गुड मॉर्निंग पहुंचा। नीतू शर्मा लाइन पर ढक्का से जुड़ती हैं, लिखती हैं गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं और सब बहुत ही बढ़िया होंगे, आपका शो सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं, लौट कर आएंगे तो और मैसेज को शामिल करेंगे। एक छोटा सा सवाल भी है मेरे पास, अभी लेकर आ रहा हूँ। स्टेशन ऑफ द नेशन पर आप एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: सिल्यूटली आप सही स्टेशन सुन रहे हैं, ये है बिंदास मॉर्निंग और आप आरजे आनंद के साथ हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जहां भी जा रहे हैं बिल्कुल आप पहुंचिए। अगर कहीं ट्रैफिक है, अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे हल्का फुल्का जाम है या फिर यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है जाम, तो डेफिनेटली आप मुझे अपडेट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
8: वेलकम बैक है, वेरी गुड मॉर्निंग है। एक बार फिर से वेंसडे की सुबह में आनंद के साथ है। 29 जुलाई की सुबह, ये फैबुलस मॉर्निंग में आपको देता हूँ आज के दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वे बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करते हैं आज 29 जुलाई को क्या स्पेशल होता है। तो आज 29 जुलाई को रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। एंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगा, ये डेफिनेटली बतानी चाहिए, आज नेशनल लिपस्टिक डे मनाया जाता है, जो लेडीज एंड गर्ल्स का बड़ा फेवरेट होता है। आई एम श्योर आपको भी पता होगा, जो लोग शादीशुदा है वो तो भली भांति जानते होंगे, भाई एक लिपस्टिक ना लाने की कीमत तो सिर्फ उनको पता है जो शादीशुदा लोग मुझे सुन रहे हैं। सॉरी, मेरा कोई कहने का ऐसा मतलब गलत मतलब नहीं है। वेल आज नेशनल लिपस्टिक डे मनाया जाता है। सो सोचो ना यार, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल मनाया ही जाता है। रेडियो के थ्रू आपको पता लगता है ना। एंड इसके अलावा आज वर्ल्ड पार्क वीक डे भी मनाया जाता है। जो लोग पार्क में जाके एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ हैपनिंग चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं विद फैमिलीज, एंड कभी कभी लॉन्ग टेंशन होता है, चलो अकेले सिंगल ही चले जाते हैं, अपनी लाइफ के कुछ पल किसी खूबसूरत पार्क में बैठ के बिताते हैं। तो जो लोग पार्क में जाना पसंद करते हैं उनके लिए भी स्पेशल डेज है आज का। एंड बाय द वे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, नेशनल लिपस्टिक डे। ओ माय गॉड, बहुत सारे स्पेशल स्पेशल डेज होते हैं यार। एंड बाय द वे, लिपस्टिक जो है यार सच में लेडीज की ब्यूटी को एनहांस तो करती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं। खैर आगे बढ़ेंगे, अभी मैं आपको और कमाल की चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपके वॉइस नोट आए हैं, माइंड ग्लोइंग यार, फैबुलस। आज गुरु पूर्णिमा पे आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी बात के साथ आपके जो वॉइस नोट आए हैं फटाफट से इमीडिएटली उनको पढ़ना तो मैं मैसेज आपको चाहूंगा ही, लेकिन जो आपने वॉइस भेजे हैं उन तो हम सुन ही सकते हैं, पढ़ थोड़ी सकते हैं। चलो पहले सुनते हैं।
9: आनंद भाई गुड मॉर्निंग, मैं भी जुड़ गया हूँ बिंदास मॉर्निंग मसाला में और कार्यक्रम सुन रहा हूँ आनंद भाई के साथ, जो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुबह के टाइम प्ले करते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सुन के और मन भी हल्का हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत रेडियो FM मुरादाबाद से स्टार्ट करता हूँ, और जब भी कोई नई अपडेट आते हैं तो आप तुरंत ही हम लोगों को रोज़ाना सुबह दे देते हैं। तो ऐसे ही अपडेट देते रहिए, क्योंकि हम लोग अपडेट का लाभ भी उठाते हैं और हम लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट और अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहिए आनंद भाई, हम लोग FM मुरादाबाद बजाते रहेंगे दिल से दिल तक, और FM मुरादाबाद जो सबको दीवाना बना दे। आनंद भाई के साथ सभी लोग सुनते रहें, अपना फीडबैक देते रहें अपनी आवाज़ में, और लिखकर भी दे सकते हैं। मैं मौसी मंसारी बनारस से, आनंद भाई
8: थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपको हमारी अपडेट्स हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज कर दिया है, मतलब कमाल हो गया यार, ये तो कमाल ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे वॉइस नोट हैं, बट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ना शॉर्ट भेजा करें, थोड़ा कैची भेजें, शॉर्ट भेजें, ताकि सुनने में उसको और ज्यादा मजा आए, है ना। मतलब आपने बहुत अच्छा भेजा, बट मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट भेजेंगे तो थोड़ा सा जल्दी भी फिनिश हो जाएगा, आपकी बात भी डिलीवर हो जाएगी और सुनने वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है मेरे पास। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? ये लिखते हैं कि हेलो हेलो आनंद जी, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे? बिल्कुल जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये लिखते हैं, माता और पिता के अलावा गुरु, शिक्षक और हमारी ज़िंदगी में एकमात्र एक इंसान ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो भी हमारी लाइफ का एक मेंटोर होता है, गुरु होता है। तो सभी गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाजिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या बात है शाजिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज की सुबह बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे ज्वाइन किया, आप मेरे साथ जुड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अमरोहा से मेरे पास मैसेज आ रहा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हो? सॉन्ग बहुत ही अच्छे प्ले कर रहे हो सर, बहुत ही मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नंबर के 4 डिजिट है 6309, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है। रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी आपको भी गुड मॉर्निंग है जनाब, आपको भी गुड मॉर्निंग। ये मुझे मैसेज कहाँ से आ रहा है, बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले करते हो। सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से जुड़े हैं, हाय गुड मॉर्निंग। रिजवान खान साहब जुड़ गए हैं ग्राम बीजना से, गुड मॉर्निंग लिखते हैं और थैंक यू, हमारा वेलकम हो गया है। बिल्कुल जी, आप सभी का इस्तकबाल है, पूरे दिल से वेलकम है। चमन लाल साहब पुतली घर रोड से जुड़े हैं, गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प लगता है आनंद जी, आपके बोलने का अंदाज बहुत ही पसंद आता है, मैं क्या कहना, क्या ही बोलते हैं आप, सुनकर मजा आ जाता है। क्या बात है, इतनी तारीफें सुन के मुझे मजा आ जाता है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ये जो अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सुन के थोड़े से तोते उड़ सकते हैं, आई नो दैट, क्योंकि ये बात ही ऐसी, बिकॉज यार देखो कोई भी गाना जब आता है ना, एक पुराने गाने में बहुत अलग फील होती है और एक नए गाने में अलग फील होती है ना। सो राणा जी जो ममता कुलकर्णी का गाना था, मुझको माफ करना राणा जी करके, वो गाने की वाइब अलग है। अभी उसका एक नया गाना है 2.0, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। ये अभी रिसेंटली ब्रांड न्यू गाना लॉन्च हुआ है, 27 को हुआ है, यस 27 को इस गाने की लॉन्चिंग हो गई है और ये गाना सोशल मीडिया पे बहुत तहलका मचा रहा है। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आई वांट टू आस्क यू, सीरियसली बताना कि आपको नए गाने में इतना मजा आ रहा है जितना पुराने में आया था, एक बार फिर से सुनो। आप इस गाने को वोट देना चाहोगे? मतलब मेरे, मुझे जो लगता है जेन्युइनली, जो मिलेनियंस वाला गाना था, जो पुराने वाला गाना था, उसमें ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी साहब, मतलब गाने का पिक्चराइजेशन वाइब फुल ऑन अमेजिंग थी। इस गाने में भी वैसे कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, गाना अच्छा है, लेकिन बीट

क्या कहना चाहोगे इस गाने के बारे में, ये आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप करके। फिलहाल आने वाला गाना जो आपको बनाएगा और भी दीवाना। हाय हाय, जरा सी देर में। हाय, आज बहुत ही कमाल के सुपरस्टार का बर्थडे होता है और वो इस मूवी में क्या लगे थे बॉस, इस गाने में भी हैं वो। चलो जी, ये गाना थोड़ी देर में आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल एक अच्छा गाना पहुंचा रहा हूँ आज की सुबह, इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, लौट कर आते हैं। कुछ और खास बातें जो अभी मुझे आपको बतानी है, क्या चल रहा है देश विदेश में ये बताना तो बाकी है ना, तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। आने वाला गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिल्ली 6 से निकालती है आपके रेडियो सेट पे। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए

0: बाय नेट।
1: चलो होस्टिंग का के साथ अप।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो गाना बहुत ही अच्छा अभी आपने सुन लिया, और सच बताऊं तो कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना जिनको सुन के सच में बड़ा मजा आता है। और अभी फिलहाल आज बहुत ही कमाल की एक लीजेंड सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है, कुछ गाने प्ले कर रहा हूं उनके, आप बताएंगे कौन से एक्टर हैं ये। अगर आप इनको पहचान रहे हैं तो जरा मुझे मैसेज करके बताइएगा, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। कुछ हिंट दे रहा हूं इनके गाने सुनाकर। हाय हाय, अच्छा एक और गाना सुनो इनका। कौन है कमाल के हीरो जिनका बर्थडे है?
3: दिल भी कितना पागल है।
2: एक और गाना प्ले करो, बहुत ही सुपर हिट गाना है इनका ये।
3: चल मेरे भाई, चल मेरे भाई।
2: अच्छा दूसरा वाला चलाओ यार भाजी, एक और चलाओ। वाओ,
3: तुझ में कहीं,
2: आप बताओ मुझे
3: मेरी।
2: कौन से हीरो हैं ये जिनका आज बर्थडे होता है?
3: लाई
2: है, एक और चलाता हूँ।
3: मनाना है जरा देर।
2: व्हाट्सएप करके बताइएगा आप मुझे।
3: कहीं लगता नहीं वक्त।
2: एक लास्ट प्ले कर रहा हूँ, ये गाना सुनो। चलो आप मुझे मैसेज करके बताना आज कौन से कमाल के हीरो का बर्थडे होता है। एक फिल्म आई थी जिसमें ना विद्या बालन रेडियो जॉकी बनी थी, सब थोड़ा क्लू दे रहा हूँ आज की मॉर्निंग। उसमें ये भाई साहब भी थे और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। गुड मॉर्निंग मुंबई, वहीं से कहना सीखा लोगों ने वैसे। हालांकि जब भी कोई रेडियो पे बात करता है आरजे तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं बोलता है, वेरी क्लियर। बट सी, वो कौन सी फिल्म है जिसमें ये नजर आए थे? और मैं फिल्म का नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप मुझे हीरो का नाम बता दो, ठीक है? सो व्हाट्सएप करके बताना मुझे कौन से हीरो की बात कर रहा
3: हूँ।
2: आज इनका बर्थडे होता है 29 जून की सुबह।
3: अपना बनाने की
2: ब्यूटीफुल ट्रैक।
3: जिए तो जिए कैसे।
2: आए हाय हाय, क्या गाने
3: हैं।
2: सुबह सुबह आपके दिमाग में आ गया ना इनके चेहरा।
3: इसमें कितना है दम।
2: ओह माय गॉड, एक गाना और प्ले कर रहा हूँ, बहुत अच्छा गाना है ये वाला।
3: ला ला ला ला ला। देखो रोज रोज आँखों तले।
2: चलो यार अभी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा पाजी, अब आप बता दोगे बहुत है। अभी के लिए बहुत सारे क्लू दे दिए मैंने आपको आज की मॉर्निंग। अब जरा जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बताना अभी जो आपने बहुत सारे गाने सुने इन गानों में कौन से हीरो है आज उनका बर्थडे होता है। अगर आप पहचान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे मैसेज कर देना फटाक से 9837896896 पे, ठीक है जी। फिलहाल अभी एक अच्छा गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से ही गाना सुनने के बाद वापस आ रहा हूँ। एंड इस गाने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें बताने वाला हूँ। और अभी मुरादाबाद से जुड़ी हुई खबरें भी हैं मेरे पास दो। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था ना ट्रैफिक पुलिस एसपी ट्रैफिक जे क्या कहा है सुभाष गंगवार जी ने, कौन कौन से जो है रूट पर डायवर्जन प्लान होगा, ट्रैफिक में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। अभी लौट कर आएंगे तो इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। एक बहुत ही अच्छा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग, इसी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों ने जो व्हाट्सएप किए ना ये मैसेज मैं डेफिनेटली अभी शामिल करूंगा। बाकी जो सवाल मैंने किया उसका जवाब तो पहुंचा दो यार, बाकी बात तो मैं करते रहूंगा आपसे। फिलहाल सुनते हैं ये बढ़िया वाला गाना, बहुत टाइम के बाद मैं इस गाने को प्ले कर रहा हूँ, सच में मजा आ जाएगा सुन के आपको भी। बहुत अच्छा गाना है यार, एंड शायद किसी का चेहरा याद आ जाए, सच में दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग। बहुत प्यारा गाना है, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपकी शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। वेडनेसडे मॉर्निंग में आपको फुल ऑन वाइब मिल रही है ना, चलो बहुत बढ़िया। वैसे आप कहाँ जा रहे हो पाजी? ऑफिस जा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, पहुंचो यार पहुंचो, ऑल द बेस्ट।

0: बात है, अलीशा चुनाई ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाया, आवाज इतनी प्यारी है यार, मजा आ रहा था। इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आप सुनते हैं आरजे आनंद के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन में, मैं ऐसे नहीं मानूंगा भाई, तारीफ करो चलो थोड़ी।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: चलिए भैया बात करते हैं अभी आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भैया सांसों से जो है ना सारा खेल समझ जाएंगे आप और आपकी आधी परेशानी दूर हो सकती है। कैसे? देखिए, सांस लेना सिर्फ शरीर की ज़रूरत नहीं है बल्कि सही तरीके से सांस लेना आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार धीमी और गहरी सांस लेने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण जो है रहता है और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करता है, तनाव कम रहता है, आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराने में काफ़ी हेल्प आपको मिलती है। इनफैक्ट नियमित रूप से अगर आप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल भी काफी स्वस्थ रहता है, मानसिक शांति और फोकस में काफी ये आपको हेल्प करता है। हालांकि यदि आप अगर किसी गंभीर बीमारी से हैं, ग्रस्त हैं और आपको लग रहा है कि आप को ये प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें, आप पहले उनसे राय लें, उसके बाद ही आप जो है ये ब्रीदिंग वाला ये तरीका है, इस तकनीक को तभी आप अपनाएं। एक बार डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें, क्योंकि किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से हमें जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो। ठीक है, अगर आप नॉर्मली परफेक्ट हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, तो डेफिनेटली आप जो है इसको आप करिए, जिसे मेडिटेशन भी कहा जाता है, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ब्रीथिंग कीजिए सुबह सुबह, अगर आप ये चीजें करते हैं ना भाई साहब, तो ये आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। हाँ जी, और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फटाफट से। अभी एक नई लेटेस्ट खबर आई है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो अपने सीएम साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना का जो है शुभारंभ कर दिया है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ये थोड़ी सी अच्छी गुड न्यूज़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ है जो मुझे आप तक पहुंचानी है, वो कौन सी? एक तो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है ना, कभी भी इसको झटके लग जाते हैं और ये बीच में चल पड़ता है। बहुत सारी जगह पर जो है कांवड़ यात्रा की वजह से रूट डायवर्जन लागू कर दिए गए हैं और एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद के जो सुभाष गंगवार जी हैं एसपी ट्रैफिक सर, उन्होंने क्या कहा है, चलिए मैं फटाफट से आपको पहले उनकी वाइट सुनवा देता हूं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ना सही इन्फॉर्मेशन। तो आइए ज़रा सुनते हैं सर ने क्या कहा है और इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है औरों को भी सुनाना है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं आप इसको रिकॉर्ड करके हमें टैग भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल हैंडल पे FM मुरादाबाद 89.6 पे, या आप मुझे रेडियो वाला आनंद को भी आप टैग कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अब चल रही है एसपी ट्रैफिक सर की आवाज़ में, ज़रा को सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है मुरादाबादी से। सुन लीजिए साहब।
2: सुभाष गंगवार एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सावन माह का जो डाइवर्जन प्लान है उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं। सावन माह 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसमें हम लोग दो शिफ्टों में लगा रहे हैं डाइवर्जन का प्लान। इसमें जो एक है वो 28 तारीख से शुरू हो जाएगा और 12 तारीख तक चलेगा, क्योंकि शिवरात्रि 11 तारीख की है। इसमें 28 तारीख से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर जाने वाला सभी भारी वाहन को हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे डाइवर्ट करेंगे और जो छोटा वाहन है वो उसको हम लोग जो गढ़ की तरफ जाएगा उसको हम लोग हर संडे को जीरो करेंगे और फ्राइडे को छोटा ट्रैफिक को भी डाइवर्जन करेंगे।
1: ठीक है साहब, तो अभी आपने ये इन्फॉर्मेशन सुनी ली है, उन्होंने किस तरीके से बताया कब कौन सा क्या चेंज रहने वाला है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर सर कोई चीज़ अच्छे से बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर आप।
2: आप सभी का स्वागत करता हूँ। सावन माह 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है, 11 अगस्त को शिवरात्रि है। पहले शिफ्ट में हम लोग 28 जुलाई से डाइवर्जन प्लान हम लोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर और हरिद्वार जाने वाला भारी वाहन को हम लोग मुरादाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ वाया संभल रवाना करेंगे और उसी रूट से हमारा आवागमन होगा, जिसमें प्रत्येक फ्राइडे को हम लोग रोडवेज की बसों का भी डाइवर्जन करेंगे और संडे को, प्रत्येक संडे को शाम को 6 बजे से गढ़ जाने वाला ट्रैफिक को जीरो करेंगे, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल हम लोग सम्पन्न करा सकें।
1: ठीक है सर, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई होप उनको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। सुभाष गंगवार जी के लिए जोरदार तालियां। एसपी ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने आपको सारी एक्सक्लूसिव बातें बता दी हैं। भैया, ट्रैफिक से जुड़ी सावन माह की शुरुआत हो रही है कल से, टुमारो से, सो कहां से क्या डायवर्जन जो है लागू रहेगा, कैसे ट्रैफिक जो है कहां से कहां उसको किस तरीके से जो है हैंडल किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप तक डिलीवर की हमारे सर ने। एक्सक्लूसिव अपडेट आपको मिलती है यहाँ पर। 9:46 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैंने आज आपसे एक बहुत ही अल्टीमेट सवाल किया है। एक बहुत ही कमाल के धाकर फैबुलस फिल्मी एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के हीरो हैं, जिनका आज हम बर्थडे मनाते हैं, उनके बारे में मैंने आपसे पूछा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं, तो अभी लौट कर आते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या है सही वाला जवाब।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
9: लेकिन सोनिया
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
9: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने, ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: एक हल्ला मैं भी करने आ गया हूँ। आए हाय
1: हल्ला रे हल्ला रे हल्ला रे।
0: मुझे दो कॉल आए हैं और दो मैसेज आए हैं मेरे पास। देखो सबसे पहले मैसेज आ गया यहाँ पे, ये मयंक शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है आनंद जी गागन के पुल पे जाम लगा हुआ है। मुझे निधि का भी कॉल आया, उन्होंने लिखा है यार यहाँ पे हल्की सी भसड़ मची हुई है। और साथ ही साथ मुझे गिनी जी ने व्हाट्सएप कर दिया है, ये भी लिखते हैं हेलो भैया ट्रैफिक अपडेट ये है गागन पुल पर दिल्ली रोड पर बहुत जाम है और ऐसे में जो है बस आपके गानों का ही सहारा है। ओके भैया, तो अगर आप उधर से निकलने का भी प्लान कर रहे हो ना तो अभी वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, सो प्लीज अवॉइड कीजिए इस रूट को। क्या करो, और कोई रूट है नहीं आनंद वहाँ जाने का? या देखो आई हैव नो आइडिया, जनरली मुझे तो नहीं पता है अभी तक मुरादाबाद के बहुत सारे रूट्स के बारे में मैं नहीं जानता। बाकी अगर आप जाना चाह रहे हो तो सोच लो यार, थोड़ा बहुत जाम का सामना तो आपको करना पड़ेगा। वेल थैंक यू सो मच गाइस, आपने इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, ट्रैफिक अपडेट हमें दी, थैंक यू सो मच।

ಅಲ್ಲಾರೆ ಐ ಹೈ ಹೈ नाइन फिफ्टी टू हो रहे हैं वेंसडे की सुबह, आनंद के साथ हैं आप, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। आपके चरणों में नमन प्रणाम समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। बस इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, वक्त आ गया है आज 29 जुलाई को एक बहुत ही बॉलीवुड के दमदार अभिनेता का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने अपनी एक लंबी फिल्मी सफर एक्शन इमोशन कॉमेडी और विलन से हर किरदार को शानदार अंदाज में निभाया है। एंड कौन है वो कमाल के कलाकार जिनके बारे में बात कर रहा था, जिनकी कुछ गाने मैंने यहाँ पर प्ले किए थे। एंड ऑफकोर्स आप लोगों ने बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़िया आंसर किए हैं यार, आई कांट बिलीव दिस, इतने अच्छे जवाब, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग यार। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स किए थे। आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से हीरो हैं ये जिनका आज बर्थडे है। यस, ये खलनायक का पहचानना था अपने नाम। वैसे अभी कड़क सवाल आने वाला है यार। तो दोस्तों वक्त आ गया है उस सितारे के बारे में आपको रूबरू कराने का, उनके बारे में आपको बताने का जिनका आज बर्थडे है। आज 29 जुलाई है, बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त साहब का आज हम बर्थडे मनाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, संजय दत्त साहब ने अपने लंबे फिल्मी सफर में एक्शन इमोशन कॉमेडी और विलन हर किरदार को एक शानदार एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निभाया है। खलनायक हो, मुन्ना भाई हो, MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई, साजन और अग्निपथ जैसी फिल्मों में उन्होंने कमाल का जो है भाई साहब मतलब दमदार एक्टिंग की ही कमाल का रोल प्ले किया है। और अपनी जो उन्होंने एक्टिंग के दम पर एक जगह बनाई है और लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है, उसके लिए तो मतलब मुझे लगता है कि जितने मैं शब्द बोलूँ शायद कम होंगे। वेरी हैप्पी बर्थडे फिर मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से संजय दत्त शाह को, उनके जन्मदिन की धीरो शुभकामनाएं। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं खलनायक के साथ। हाय हाय, ये गाना मैं पक्का एक दिन प्ले करूंगा यार, सच में अमेजिंग सॉन्ग। और ये अगला गाना तो बहुत प्यारा है, सॉन्ग यार। आज संजय दत्त साहब का बर्थडे होता है, इसी बात पर उन्हीं से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा फिल्मी सवाल होने वाला है आज की सुबह। आपको आइडेंटिफाई करना है, अभी मैंने नाम भी लिया था उस मूवी का, नाम श्योर आप पहचान जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक गाने का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, ये कौन से फिल्म का गाना है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। एक चुटकी सॉन्ग होगा, गाना पूरा नहीं बजेगा, सिर्फ गाने का म्यूजिक बजेगा। गाना आप मुझे बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आप मुझे पिक्चर का नाम बताना है। इसमें संजय दत्त साहब भी नजर आए थे, बहुत ही कमाल की फिल्म थी उनकी ये, और बहुत ही अच्छा रोल निभाया था संजू दादा ने। तो मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ, 3, 2, 1 को स्टार्ट, आइडेंटिफाई करो आप जरा ये गाना कौन सी फिल्म का है।

है, सभी इतना पैसे में इतना ही मिलेगा बुड़ू, इससे ज्यादा नहीं चलाएगा फोन। आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर। आज संजय दत्त साहब का बर्थडे है, ये जो मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ ये कौन सी फिल्म का गाना है, गाना भी आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा गाना ही नहीं चला रहा हूँ, उसका म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइम चल रहा है, सो आई हैव आस्क्ड यू, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, आपको बताना है ये गाना कौन सी फिल्म का है।

चलो चलो चलो चलो मैसेज करो मुझे इस सवाल के जवाब पहुंचाओ. आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स इसका जो जवाब है वो आप पहचान ही जाओगे. बीट्स इतने प्यारे हैं, गाना इतना पॉपुलर है, तो ऑफ कोर्स यार सब कुछ तो क्लियर हो गया है. जल्दी से मैसेज करना मुझे 9837896896 पे. इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का. जब तक आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं एक अच्छा गाना आपके लिए प्ले कर देता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. वक्त मिला लीजिए आप, 9:56 हो रहे हैं. आनंद को सुन रहे हैं आप. आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक. हाँ जी, चलिए एक और बढ़िया और बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट में निकाल रहा हूँ आज की सुबह. एंड ये गाना भी काफी टाइम के बाद सुन रहे हैं हम. चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को साथ में. बाकी आप कोई अपडेट देना चाहते हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9837896896 पे. इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का. एंड अभी ये प्यारा सा गाना इसके बाद लौट कर आ रहे हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर.

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
5: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। ये है आपकी शहर का फेवरेट अमेजिंग प्रोग्राम, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। ये ऑफ कोर्स आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है, आपके पास शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल घड़ी वक्त बता रही है 10:03 हो गए यार। चलिए गाने एंजॉय करते हैं साथ में, लौट कर आता हूँ जरा सी देर में।

सच में यार बहुत प्यारा ट्रैक अभी आपने एंजॉय कर लिया। एंड सच बताऊं तो इतने बढ़िया बढ़िया गाने सिर्फ आप आनंद के साथ सुनते हैं एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे। आज वेंसडे की सुबह है जहां अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छे गाने ऑफकोर्स आपके लिए प्ले हो रहे हैं बैक टू बैक, और ढेर सारे मैसेज आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। आप सभी को बताया आज गुरु पूर्णिमा है, वंस अगेन आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है, अपने गुरु को प्रणाम करने का दिन है, अपने गुरु को नमन करने का दिन है आज। अच्छा ऐसे में जो है क्या शुभ मुहूर्त और तिथि है, क्या कुछ योग है फटाफट से आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सो आज गुरु पूर्णिमा 2026 के पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आदित्य गुरु महादेव वेद ऋषि महर्षि वेद व्यास जी की पूजा का विशेष विधान है। एंड बताया जाता है जिसमें सुबह सुबह स्नान दान अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12:55 तक रहेगा, मतलब पूजा करने का इज द बेस्ट टाइम बताया जा रहा है। एंड आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि आज आरंभ हुई 28 जुलाई को शाम 6:18 से जो है इसकी समापन जो है आज ही हो जाएगी, शाम को 6:18 पर जो है ये समाप्त हो रहा है। और लास्ट पूजा का टाइम आपको 8:05 तक रहने वाला है आज की शाम। तो अगर आप पूजा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास सबसे अच्छा मुहूर्त है अभी अभिजीत मुहूर्त, 12 बजे से जो है शुरू हो रहा है, 12:55 तक ये रहेगा। उसके बाद अमृत मुहूर्त शुरू होगा, ये जो है वो सुबह चालू हो गया था वैसे 7:30 से 9 बजे तक ही था, ये वाला तो गया, लेकिन अभी जो दोपहर वाला मुहूर्त है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप कुछ पूजा करना चाहते हो, कुछ दान पुण्य करना चाहते हो, जो भी आपको लगता है कि आप गुरु पूर्णिमा पर करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। 12:00 से शुरू हो रहा है, 12:55 तक बेसिकली रहने वाला है। ऐसे में अगर आप पीले वस्त्र, चने की दाल, फल फूल जो भी आप देना चाहते हैं, अपने गुरु को समर्पित करना चाहते हैं, उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। चलिए हमने आपको बता दिया है, और मैं कहता हूँ मन के हारे हारे मन के जीते जीत, वो तो आपने अक्सर सुना है। अपने मन में अगर आप अपने मन में अच्छे भाव रखते हैं किसी के प्रति, आप कुछ दे ना दें, अगर आपका मन साफ है किसी के लिए, तो मुझे लगता है उससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। हम करोड़ों का दान करते हैं और हमारा मन ही साफ नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता यार। हाँ जी, तो वो कहते हैं ना, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो अपने मन को साफ रखो यार। चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था आज की सुबह, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना था ये गाना कौन सी फिल्म का है, कौन सी पिक्चर की बात कर रहा था मैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आप लोगों ने सच में बहुत प्यारे मैसेज किए हैं गाइस। बहुत तेज गर्मी लगने लगी है मुझे, जोरदार तालियों के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी बात के साथ मैं यहाँ पर कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ किसी एक लकी वाले विनर को। शॉर्टलिस्ट करेंगे अभी फटाफट से, कौन है आज के हमारे शो का सुपरस्टार, किसने दिया था सबसे पहले जवाब। चलिए काम करते हैं, जल्दी से अपने लकी कॉलर को फटाफट खींच के लेकर आते हैं, फोन लगाते हैं। अगर आप में से किसी ने पार्टिसिपेट किया था आज की सुबह, तो भैया प्लीज फोन के जरा करीब आ जाओ।

0: को घर से।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, फाइनली हमें हमारे लकी कॉलर मिल गए हैं। और बिना किसी देरी के आइए जरा उनसे बात करते हैं। 10:12 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज FM मुरादाबाद।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
5: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।
6: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: यही आपको बताना था कि कौन सा गाना है, कौन से फिल्म से, कौन जुड़े हैं फोन लाइन पे। हाय गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? हेलो गुड मॉर्निंग सर।
7: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
7: बढ़िया सर, बढ़िया
1: जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी वेल। आप बताएं अपने बारे में, कौन क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: सर मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, विनीत सिंह
1: जी। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी आप क्या करते हैं प्रोफेशनली?
7: मैं ITI कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ सर।
1: अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको हैप्पी गुरु पूर्णिमा।
7: सेम टू यू सर।
1: जी सर, तो आप अभी रेडियो सुन रहे थे ना, आपने मुझे सही जवाब भी दिया है आज की मॉर्निंग। मैंने एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक प्ले किया था, वो कौन सी फिल्म का कौन सा गाना था ये आपको बताना था। आपने व्हाट्सएप भी कर दिया है सही जवाब। एक बार मुरादाबाद की जनता को यहाँ प्लीज बता दें।
7: जी सर, अग्निपथ मूवी का गाना था।
1: अरे वाह, गाने की लिरिक्स अगर आपको याद हो तो बड़ा मजा आ जाएगा सुनकर सर।
7: चमेली
1: छत्ते। अरे वाह, क्या बात है सर। विनीत जी बहुत ही बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। आज की सुबह आप हमारे शो के बनते हैं सुपरस्टार, आपके लिए जोरदार तालियां। बिग बिग कंग्रेचुलेशन सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत सारे लोग आपके सुन रहे हैं मुरादाबाद में रेडियो पे। कुछ कहना चाहेंगे सर जाते जाते?
7: बस सर यही है, सब लोग अपने काम में आजकल बिजी रहते हैं, व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हैं वो।
1: Exactly.
7: तो कभी भी जब भी हम फ्री है, मैं अक्सर क्या है गाड़ी से जब निकलता हूँ तो मैं FM ऑन कर देता हूँ, वही समय मुझे मिलता है। तो कम से कम वो समय हमारा ऐसा होता है जो हमारा पर्सनल टाइम होता है।
1: Absolutely.
7: और हम उसको एंजॉय कर सकते हो, लाइफ को एवरी टाइम एंजॉय कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ क्या स्ट्रेस है आज की डेट में, भागम भाग इतनी ज्यादा है।
1: That's very nice, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लवली टॉकिंग टू यू। रेडियो सुनने में मजा आता है सर वैसे जेन्युइनली?
7: बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है सर।
1: क्या बात है, मतलब
7: आप अक्सर गाड़ी में रेडियो ही सुनता हूँ।
1: That's very nice. वहाँ पर आपको नई नई अपडेट्स भी मिलते हैं, सिर्फ गाने नहीं मिलते हैं और भी बहुत सारी हैपनिंग चीजें
7: बिल्कुल
1: अपडेट होती है। यस थैंक यू सो मच मिस्टर विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कहाँ पे वर्किंग थे, आपने कुछ बताया अभी राइट नाउ?
7: ये मैं मुरादाबाद में ही वर्किंग हूँ, ये माँ गायत्री ग्रुप ऑफ। ऑल राइट
1: क्या बात है सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हैव अ वंडरफुल डे सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।

0: मम्मी डैडी मेरे दुपट्टा।
1: आई डोंट नो यार,
0: लेके बैंड बाजा घर।
1: अभी नहीं पता मुझे,
0: कब मम्मी डैडी,
1: ये नहीं कर सकता मैडम मैं।
0: लेके बैंड बाजा घर,
1: जल्दी आऊंगा।
0: कब तक मुझे घुमाएगा तू बात।
1: चलो गाइस, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। अब मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया जाने का। मीत ब्रदर्स नेहा कक्कड़ की आवाज में गाना तू एक बारी। चलो, ये वेंसडे की सुबह थी, बहुत सारी बातें होगी, फ्रेश वाली यू नो वाइब आपको मिल गई। कंग्रेचुलेशन सभी सुपरस्टार जो है, बहुत ही धाकड़ है हमारे रेडियो स्टेशन पे, जो भी लोग जुड़ते हैं मजा आ जाता है सबसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। दर्पण भैया थैंक यू सो मच, आपने सही जवाब दिया है। गुड मॉर्निंग, हमारे साथ जुड़े हैं मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेर शारिक अली जी, ये भी मुझे सही जवाब दे रहे हैं। एंड इसके अलावा भारती मेरे साथ जुड़ चुकी है। हेलो मैम भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हाई गुड मॉर्निंग जी, मेरे पास सही जवाब पहुंच रहा था यहाँ पर। हाई राधे राधे, मुरादाबाद से मेरे पास आ रहा था ये मैसेज आकांक्षा सैनी जी का, इन्होंने मुझे राइट आंसर दिया है आज की सुबह। आकांक्षा मुझे लिखती है, हाई सॉरी सर, मैं काफी दिन से मैसेज नहीं कर पा रही थी बिकॉज थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट डेली आपको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा, लवली टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। डीके अरोड़ा जी चंदन नगर से जुड़ रहे हैं, रेगुलर लिसनर, इन्होंने सही जवाब दिया। ये यमुनानगर हरियाणा से यशपाल बिंदल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, श्रुति मेरे साथ जुड़ चुकी है कांठरूट से, एमडीए से मेरे पास मैसेज पहुंचा है प्रीति कश्यप का, हाई गुड मॉर्निंग पहुंचा रही है। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है विनम्र का, हाई गुड मॉर्निंग आनंद। मेरे पास लदावली कांठरूट से मैसेज पहुंच रहा है अजीत कसाना जी का, बड़े पॉपुलर रेडियो लिसनर है, बहुत ही पुराने, लिखते हैं आनंद जी सीताराम कैसे हालचाल है, जय श्री राम, शानदार प्रस्तुति, थैंक यू वेरी मच। नॉनेश कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं सही जवाब के साथ आज की सुबह, एंड बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वॉइस नोट भी रखे हैं आज की मॉर्निंग, सो इमीडिएटली जरा सुनते हैं।
2: अनु भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया।
2: जिन लेजेंडरी एक्टर्स का बर्थडे है, हाँ, उनका नाम है संजय दत्त साहब,
1: क्या बात है,
2: हमारे संजू बाबा,
1: हाँ,
2: लाजवाब एक्टर, लाजवाब मूवी,
1: क्या बात है,
2: लाजवाब एक्टिंग,
1: अरे वाह,
2: संजू बाबा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सर आपकी आवाज भी कमाल की है, अमित वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आनंद भाई नमस्कार, मूवी का नाम है अग्निपथ, जो की 2012 में आई थी, संजय दत्त साहब की शानदार मूवी कांचा चीना,
1: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यार आप लोग सच में इतने वंडरफुल वॉइस नोट पहुंचाते हो, इतनी एनर्जेटिक आवाज सुनके तो मजा आ गया यार, सीरियसली बता रहा हूं।
4: राधे राधे आनंद जी,
1: राधे मैम
4: सॉन्ग बज रहे हैं, संजय दत्त,
1: अरे
4: संजय दत्त है
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हां जी बिल्कुल, थैंक यू मैम जी।
4: संजय दत्त जी का बर्थडे है आज, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
1: थैंक यू अलका जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया।
4: आनंद जी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हम सुनने वालों को। आनंद जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है,
1: थैंक यू अलका मैम,
4: सुनकर एक एनर्जी सी आ जाती
1: है, ब्यूटीफुल,
4: और तमाम तरह की जानकारियां मिलती है हर सेक्टर के बारे में, जानकारी प्राप्त हो जाती है आपका प्रोग्राम सुनने से, धन्यवाद,
1: थैंक यू।
4: आनंद जी ये सॉन्ग अग्निपथ मूवी से है, इसके हीरो थे ऋतिक रोशन बट खलनायक थे संजय दत्त।
1: सुपर फैबुलस फैबुलस, थैंक यू सो मच अलका जी, सच में बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा इतनी एक्टिव रहती हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। चलो आगे बढ़ते हैं और मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए थे, जल्दी से पढ़ लेता हूँ। हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, अग्निपथ मूवी का था ये, रिहाना रानी नागल से जुड़ी थी, रिजवान खान साहब से जवाब दे रहे थे, ये शफी अहमद अंसारी, रईस दूल अंसारी मेरे साथ जुड़ रहे थे, इनको अंदाज आवाज सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन। मयंक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके थे आज की सुबह, आकाश मेरे साथ जुड़े हैं मिलन बिहार के, मिलन बिहार से, एंड निकत फातिमा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, ये मोहसिन अंसारी साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे पास जुड़े थे बबलू सैनी साहब मुंबई महाराष्ट्र से, मित्रपाल जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह, हरिओम कश्यप जुड़ चुके हैं, साथ में निधि जुड़ चुकी हैं, प्रीति जुड़ चुकी हैं, ये दुर्गेश सैनी भी जुड़े हैं। गाइस थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, खुशी आ गई उसका टाइम शुरू हो गया है। पाकिस्तान से हमारे साथ एक प्यारे लिसनर जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आप पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बाय, टेक केयर, 10:20 10 बजे मुझे जाना होता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा मैंने जो है यहाँ पर आपसे बात के लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, तो यार इसे कहते हैं पैशन एंड डेडिकेशन। सब लोग घर घड़ी देखते हैं, टाइम कब होगा मुझे घर जाना, मैं देखता हूँ यार मुझे टाइम कब मिलेगा और बात करने के लिए। वेल वेल वेल, थैंक यू सो मच। अमरोहा से मैसेज आया था नेहा जी का टेक्स्ट मैसेज, इन्होंने मेरे को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है और इनको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी मेरी यार की शादी है, आशा भोसले, साथ में सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज। और दोस्तों ये सुपरहिट ट्रैक अभी आपने सुना शरारा शरारा, और सच बताऊं तो आज मैं भी शरारा पहनकर आई हूं। इस गाने की धुन में एक ऐसा ही जादू है कि कोई भी लड़की या फिर लेडी डांस करने को ना खुद को रोक नहीं पाती है, मतलब वो डांस करती ही है, क्योंकि जैसे ही बीट शुरू होती है चेहरे पर मुस्कान कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। हाँ दोस्तों, और आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन भी है, आपको भी पता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो उनको खुशी यहाँ पर बताने के लिए आए हैं ना। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप बस यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों आज तारीख है 29 जुलाई की और दिन है बहुत ही खूबसूरत सा बुधवार का। जी हाँ, वेनेसडे है आज। और समय मैं आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है अभी 10:30 राइट नाउ। मुझे पता है बहुत सारे श्रोता इस समय मैसेज करने में बिजी हैं, मुझे फटाफट से मैसेज भेजने में, टाइप करने में व्यस्त हैं कि जल्दी से खुशी जी आ गई, हम मैसेज पहुंचा देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं के तो मैसेज यहां पर आ भी चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन।

0: और दोस्तों कहते हैं ना, एक बहुत ही स्पेशल आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमें भी वो मंत्र बहुत ही खूबसूरत सा याद आया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों इतना खूबसूरत सा दिन है अपने गुरु को प्रणाम करने का, अपने माता पिता को नमन करने का, क्योंकि फर्स्ट गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। आप सभी को आषाढ़ मास गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु माता पिता और प्रकृति को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु केवल जीवन ही, गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, वो जीवन को सही दिशा सही सोच और सही पहचान भी देते हैं। माँ ने जीवन दिया है, पिता ने चलना सिखाया, गुरु ने ज्ञान का प्रकाश दिया और धरती माँ ने हमें संभाला। और इस गुरु पूर्णिमा पर अपने सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें। आप सभी को आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो दोस्तों एक खूबसूरत सा गीत मैं यहां पर प्ले कर रही हूं, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा ट्रैक, बस आप बने रहिए खुशी के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक तो लेना ही है, लेकिन हाँ अभी कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद खुशी लौट कर आने वाली है। बस आप मुस्कुराना भूल मत जाना, ठीक है? मुस्कुराइए, आप इतने प्यारे लग रहे हैं आज की सुबह।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: For more
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। देखिए एवरीवन, वक्त मैं आपको बता देती हूँ अगेन, समय हुआ है अभी 10:43। जी हाँ, 10:43 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है। और मुझे पता है कि श्रोता जो हमारे लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि कल से सावन स्टार्ट होने वाला है और सभी को भी शब्द से इंतज़ार होता है सावन का। और हमारे श्रोताओं के भी यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहे हैं बैक टू बैक, तो हम सभी को शामिल करने वाले हैं। दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। आज की सुबह आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए? आपके मन में जो प्यार है, जो उमड़ कर आ रहा है, वो आप बयां कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फैमिली के सामने नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा होता है, लेकिन आज शायद आपकी फैमिली भी रेडियो सुन रही हो और आप जो फैमिली को ना बोल पाए हो वो यहाँ पर आप बोल देते हो, आपके दिल की बातें उन तक पहुँच ही जाएंगी। जल्दी जल्दी से पहुंचाइए, इतना आलस मत कीजिए। आपने सुबह सुबह तो इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, हाँ इतनी एनर्जी आपके अंदर है, फिर इतना लो क्यों फील कर रही हो भैया? जल्दी से मैसेज पहुंचाएगा। फिलहाल मैं लौट कर आती हूँ एक कुछ एड ब्रेक की उस पर, लेकिन आपको कहीं नहीं है जाना, चिपक के रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9

0: 1-800-930-4077।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है दोस्तों, ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना कनिका कपूर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर. एंड बहुत ही खूबसूरत ये गाना भी था, राइट ना? आपको अच्छा लगा? मुझे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी. अच्छा दोस्तों, मेरा ना आपसे एक सवाल भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन वो अभी मालूम नहीं करूंगी क्योंकि पहले मैं आपके मैसेजों को शामिल कर लेती हूँ. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का लोधीपुर मुरादाबाद से. कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर. उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है प्रेम मित्र खुशी जी को, हमारा नमस्कार. आपको भी नमस्कार सर. और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से, और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं. मेरा तोहफा तो कर ले कबूल, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है. कुमार सानू साथ में अलका यानी जी की बड़ी प्यारी आवाज सुनवाएंगे ये गीत आपको सर. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसी हैं आप? निखत फातिमा जी का मैसेज आया है और ये कहती हैं कि आज संजय दत्त जी का बर्थडे है, तो आज उन्हीं का एक सॉन्ग मैं सुनना चाहती हूँ. मैम, इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है. ओहो, सच में? थैंक यू सो मच. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग डियर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दूल अंसारी जी भी हैं, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. और ये कहते हैं कि मैम हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, उड़ते बादल से पूछो उनको पता है मेरा नाम. तो चलिए दोस्तों अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करते हैं आपसे बातचीत. आप भी अपने मैसेज पहुंचाइए, और कुछ खास अपडेट भी हैं जो आप तक पहुंचानी है. तो आप बने रहिएगा, सुनते रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने दिन को ब्यूटीफुल तरीके से इंजॉय करते रहिए, क्योंकि दिन भी तभी खूबसूरत होता है जब आप दिल से मुस्कुराते हैं.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, हम आपके साथ रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक रहते हैं। यो आपके लिए रेडियो जो है वो आपके लिए सुबह से लेकर रात तक आपका साथ देता है, जब तक आप सोते नहीं, और ये आपकी हर एक चीज का ख्याल रखता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे श्रोताओं की शुरुआत हमेशा रेडियो से ही होती है। मॉर्निंग में पहले उठते हैं वो, उसके बाद रेडियो ऑन करते हैं, उसके बाद सारे काम शुरू करते हैं, है ना। ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। और अगर हम रेडियो नहीं सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ तो अधूरा है। जैसे बिना चाय के सुबह अधूरी लगती है ना, वैसे ही रेडियो को सुने बिना भी मॉर्निंग अधूरी लगती है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बहुत सिंपल है। तो दोस्तों, आज का हमारा मजेदार सवाल सुनिएगा जरा ध्यान से। क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? हाँ जी दोस्तों, आपको मुझे बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उसका क्या नाम है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है उसका नाम मुझे बताइएगा। फटाफट से अपने मैसेज पहुंचाइए, नंबर है 9837896896। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है उसका नाम आपको मुझे बताना है, तो अपने जवाब हमें पहुंचाइएगा। नंबर हमारा है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर और भी खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आरजी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवलीस जी। एवरी मॉर्निंग अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर जी का, और ये कहते हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपको और एफएम रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं दीपांश एंड न्यू मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, और आज का जो आपने सवाल पूछा है इसका आंसर बहुत ईजी है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। और ये आंसर इन्होंने पहुँचाया है, अभी मेंशन करेंगे, थोड़ी देर में इंतज़ार करो, और भी श्रोता जवाब दे रहे हैं। अगर आपने सही जवाब पहुंचा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम और श्रोताओं को ना शामिल करें, वो भी अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं हम तक। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आज संजू बाबा का बर्थडे है, तो हम उन्हीं की मूवी का एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, मुन्ना भाई MBBS का एक टाइटल ट्रैक आप

सुनवा दीजिएगा, बिल्कुल सब सुनवाएंगे आपको। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रिजवान खान जी, साथ में उस्मान खान जी हैं और दीपक भी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं, थैंक यू। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया इंसान हुसैन जी का दौलत बाग मुरादाबाद से, अली अब्बास जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। एंड इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको सुनवाने का। आप थोड़ा सा इंतजार करें और सही जवाब मुझे पहुंचाइए। मैंने पूछा है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, क्या नाम है उसका, आप मुझे बताइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ और मुझे पता है कि आपको जवाब मालूम है। चलो अभी गाना सुनो और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी दर्द है ना, उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि खुशी आपको बार बार कहती है दिल से मुस्कुराइए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। वक्त हुआ है 11:23। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, अब ऐसी खबर जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देती है। हाँ जी, आसाम और नागालैंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना यानी इंडिया एयरफोर्स लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। पिछले 10 दिनों में भारतीय वायुसेना ने 458 लोगों की सुरक्षित जान बचाई है। इसके साथ ही 9 टन से ज़्यादा राहत सामग्री भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई है, ताकि बाढ़ से जूझ रहे लोगों को समय पर भोजन, दवाइयां और ज़रूरत सामान मिल सके। खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना सेना की अन्य इकाइयां और स्थानीय प्रशासन पूरी टीम वर्क के साथ राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। ऐसे मुश्किल समय में हमारे जवान सिर्फ देश की सीमाओं को ही नहीं बल्कि देशवासियों की जिंदगी की भी रक्षा करते हैं। उनका ये समर्पण और साहस वास्तव में प्रेरणादायक है। हम सब भारतीय वायुसेना और राहत कार्यों में लगे सभी जवानों के जज्बे को दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद। और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति गीत। दोस्तों, आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। ये है हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर जिस पे आपको मैसेज पहुंचाना है। और मैंने आज का सवाल बहुत ही सिंपल सा आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जी हाँ, क्या उसका नाम है? हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा। और स्पीड में थोड़ा सा मैसेज जल्दी पहुंचाइए, इतना आलस मत कीजिए यार। और सुनिएगा एक देशभक्ति गीत, बस मैं लौट कर आती हूँ। बी प्राक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बिल्कुल दोस्तों, आज रात चंद्रमा की दर्शन करना बहुत ही शुभ है और आप कीजिएगा। एंड कहते हैं भी हैं, अगर चंद्रमा के सामने जब हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब चंचल होता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है। तो मन का जो कारक है वो मून है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मन है वो स्थिर रहे, इधर उधर ना भागे, तो उसके लिए आपको चंद्रमा के दर्शन करने होंगे और उनसे प्रार्थना करनी होगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, समय हुआ है अभी 11:37। और दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। आज का दिन समर्पित होता है उस शाही शिकारी को जिसे बता देती हूँ मैं, आज राष्ट्रीय उसे भारत का राष्ट्रीय पशु होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जी हाँ, आज विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे। दोस्तों, बाघ सिर्फ जंगल की शान नहीं बल्कि पूरे जंगल के संतुलन का रखवाला है, और अगर बाघ सुरक्षित रहेगा तो जंगल सुरक्षित रहेगा, और जब जंगल सुरक्षित रहेगा तभी हमारी नदियाँ, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत के लिए गर्व की बात है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और बाघ बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं और अपने पानी में तैरना उन्हें बेहद पसंद होता है। सोच सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, बाघ भी स्विंग करता है, पानी में तैरता है।

भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका उद्देश्य बाघों और उनके प्राकृतिक आवासी की सुरक्षा करना था। इसी प्रयास का परिणाम है कि आज भारत में बाघों की संख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ी है, लेकिन अभी भी अवैध शिकारी, जंगलों की कटाई और मानव वन्य जीव संघर्षों जैसी चुनौतियां बाघों की अस्तित्व के लिए खतरनाक बन रही हैं। तो बस देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा प्रकृति भी खूबसूरत रहेगी, और जितने भी पशु पक्षी हैं सभी को उनका जो आशियाना है वो भी मिल जाएगा। आप देखें दोस्तों, पहले कितनी गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन अब तो चिड़ियों का पता ही नहीं चलता है, दिखाई नहीं देती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन पहले हर घर के आंगन में चिड़िया चहचहाती थी, बोलती थी, और ये सब चीजें इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कट रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, और इस मानसून तो जरूर लगाएं, क्योंकि मानसून पेड़ पौधों के लिए सबसे पावरफुल महीना माना जाता है। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ क्योंकि हमारे श्रोता लगातार मुझे सुन रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज पहुँचाया है रिहाना जी ने। रिहाना जी कहती हैं कि मैम, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुबारकी जी, आपने सबसे पहले सही जवाब दिया है। लगता है कि कान लगाकर ध्यान से रेडियो को सुन रही थी आप। हाँ, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा आपका फटाक से मैसेज आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नईमूल अकरम जी का, सिरसवा दोराहा से बोलते हैं मैम गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग सर, अभी तो गुड मॉर्निंग है, शाम कैसे हो गई है। और ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पशु है। सर, आपने जो जवाब पहुंचा है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ओके, एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, कैसी हैं आप। एक छोटी सी शायरी है, इन्होंने लिखा है कि बहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, बहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। ओ माय गॉड, रियली। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है। ओके, सुनवाएंगे ये गाना। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, और इन्होंने सही जवाब पहुँचाया है, बाघ, एग्जैक्टली राइट आंसर। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रणवीर सिंह जी का, और ये भी सही आंसर के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया कपिल जी का, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद इरशादी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम मॉर्निंग मसाला हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कहते हैं कि आप हमें किसी भी ट्रैक में शामिल कर लीजिएगा, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना मैसेज पहुँचाया है। उसके अलावा लक्ष्मी देवी जी का मैसेज हमारे पास आया है सूर्यनगर मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग आरजी खुशी, कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और इन्होंने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे मैम उसको प्ले करने का, बट आप बने रहिए, सुनते रहिए खुशी को। और आज गुरु पूर्णिमा है तो सबके घर में पूजा भी हो गई होगी ऑलमोस्ट, बहुत सारे लिसनर्स ने तो आज व्रत भी रखा है, तो चलिए दोस्तों एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा ही देते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, बस यहीं पर बने रहना है। हाँ,
और एक बहुत प्यारा गाना है जो कि माय ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है, एंड ये गाना ना हमारे श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो क्या कहती है ऑडियंस, सुनवा दें ये गाना? अच्छा अच्छा ओके, चलो अगर आपने हाँ कर दिया है तो फिर सुनवा ही देते हैं। ये ट्रैक वो है जो हर किसी की जुबान पर रहता है, और जब ये सुनते हैं ना ये वाला गाना तो होए होए सबको अपने पुरानी यादें आ जाती हैं यार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों 29 जुलाई का दिन बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त जी के नाम, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और मां मशहूर अभिनेत्री नरगिस जी थी। अभिनय और सिनेमा का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि संजय दत्त की पहली बार जो फिल्म आई थी वो 1972 में फिल्म आई थी रेशमा और शेरा में एक बाल कलाकार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने 1981 में फिल्म रॉकी से बतौर मुख्य अभिनेता बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन दुख की बात यह रही कि उनकी मां नरगिस इस फिल्म की रिलीज देखने के लिए जीवंत नहीं रही थी। एंड दोस्तों उनकी बहुत सारी फिल्में रही हैं। संजय दत्त जी ने रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल किरदार हर तरह की फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी कुछ यादगार फिल्में रॉकी, नाम, साजन, सड़क, खलनायक। वास्तव द रियलिटी जो 1999 इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, जी हाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। मिशन कश्मीर 2002 में आई थी। मुन्ना भाई MBBS 2003, लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में आई थी। अग्निपथ 2012 में उनका कांचा चीना का किरदार भी खूब पसंद किया गया था। दोस्तों संजय दत्त जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। नशे की लत, कानूनी परेशानियां और जेल की सजा जैसी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन हर बार उन्हें हिम्मत के साथ वापसी की और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उनके जिंदगी पर भी बनी फिल्म संजू जो 2018 में आई दर्शकों को काफी पसंद आई। दोस्तों फ्रेंड्स, संजय दत्त जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और हौसला हो तो नई शुरुआत हमेशा संभव है। एक बार फिर से संजू बाबा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय पशु टाइगर है और राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है। आरजी खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं खुशी जी आप हमारे यहाँ पर आइएगा, आपको अनेक प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कभी मौका मिलेगा तो आपके यहाँ पर भी आएंगे। और दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं आपको सुनवा रही हूँ जो कि संजय दत्त जी पर फिल्माया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी बैक टू बैक सारी अपडेट्स, क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में एंड मुरादाबाद सिटी में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बने रहिएगा, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।
1: जिंदगी से भाग कर आया हूं,
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तय किया था। इस दिन का मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए काम करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराना होगा।
0: भैया, क्या ये सिर्फ जागरूकता के लिए है या इसके पीछे और भी उद्देश्य हैं?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक

0: मंच पर लाता है ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सके। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
1: इस साल की थीम क्या है और इसका क्या मतलब है?
0: इस साल की थीम है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
1: सेहतिया भैया, जरा आसान भाषा में बताइए मलेरिया आखिर होता क्या है?
0: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
1: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
0: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुँच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
1: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई है, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार हैं।
1: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
0: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
1: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?
0: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
1: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
0: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत, कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है, नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
1: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
0: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं, जहां साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहां ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
1: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
0: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
1: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
0: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
1: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
0: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब यह सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
1: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
0: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
1: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
0: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
1: भारत का लक्ष्य क्या है?
0: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
1: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
0: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। PHC और सब सेंटर से मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी Artemisinin Based Combination थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
1: सेहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था, और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
1: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
0: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा फैले।
1: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
0: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांव में नियमित रूप से इंडोर रेसिड्यूअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
1: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
0: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है, अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है। इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
0: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पे जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
0: यही सबसे खतरनाक बात है, मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए बुखार को हल्के में ना ले।
1: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
0: यही सबसे बड़ी गलती है, जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अभी डॉक्टर ने 3 या 7 दिन की दवा दी है, तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर समाधान क्या है?
0: समाधान बहुत स्पष्ट है, समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
1: तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
0: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
0: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
0: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
0: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा।
0: अब हम कर सकते हैं
1: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
3: देखिए आर्जेरीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
2: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
3: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
2: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जेरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
2: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
3: बिल्कुल आर्जेरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
2: दृष्टि चक्र वह कैसे?
3: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
2: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
3: देखिए आर्जेरीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
2: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
4: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
2: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
4: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
2: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
4: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
2: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
3: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
2: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
3: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
2: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
3: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
2: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
3: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
2: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
3: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
2: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
3: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
4: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
2: किस तरह का भोजन करें?
4: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
2: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
4: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
2: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
3: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
2: अच्छा?
3: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
2: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
3: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
2: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
3: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
4: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
2: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
4: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
3: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
2: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसे
4: पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
5: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA, MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
5: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
6: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
5: ठीक है मैम।
6: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
5: ऑल राइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
6: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
5: ओके, ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
6: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
5: ठीक है।
6: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
5: ठीक है।
6: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
5: ज्यादा है।
6: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
5: ओके।
6: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
5: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
6: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल।
6: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं, जितनी
5: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
6: दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल,
6: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
5: राइट।
6: हीम प्रोटीन होता है।
5: राइट।
6: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
5: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
6: बिल्कुल करना
5: सारे
6: चाहिए। और जितने सेब हैं,
5: हाँ जी, जो फ्रूट्स हैं,
6: ओके, फ्रूट्स हैं,
5: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
6: बिल्कुल सही,
5: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
6: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
5: ओके,
6: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
5: ओके।
6: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
5: कम हो जाता है।
6: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस हैं। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
3: ओह माय गॉड,
6: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
3: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
6: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
3: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
6: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं किसी डॉक्टर को, जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
3: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए guys, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और
3: मैं हूं भावना। और आज चर्चा होगी हमारे बीच में आभा कार्ड को लेकर। आज आपको बताएंगे आशीष आभा के बारे में। आशीष बताइए।
4: बिल्कुल भावना, अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज मैं और मेरी सहयोगी भावना, हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आभा की। आखिर ये आभा है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे और कौन कर सकता है? भावना, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
3: जी बोलिए।
4: अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपने बीमार होने के बाद में जाती हैं, तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है?
3: पहला सवाल आशीष तो यही होता है कि ये बीमारी आपको कब से है और क्या इसके पहले कहीं ये बीमारी का इलाज कहीं करवाया है कि नहीं करवाया है। तो हमारे अगर हमने इलाज करवाया होता है तो हम पर्चा दिखा देते हैं उनको, प्रिस्क्रिप्शन, और अगर नहीं कराया होता है तो बता देते हैं कि नहीं कराया
4: है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद पर्चा खो गया हो, फट गया हो या नहीं मिल रहा हो, और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पुरानी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
3: हमारे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि मान लीजिए कभी हम इलाज कराने गए और 2-3 साल पुराना पर्चा, कहाँ कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो डॉक्टर से बस ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कभी करवाया था लेकिन हमारे पास उसका कोई
4: प्रमाण नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते कि हाँ हमारा इलाज चला तो ऐसे ही चला था। दरअसल मैं ये बातें इसलिए भी पूछ रहा हूँ भावना, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ही इस बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई जो हमारे या बहने हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों को फेस किया होगा जब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं लेकिन वो समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसी के निराकरण के लिए हमारे पास है आभा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आभा क्या है।
3: बिल्कुल आशीष,
4: तो आभा मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल ये 2021 में सरकार की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं या अगर आप उसमें शामिल हैं या अपना इलाज करा रहे हैं तो सबको आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो

0: तो ठीक ऐसे ही आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाती है, एक हेल्थ खाता बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी आपकी जुड़ी हुई जानकारियां जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो उस खाते में आप दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उनके लिए बहुत काम की जानकारी होगी?
1: आशीष, ये बहुत काम की चीज है, लेकिन आप इसके विषय में और भी बताएं जिससे हमारे श्रोता इसको सुने और समझें।
0: बिल्कुल, हम इस पर जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक आम जानकारी जो आभा से जुड़ी है वो मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके इसे जनरेट किया जाता है। 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आभा का
1: जी।
0: और आभा कार्ड की, जैसा आपने कहा और पूछा भी है, तो कई सारी विशेषताएं हैं और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो लोगों को बिना किसी परेशानी के भावना हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने में मदद करता है।
1: मतलब
0: ये कि जैसे आपको कोई भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सारी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आभा आईडी में दर्ज हो सकती है। अब मैं थोड़ा आपको खुलकर बताता हूँ, खुलकर यानी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आभा कार्ड, जिसे मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है लोगों की, जो एक यूनिक 14 अंकों का नंबर है जिसे भारत में हेल्थ केयर एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के हिस्से के रूप में ही आभा हेल्थ कार्ड आपको देश भर के हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उसको शेयर करने की अनुमति देता है।
1: मतलब अब आप समझ पाए? हमारे पास पर्चा नहीं भी है तो भी अगर कहीं गुम हो गया हमारा पर्चा, तो ये जो आभा कार्ड है उसका प्रयोग करके हम इसको अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जानकारी हासिल कर सकते हैं।
0: तो आभा कार्ड के मोटे तौर पर जो लाभ हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ।
1: हाँ, बताइए।
0: पहला, आसान हेल्थ केयर एक्सेस है आपको। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके में उन कार्यक्रमों में भी कहीं नामांकन करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करता है। स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कहीं से कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से कराया है, तो आप अपने आभा कार्ड में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी एक ये भी जानकारी आपके पास रहेगी कंबाइंड तौर पर। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका लगातार बन रहा है जिसको आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उससे शेयर कर सकती हैं।
1: तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है आशीष, कि जैसे कि आपने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने कहीं कराई है, स्वास्थ्य बीमा कराई है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे, तो इसका पैसा उसके अकाउंट में चला
0: जाएगा? पैसे से मतलब अभी नहीं है। देखिए, वो तो जाहिर है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स देते ही हैं पॉलिसी लेते समय, ठीक है। और पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी हैं हेल्थ सेक्टर की जिसमें मैच्योरिटी के बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगती है तो उस समय आपका इलाज उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है, यानी कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, जो पैसा खर्चा आता है वो सारा बेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं अलग अलग जो पॉलिसी सेक्टर में हैं कंपनियां, जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट मिल जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी हेल्थ पॉलिसी जो है, स्वास्थ्य बीमा जो है, उसके विवरण को आभा आईडी से अगर लिंक करते हैं तो अपने मेडिकल कवरेज को आप एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं।
1: एक ही जगह पर?
0: हाँ, एक ही जगह पर अपने मेडिकल कवरेज को आप ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि भावना, आप मुझसे पूछ तो रही हैं लेकिन आपको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को कुछ आप भी जानकारी
1: मेरे मन में मेरे प्रश्न का एक जवाब दे दीजिए आशीष आप पहले
0: जी।
1: कि अकाउंट आपने जिसे आभा आईडी के बारे में बताया, आभा कार्ड के बारे में बताया, आभा एक अकाउंट है, और ये अकाउंट में क्या कुछ हमें पैसे जमा करने हैं या सरकार देगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी?
0: नहीं, इसमें कोई ऐसा पैसा वाला हिसाब किताब नहीं है भावना। दरअसल ये एक तरीके का मेडिकल या हेल्थ अकाउंट है, स्वास्थ्य खाता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको

0: समझाता हूँ कि आभा का अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लें। दरअसल आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत बनाई गई एक यूनिक हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है जो किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को समेकित करता है।
1: अच्छा।
0: जिससे हेल्थ केयर सेवाओं का आसानी से एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर की सेवाएं हैं उसमें आपको एक सही एक्सेस मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। और ये आभा हेल्थ कार्ड यूजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ साथ अपने हेल्थ डेटा को भी आसानी से शेयर करने की अनुमति देता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय और पर्सनलाइज्ड केयर सुनिश्चित होती है भावना, और हेल्थ केयर की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आभा का उद्देश्य भारत में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। अब एक सवाल और भी आता है, ये तो हो गया कि आभा क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आभा क्यों बनवाएं, यानी कि सवाल ये है कि
1: आप कैसे बनवाएं।
0: हाँ, सवाल ये है कि आभा आईडी क्यों बनाएं। ठीक है,
1: कि हमारे जो श्रोता हैं अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी कर पाएं। हाँ। कि क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं, कहाँ अप्लाई करें।
0: बिल्कुल, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में दरअसल हमने देखा है कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म लगभग आज की डेट में डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हम अगर स्तर पर देखें या ई गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं डिजिटली बदलाव कर रहे हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते हुए जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी आभा हेल्थ आईडी बनाना बहुत जरूरी है। समझ रही हैं आप?
1: हाँ,
0: जैसे जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है, देश की सरकार का या विभागों का या अलग अलग महकमों का, जहां पे लोगों को फायदा होता है योजनाओं से, उससे जुड़ने या उसका हिस्सा बनने के लिए आपकी आभा हेल्थ आईडी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टरों के साथ साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने का सबसे आसान तरीका देता है, जिससे एक तो तेज डायग्नोसिस हो सकेगा और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो भावना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपके पास आभा आईडी होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़े और कारण बताएं कि डिजिटल हेल्थ केयर के लिए आभा कार्ड लोग क्यों चुने।
1: अच्छा ठीक है, आपने पूछा कि आभा कार्ड क्यों चुने, तो आशीष हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो आभा आईडी है, एक ही जगह पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे और जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एक ही जगह पर स्टोर करती है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: यानी कि ये जो तीनों चीजों की जानकारी है वो हमारी आभा आईडी में एक ही जगह पर आ जाएगी,
1: जहाँ पे स्टोर कर लेती है।
0: ठीक है,
1: इस वजह से ही भी आभा आईडी चुने। और दूसरा कारण ये है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तुरंत आपकी मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आशीष, और पेपर वर्क और प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं।
0: मतलब ये हुआ कि कहाँ, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर होंगे तो हमको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा, तो कम से कम वो समय बचेगा
1: वो
0: और डॉक्टर एक ही जगह पर जल्दी से वो सारी हिस्ट्री समझ जाएंगे। ठीक है।
1: और दूसरा ये कि पॉलिसी के जितने भी लाभ हैं वो और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान एक्सेस के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा विवरण को लिंक करें।
0: अच्छा, मतलब जो कैशलेस इलाज मिलता है, अगर वो आप पाना चाह रहे हैं और आपने अगर इसको लिंक कर लिया है अपनी आभा आईडी से, तो यानी कि आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
1: मिलेगा।
0: ओके।
1: और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने और सरकारी हेल्थ केयर की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का उपयोग करें।
0: तो श्रोताओं, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी भावना जी ने बताई कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं अगर वहां पर इसका विकल्प रखा गया है तो। और सरकारी हेल्थ केयर स्कीम जितनी भी चल रही हैं, उसका लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको आभा हेल्थ कार्ड बना लेना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं भावना?
1: लाभ तो अभी आपने बताया आशीष, कुछ लाभ तो आपने बताया कि आभा सुविधाजनक एक्सेस हो सकता है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी आसान पहुंच हो सकती है, आयुष हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा हो सकती है, और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है आशीष।
0: सही कहा भावना आपने। तो कुल मिलाकर आभा कार्ड चुनकर आप कुशल, पेपरलेस और कनेक्टेड हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे मेडिकल विजिट अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाती है। और जैसा कि लाभ के बारे में चर्चा चल रही है, तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करने का सुविधाजनक एक्सेस है आभा, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान एक्सेस है आभा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, जिसको HPR बोलते हैं, उस तक भी आसान एक्सेस है आभा, और आयुष हेल्थ केयर सेवाएं सुलभ हो जाती हैं आभा हेल्थ ID से। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा मिलती है आपको, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं आप लोग, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आभा, 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम के भीतर एक ही पहचान आपकी स्थापित करता है।
1: आभा हेल्थ ID कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
0: इसके अलावा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की भी सुविधा है, यानी कि आभा हेल्थ ID सिस्टम आपके अकाउंट को आवश्यकता के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की सुविधा देता है, और ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पसंद और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी को मैनेज कर सकते हैं।
1: और इसके साथ ही आभा हेल्थ ID कार्ड आपको लाभार्थियों को जोड़ने, आश्रितों या परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुविधा आपके प्रियजनों की स्वास्थ्य जानकारी की एकीकृत देखभाल को सपोर्ट करती है और उनकी निगरानी को आसान बनाती है।
0: अरे वाह, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का एक्सेस भी है आभा। दरअसल कार्ड के साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस हेल्थ सुविधा रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। देखिए बहुत सारे लाभ हैं। वैकल्पिक दवा का एक्सेस मिल जाता है, जैसे आयुष सेवाओं के साथ में आभा हेल्थ ID कार्ड का इंटीग्रेशन अगर हो तो वैकल्पिक दवाओं के विकल्पों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। इतना ही नहीं, सहमति आधारित डेटा शेयर कर, यानी कि अगर आप चाहें तो उस ID के जरिए आप अपना डेटा जिसको चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति देता है आभा। भावना, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगी?
1: हाँ आशीष, हम बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। आभा हेल्थ ID कार्ड आपको नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जा सके, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रावधान देखभाल की निरंतरता को सपोर्ट करता है और आपके स्वास्थ्य हितों की भी सुरक्षा करता है।
0: क्या बात है, यानी कि आभा सभी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो बीमा क्लेम वाली दिक्कत आती है लोगों के सामने, अगर आप आभा के साथ जुड़े हैं तो बीमा क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो तेज हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आभा कार्ड क्या बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं?
1: हाँ आशीष, चाइल्ड आभा कार्ड के नाम से बच्चों के भी आभा हेल्थ ID सिस्टम बच्चों तक पहुंचता है, जिससे चाइल्ड आभा कार्ड बन सकते हैं। यह शुरुआती एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड को कम उम्र से व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट किया जा सके, जिससे लगातार और सूचित बाल रोग देखभाल में मदद मिलती है। आशीष, अब आशीष एक प्रश्न आ जाता है मेरे मन में, यही से।
0: क्या पूछिए?
1: वो ये कि आभा हेल्थ कार्ड अकाउंट किसे बनाना चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत अहम प्रश्न है भावना आपने जो पूछा है। दरअसल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जितने भी लोग चाहते हैं, सभी लोगों के लिए आभा कार्ड बनाना बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। जैसे क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग, या जिन्हें बार बार मेडिकल आवश्यकताएं पड़ती हैं, ऐसे लोग, या फिर वो लोग जो अपने हेल्थ केयर अनुभव को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वो आज इलाज करा रहे हैं, फिर वो सही हैं, कई महीनों कई सालों तक वो सही हैं, फिर कुछ बीमारी आई, फिर उन्होंने उस चीज में सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, फिर वो सही हो गए, कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में फिर कोई बीमारी आई, फिर उन्होंने अपना इलाज कराया और रिकॉर्ड दर्ज हो गया, तो यानी कि उनके पास कई साल का डेटा भी होगा। तो ऐसे लोग भी अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इसके विस्तार रूप से समझने की है, तो देखिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक नामांकन लाभ को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आभा कार्ड बनाकर आप हेल्थ केयर सेवाओं का सही समय पर एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समस्याओं को आगे बढ़ाने से पहले ही उनकी आवश्यक देखभाल आपको मिल जाए। और ये सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बढ़ाता है और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार भी करता है। और भावना, इसके अलावा आभा कार्ड जो है ना, वो हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर, जैसे यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श कर सकता है या ले सकता है, और अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है, और ये बड़ा आसान हो जाता है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना, और जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना या फिर अपॉइंटमेंट मैनेज करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि भविष्य के हेल्थ केयर लाभों के लिए भी आप तैयार हो जाएं अगर आपके पास आभा कार्ड है, क्योंकि कार्ड होने से व्यक्ति भविष्य में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये एक उभरता हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको। आभा कार्ड बहुत सारे हेल्थ केयर सुविधाओं में मरीज के डेटा को लिंक करके एक तरीके से बड़े ही आकर्षक हॉस्पिटल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि एकीकरण हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर जानकारी प्राप्त करने वाले निर्णय और बेहतर रोगी देखभाल की सुविधा मिलती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। अब लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और आ जाता है।
0: जी पूछे
1: पूछे कि ये आभा कार्ड का उपयोग कैसे करें?
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है भावना। दरअसल आभा हेल्थ कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है, जो मेडिकल सेवाओं को चुनने से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिस्ट्री जो मैंने बताया, HPR, इसका एक्सेस करें। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर HFR का उपयोग करें। वैकल्पिक दवा विकल्प आप देख सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब आपने जो एक सवाल पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी ID बनती कैसे है,
1: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से बताइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा ID पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉइड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी ID का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा, ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें, है ना। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
1: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने जी उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे
0: बिल्कुल
1: करें?
0: तो ये भी समझने वाली जरूरत, ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है भावना?
1: आशीष एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
0: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
1: PHR एक एड्रेस है पहले वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे OTP मांगी जा रही है। जब आप OTP डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका PHR जो है PHR एड्रेस वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है? तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके। तो अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं आभा नंबर पाने के लिए, ठीक है, तो एक लिंक है आभा ऐप का जो मैं पढ़ भी देता हूं, और अगर हमारे श्रोता भाई बहन जो हैं अगर वो जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। यदि आप खुद इंटरनेट के जानकार हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप पर या अपने फोन पर ब्राउजर में जाके अगर वो लिंक डालेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ,
1: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़िएगा।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
1: करके आप
0: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है, तो भावना मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है
1: बहुत आराम से आशीष बताइएगा।
0: तो लिंक, अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है, फिर स्लैश लगाइए ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है, उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुने, और अगला उसमें लिखा होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आ जाएगा, ठीक है? अब आपको OTP वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
1: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
0: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
1: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
0: हाँ, या जन सेवा केंद्र है,
1: जन सेवा केंद्र पे कर सकते हैं,
0: ठीक है? और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए आपका जो लिंक है वो है http://लगाइए abha.abdm.gov.in, जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /abha/v3/register, ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे एक ऑप्शन होगा ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए, इस पर क्लिक करिए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और घोषणा चुने आगे बढ़े, यानी कि आगे बढ़े वाली जो घोषणा है उसको क्लिक करें और आगे बढ़े। जैसे ही आप ये करेंगे अपने रजिस्टर मोबाइल पर आप देखेंगे कि एक ओटीपी आया होगा जिसको दर्ज करें सामने, और फिर वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला और राज्य जैसे विवरण आएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा।

0: इसके अलावा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी फोटो उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपका आभा नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लें। आपका आभा नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आभा कार्ड के साथ हेल्थ केयर का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो सुव्यवस्थित हो जाती है और टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन भी होता है। जैसे आभा कार्ड वर्चुअल कंसल्टेशन को भी सपोर्ट करता है जिससे रोगियों को दूर से हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलती है भावना, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्र के लोग जो हैं उन्हें लाभ हो सकता है।
1: यानी कि फोन से भी आप अपने दवाओं की जानकारी पा सकते हैं।
0: हाँ, मतलब उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप ये भी जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
1: वो क्या है आशीष?
0: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
1: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है?
0: हाँ बिल्कुल, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर न मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
1: अच्छा।
0: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है
1: आधार कार्ड नंबर की तरह।
0: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है। हाँ। तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
1: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
0: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
1: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
0: देखिए, मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
1: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है प्रिंटर है तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उस पर हर वर्ष 5,00,000 तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी? ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
0: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं?
1: जी बिल्कुल,
0: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
1: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
0: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
1: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर
0: ये करने अकाउंट
1: के
0: वैसा
1: लिए?
0: ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है। तो जैसे वो खाता है, वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
1: जो हमारे पर्चे, जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
0: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है। ठीक है
1: जी आशीष,
0: दो तीन सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
1: आशीष,
0: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है? तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक है,
1: कैशलेस क्लेम,
0: जी कैशलेस क्लेम के लिए आप
1: लिंक
0: उसका
1: करेंगे अपना बीमा को, तब वो
0: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया, तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा। ठीक है, एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है, इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया।
1: बिल्कुल, आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है, आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले, तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
0: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
1: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही, बहुत जरूरी है ये।
0: तो ये लाभ
1: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड से
0: मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया,
1: जी
0: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया, मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये कितना बड़ा टूल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है, जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है? तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है, उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था।
1: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
0: और काफी उपयोगी है ये, तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं।
1: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष।
0: बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें, तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है। बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए। बेहतर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी ID भी आप शेयर कर दें, ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है, वो उनके बहुत काम आने वाली, क्या कहती हैं
1: आशीष? बहुत काम आने वाली है, और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने।
0: बिल्कुल। और देखिए रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा ID क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हमें प्रयोग करें, कैसे पाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा है आभा, और इसके बारे में जो भी आपने बातें बताई है, जो जानकारी बातें बताई है
0: जी,
1: वो बहुत ही लाभ होने वाली है हमारे श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपको आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान कार्ड या फिर जितनी भी और हेल्थ की योजनाएं चल रही हैं या बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से अपने विशेषज्ञों के जरिए या अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहेंगे।
1: तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
0: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट, कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने में दाई का
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीज, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास पा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं उन्हें संभाल निकालनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते हैं।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, विमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है ही, आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर। ठीक है, अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि absolutely. वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग की
0: एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता
0: है,
1: बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें। प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना, जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं, दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स, की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं।
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिन हो रहा है, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.

0: इस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
1: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती हैं। अब तो

0: वो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
1: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की CBI जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: ये पीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ ना कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
8: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हीरो से लेकर विलेन तक हर किरदार में जान फूंक देने वाले एक्टर संजय दत्त को भला कौन नहीं जानता। फैंस और पूरा बॉलीवुड इन्हें प्यार से संजू बाबा कहता है। आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1959 को मुंबई में मशहूर एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर संजय दत्त के नाम से जाने गए। आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की सवारी रही जिस पर एक बायोपिक फिल्म संजू जो कि 2018 में बन चुकी है, जिसमें इनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसे में आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ और अनसुनी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म यलगार का ये रोमांटिक सा गाना।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती

0: भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आई दिस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि श्रोताओं, हम हर डेली आप सभी के लिए लेकर आते हैं महिला मंच शो, जहां हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सो आज की हमारी बात उस लड़की के लिए है जिसने बचपन से लेकर संघर्ष करा है। एज में हम खेलते हैं, उस एज में उसने लकड़ियां उठाई है। कहते हैं सपने पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में सपने नहीं बल्कि संघर्ष लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी है भारत की शेरनी मीराबाई चानू की।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी मीराबाई चानू। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची, किसी ने नहीं सोचा था कि यह बेटी एक दिन पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगी। घर के आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। पिता लोक निर्माण विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे और माँ छोटी सी चाय की दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठाती थी।
0: बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब छोटी मीराबाई जंगल से लकड़ियां काटकर सिर पर उठाकर घर लाती। कई किलोमीटर पैदल ना उसकी मजबूरी थी। एक दिन उसके बड़े भाई जितनी लकड़ियां नहीं उठा पाए, लेकिन छोटी सी मीराबाई ने मुस्कुराते हुए उसे भी ज्यादा वजन उठाकर ले आई। उसी दिन परिवार को एहसास हुआ कि इस बेटी में कुछ खास बात तो है। मीराबाई का सपना पहले तीरंदाज बनने का था, लेकिन 8वीं कक्षा की किताब में भारत की मशहूर वेट लिफ्टिंग कुंज रानी देवी के बारे में पढ़ा तो उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें भी देश के लिए पदक जीतना है।
1: लेकिन सपना देख लेना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। घर में पैसे नहीं थे, वेट लिफ्टिंग के उपकरण खरीदना तो दूर, ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का किराया भी नहीं होता था। कई बार वह बालू और पत्थर ढोने वाले ट्रकों से लिफ्ट लेकर अभ्यास करने पहुंचती थी। सही उपकरण नहीं मिले तो बांस के तनों से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत के बाद भारतीय टीम में जगह मिली, लेकिन 2016 का रियो ओलंपिक उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल बन गया। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी, लेकिन वह अपना प्रदर्शन पूरा नहीं कर सकी। बिना पदक लौटना पड़ा। लोग सवाल उठाने लगे, आलोचना होने लगी। कई रातें ऐसी थी जब वह रोते रोते सो जाती थी।
0: लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को कहा, अगर गिर गई हूँ तो उठकर पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगी। और फिर आया 2017 में विश्व भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप। वही मीराबाई जिन पर सवाल उठा रहे थे विश्व चैंपियन बन गई। पूरी दुनिया ने उनकी ताकत को सलाम किया।
1: फिर आया टोक्यो ओलंपिक। इस बार मीराबाई ने सिर्फ वजन नहीं उठाया बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को भी अपने कंधे पर उठाया। महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। पदक जीतने के बाद जब उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे तब पूरे देश की आंखें नम थी।
0: इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लगातार स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही होता है जो हर बार खुद को बेहतर बनाता है। मीराबाई चानू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी आपकी पहचान नहीं होती, आपकी मेहनत आपकी पहचान बनती है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मगर इरादे मजबूत हो तो जंगल से लकड़ियां ढोने वाली बेटी भी एक दिन ओलंपिक के मंच पर तिरंगा लहरा सकती है।
1: याद रखिए, सफलता कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती, वह उन्हीं के कदम चूमती है जो हर दर्द सहकर भी अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ते, और मीराबाई चानू इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है।
0: तो श्रोताओं, हम उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहते हैं जो खुद को हार मान लेती हैं। यानी कि मीराबाई चानू ने 2017 में गोल्ड मेडल जीता, फिर दूसरा दौर आया 2022 जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, फिर यानी कि 2026 यानी कि भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली पहली विमेन बन गई। तो श्रोताओं देखिए, इरादे मजबूत होना चाहिए। आप कोई भी काम कर सकते हो, चाहे आप कितने भी गरीब फैमिली से क्यों ना हो। और बहुत सी लड़कियां हैं जो काम करती हैं, हार मान लेती है। हालांकि मीरा बाई को भी ये कहा गया था 2016 में जब ये हार गई थी, तो इनको भी यही कहा गया था कि छोड़ दो, मत करो इस काम को, तुम आगे बढ़ो। लेकिन इनकी जो मम्मी है वो उनके साथ रही, उनकी मम्मी को विश्वास था कि एक न एक दिन मीरा बाई देश का नाम जरूर रोशन करेगी। और इन्होंने किया। जब फैमिली साथ होती है ना, तो आधी जीत तो आपकी वहीं तय हो जाती है। कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आए, उसको भी आप आसानी से क्रॉस कर लेते हो। तो खुशी, तुम उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगी जो सपने तो देखती हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मार्ग आ जाते हैं बीच में जिनसे वो हार मान लेती है, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी, मीरा बाई के थ्रू क्या उदाहरण देना चाहोगी तुम उनको?
1: तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं, लाइफ में उनके भी ड्रीम्स हैं, वो भी बड़े बड़े सपने देख रही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि राहों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको उस मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, अपनों के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप खुद पर विश्वास रखती हैं ना, तो आपकी जीत वहीं पर निश्चिंत हो जाती है। पहली जीत आपको तभी मिलती है जब आप खुद पर विश्वास रखती हैं। और कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर मिलेंगे आपको एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।

बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर है हेलो फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, घड़ी में वक्त हुआ है अभी 3:10 राइट नाउ, और बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है। कभी बादल होते हैं तो कभी धूप हो जाती है। हाँ देखिए, जिंदगी भी ना ऐसी ही है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी लाइफ में हैप्पीनेस भी आती है, लेकिन हमें दोनों को मेंटेन करके चलना है। और इन्हीं बातों के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे एक लिसनर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अभी आपने ज्वाइन किया है, तो इस ब्यूटीफुल सेशन में ना आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ब्यूटीफुल शो में आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कॉल कैसे लगाएं, मैम नंबर तो बताइए। तो बता रही हूँ ना, थोड़ा इंतज़ार करो, होए होए आते ही। हाँ चलिए बता देती हूँ, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896, 98-378-96-896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको मुझे कॉल लगाना है। तो आप जल्दी से कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल करते हैं अपनी कॉलर से बातचीत। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, बताइएगा क्या नाम है आपका सर?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद संभल और अटल सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, मजा आ रही है। और अब तो मौसम भी ठंडा हो गया है, बारिश से राहत मिल गई है।
0: जी जी जी, मौसम काफी अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम है। तो बताइएगा सर, आज आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मौसम ठंडा है और सावन भी लगी चुका है, और मैं आया सावन फिल्म का नाम है और गाने के बोल है आया सावन झूम के।
0: ओके,
1: बोल है गाने के, और मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नाम तो ले दूंगा, दो एक नाम तो ले
0: दूंगा। जी जी जी बिल्कुल, नाम ले लीजिएगा।
1: जैसे मीना मुन्नी पवित्रा।
0: ओके, तो आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गीत आपको। आपने हमें कॉल किया सर, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद। ओके
0: जी, तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं। और हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कल से सावन स्टार्ट होने वाला है, तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, मुझे पता है। चलिए तैयारी कीजिएगा, महादेव जी को प्रसन्न जो करना है। हाँ, और मन पसंद का वर मांगना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं हम। वैसे बहुत सारा, मतलब मैंने सुना है अपनी सोसाइटी में एंड आसपास में, कि अगर लड़कियाँ सावन के महीने के व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो उनको अच्छा वर मिलता है, शिव जैसा ही वर मिलता है, बहुत प्यारे से। तो जिन जो चाहती हैं कि हाँ मेरे को शिव जी जैसे वर मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा तो परिश्रम करना होगा ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हैं आप?

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक आपने सुना और सावन की वाइब अभी से स्टार्ट हो गई है। एंड ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना अभी, टाइटल ट्रैक आया सावन झूम के, जो 1969 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब जी, साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत प्यारी आवाज़। लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के और म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर।

0: हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ, राशिद नाज।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं होनी चाहिए सर।
0: हाँ जी, हमारी दुआएं तो हमेशा सभी के लिए होती हैं। बताइएगा पाकिस्तान का मौसम कैसा है?
1: पाकिस्तान कराची का मौसम स्वच्छ गर्मी का है, कोई बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।
0: ओके, तो बारिश अभी तक हुई नहीं है?
1: बस वही हल्की बूंदाबांदी सी होती है, फिर वो खत्म हो जाती है मुख्तसर से।
0: ओके सर, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है हेलो फरमाइश में, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मेरे घर भतीजी आई है, असल में इस खुशी में मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ
0: जी।
1: फिल्म कभी कभी से। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, मेरे घर आई है एक नन्ही परी।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत से गाना आपने चुना है और इतनी प्यारी सी खुशी आपको मिली है। तो हमें मिठाई वगैरह कब खिलाएंगे आप बताइए सर?
1: जब आप कहेंगे मिठाई मिल जाएगी आपको।
0: अरे
1: मिठाई आपसे ज्यादा थोड़ी है कोई।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: बस ऐसा समय कि अगर शाम को चाय पियेंगे ना आप,
0: हाँ
1: तो बस
0: जी,
1: मुझे याद कर लीजिएगा, समझे मिठाई पहुंच गई आपको।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत कहा आपने सर। क्योंकि देखिए कहते भी है ना, और बड़ी खूबसूरत सी बातें भी हैं, कि फर्क दूरियों से नहीं पड़ता है, जगह दिल में होनी चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, तो सुनवाते हैं गीत, आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: ओके,
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ मुझे भी कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये 9837896896, और समय भी बता देती हूँ, 3:21 हो गए हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, मेरे घर आई एक नन्ही परी। दोस्तों कहते हैं कि जिनके घर बेटे जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं ना वो सौभाग्यशाली होते हैं। तो बहुत लकी होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। और हमारे मम्मी पापा भी बहुत प्राउड करते हैं कि हमने जन्म लिया है। और देखिए उनकी बेटी कहाँ पर बैठी है। भैया आजकल लड़कियाँ हर फील्ड में आगे हैं, तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। और जब वो आपका नाम रोशन करेंगी तो आप खुद सबके सामने प्राउडली कह पाएंगे कि हाँ मेरी मतलब डॉटर है, बहुत ही नाम क्या है। और आजकल बेटियाँ वैसे भी हर क्षेत्र में आगे हैं, हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो बेटियों को कभी भी किसी से कम मत समझिए और किसी के भी कहने से डीमोटिवेट मत होइए। आप बच्ची को अच्छी एजुकेशन दीजिए ताकि वो भी लाइफ में जो भी उसके ड्रीम्स हैं वो पूरा कर पाए। तो अपनी भारी भरकम बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: जी सुन पा रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा। नमस्ते, आपको भी अपना शुभ नाम बताइए।
1: मैम मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोविंदपुर बाजीदली मिस्त्री बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैम मैं आशियाने बनाता हूँ।
0: आशियाने बनाते हैं, बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं सर। मैंने आपसे
1: मौसम में खड्डा दे।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी बाहर का मौसम कैसा है सर, बताइएगा सर।
1: मैम बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश पड़ रही है इस टाइम में, और जीने का चप्पल भर रही हूँ, चप्पल जीने का।
0: अच्छा
1: ना, जिससे
0: जी जी जी जी
1: उसकी पैरी बना रही हूँ। अच्छा,
0: बारिश हो रही है।
1: जी जी हल्की हल्की बारिश।
0: ओके, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी
1: आज? मैम गाने की फरमाइश है, लौंडा का गाना चेंज हो गया, पहले मेला फिल्म का सुनना चाहते थे, अब सुनना चाहते हैं सिद्धू मूसा वाला का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक है सर, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: जी हमारे, मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हमारे सुनने वाले श्रोता ये
0: हाँ
1: उस्मान है, अनस है, और आरब है, आरब हमारा दोस्त आरब।
0: ओके ठीक है सर।
1: और गोविंद गोसर रियाजुल भाई है, जाबुल हसन है, अफसर अली है, और ये बारिश अली है, जैनुल आबेदीन है, ये सभी सुनना चाहते हैं।
0: चलो ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आपसे करेंगे बातचीत। अगर आप भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी कॉल लगाएं, आपकी भी फरमाइश पूरी हो, या कोई ऐसा गाना जो आप किसी अपने को डेडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस प्यारे से गीत को सुनते रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और अभी आपने एक खूबसूरत सा गीत सुना सिद्धू मूसेवाले का। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम तो बढ़िया हैं।
0: ओके, कहाँ पर हैं आप?
1: जी बारामकी।
0: जी जी जी, बताइएगा कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: जी मैम, सब बढ़िया हैं।
0: जी, सबको अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड सर?
1: जी मैम, हमारे वहाँ तो अभी बारिश हुई थी कल और आज तो धूप निकली हुई है।
0: अच्छा, आज धूप निकली है, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी हमारी फरमाइश ये दिलाज खाना फिल्म है, उसी फिल्म का गाना है अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी।
0: ओके, तो ये गीत आप किनके साथ सुनना चाहते हैं?
1: जी सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और कुलदीप गुप्ता जी हमारे रोले बारह उनकी
0: जी। ओके,
1: और सभी श्रोताओं को।
0: अच्छा ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद
0: जी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं फ्रॉम द मूवी ये दिल आशिकाना से ये प्यारा सा ट्रैक। अगर आप भी सुनना चाहते हैं कोई भी गाना, अपनी फेवरेट, अपनी पसंद का, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो फटाफट से कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और अभी देखिए समय हुआ है 3:42। जी हाँ, 3:42 राइट नाउ। आप अगर चाह रहे हैं इस शो में कॉल लगाना तो लगा सकते हैं, आपका कॉल भी लग जाएगा। बट आप चाहते हैं कि एक बार ही हम प्रयास करें और हमारा कॉल लग जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन क्या होता है ना, सेम टाइम बहुत सारे लिसनर्स कॉल करते हैं और उनमें से एक ही लकी होता है जिसका कॉल लग जाता है। शायद आप भी लकी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आप ट्राई करते रहिएगा। मुझे तो यकीन है कि आपका कॉल लग जाएगा, क्योंकि कहते भी हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी अवश्य मिलता है, देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। तो बस आप भी कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कॉल लगाते रहिए, बाकी लक को भी आजमाइए, शायद काम कर जाए। और बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी, आदाब खुशी जी।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब सर, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, मैं मंसूरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ, कैसी हैं मैम आप?
0: जी बहुत ही अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आपके परिवार में सब ठीक हैं?
1: जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार में कैसे हैं सब?
0: जी बहुत ही बढ़िया, सब लोग बिंदास हैं। आप बताइएगा क्या कर रहे थे इस वक्त आप सब?
1: बस क्लिनिक पर ही थे, दवा खाने पर, और कुछ काम में लगे हुए थे, बाकी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। आज सोचा काफी टाइम हो गया कॉल किए हुए तो कॉल कर ली जाए।
0: जी आपने बहुत अच्छा किया, और देखिए आपने ट्राई किया, आपका कॉल भी लग गया है। अच्छा सर, बाकी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप, जो कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नंबर कभी कभी बहुत बिजी आता है, नहीं लग पाता है, तो उनके लिए आपके मैसेज देना चाहेंगे?
1: उसमें ये है कि इत्तेफाक की बात है, मैंने तो अभी पहली बार ही ट्राई किया था, एकदम कॉल लग गई।
0: हाँ, आप लकी हैं,
1: हमें भी काफी टाइम लग जाता है।
0: जी
1: बाकी कोशिश आदमी करता है किसी भी काम के लिए तो वो उसे
0: कामयाबी मिलती है,
1: तो कामयाबी मिल जाती है।
0: जी जी सर, तो बताएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: लता जी और किशोर जी की आवाज में एक सॉन्ग है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, इस तरह से ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग प्ले करते हैं आप।
0: ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं
1: और मेरे साथ में इस गीत को सुनना चाहते हैं सैयद शारी कली है, मेहराज अंसारी है, और बाबू अंसारी ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी है, और जामा मस्जिद अगवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान, और आपके और जो इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहे हैं सभी के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: जी सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, ये प्यारा सा गीत तो हम सुनेंगे ही, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। और लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक के पहले ना, एड ब्रेक का भी टाइम हो गया तो एड ब्रेक को भी हम प्ले करते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करते हैं।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर, किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना प्यारा सा गाना अभी आपने सुना। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। देखिए ख्वाब तो आपने भी देखा है कि काश मेरा भी कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में। देखिए ये भी अपने आप में एक किसी सपने से कम नहीं होता है कॉल लगाना। लाइक रैंडमली किसी का कॉल लग जाता है वो बहुत लकी होते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं हमारे श्रोता कि बहुत ट्राई करते हैं फिर भी उनका कॉल नहीं लग पाता है। लेकिन दोस्तों आप हैरान मत हो, मतलब आप ना हिम्मत मत हारिए, आप कॉल लगाते रहिए और मुझे तो भरोसा है आप पर, बट आप भी खुद पर विश्वास रखिए और कॉल कंटिन्यू लगाते रहिए। बाकी अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश आज क्या सुनना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अजय कुमार, शाली खतर, जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा कैसे हैं जी आप?
1: मैम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो, स्टूडियो कैसे हो रहे हैं?
0: हाँ जी स्टूडियो में सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा आप कहाँ पर हैं, पहाड़ों पर हैं या फिर घर पर हैं अपने?
1: नहीं मैम फिलहाल अभी तो जाना नहीं है, चौमासा है।
0: अच्छा तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: मैम सॉन्ग सुनना है
0: जी।
1: बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे पराना, पराने भी झिलकता।
0: ओके तो ये प्यारा से गाना सुनवाते हैं जी। जी थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: मैं मतलब मैं भी काम पे लेटा था कमरे में, तो मैं मेरे मतलब मेरे दिल में ये आई कि मैम को बात कर ली जाए, याद लग गया
0: तो। ओके देखिए आपने ट्राई किया और आपका कॉल भी लग गया है, कैसे लग रहा है बताइएगा?
1: जी मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली दफा फर्स्ट नंबर भी लग गया मैम कॉल।
0: ओके ठीक है सर,
1: थैंक यू
0: तो चलिए अभी बस एक खूबसूरत सा गीत।

0: मांगता है। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: कोई मिल गया,
6: कोई मिल गया।
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, वक्त हुआ है अभी 4:02 राइट नाउ। बाहर का जो मौसम है बड़ा ही ऑसम है, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरशी खुशी। साथियों, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है हेलो फरमाइश। आप यहाँ पर कॉल करके अपना फेवरेट गाना सुन सकते हो, अपनी पसंदीदा कोई भी ट्रैक अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप फटाफट से कॉल लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा आपके पास अभी गोल्डन चांस है, तो उसे बिल्कुल ना मिस करें। आप मुझे कॉल लगाएं, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार
0: जी,
1: ठीक है आप?
0: हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: हाँ जी, मेरा नाम रीना है, मैं लालू वाला से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बस बढ़िया है, कट रहा टाइम
0: जी। टाइम को नहीं काटना है, टाइम को आपको जीना है। जिंदगी एक बार मिली है, पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले,
1: कोई पता नहीं।
0: तो जिंदगी को अच्छे से जीजिएगा हर पल।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टाइम ही कट रहा है, मैंने क्या बोला करना है, उसमें सफलता मुझे मिली नहीं। मैंने आग का ऑपरेशन करा था उसमें, गांधीनगर में विजन हॉस्पिटल में, उसमें पूरी सक्सेस नहीं हो पाया ऑपरेशन आग का।
0: ओके,
1: तो अब आग के बिना तो हम अधूरे ही हैं। ये है, इसलिए टाइम कट रहा है।
0: ओके, तो बताइए कैसे आप अपनों के साथ रहते हैं, आपके साथ जो वक्त बिताते हैं फैमिली मेंबर्स, कैसा लगता है आपको?
1: अच्छा लगता है, सबसे अच्छा ये है कि मैं रेडियो में ही थोड़ा टाइम काट लेते हैं और क्या।
0: जी जी जी, ये तो आपका साथ ही आपके साथ है ही हमेशा,
1: हमारा साथ देने वाला रेडियो है, हमारा हर वक्त यही टाइम काट देता है।
0: जी सर, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैडम एक गाना था, वो जब हसीना भाई रुक जाती है तो वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: ओके, तो ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी शोले से।
1: जी जी जी
0: जी, तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, सीधा कॉल लगाना है।

0: खूबसूरत नजर आई दोनों की जोड़ी। किशोर कुमार जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी बर्मन जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर
0: रहा हूं। रिजवान खान जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप सर।
1: मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ आप कैसे हो।
0: मैं भी ठीक हूं सर, आप बताइएगा क्या कर रहे थे इस वक्त आप।
1: अभी अपने काम से लग रहे हैं।
0: अच्छा ओके, क्या काम करते हैं आप।
1: काम
0: अच्छा विरास का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। काम करते करते आपने कॉल लगा लिया है आज।
1: आज बहुत दिनों में मैंने काम पे कॉल लगाया।
0: जी जी जी, वरना फ्राइडे में ही करते हैं यार सर, बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने उनकी फोटोज देखी थी और साथ में आपकी भी। जी तो बताइएगा सर आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: महेंद्र कपूर की आवाज में।
0: ओके तो ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सर जी की पसंद का और महेंद्र कपूर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ये प्यारा गाना ओल्ड दिस गोल्ड। तो पुराने गानों की बात ही अलग है ना, सुनते हैं सब ये प्यारा सा गाना मिलकर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको दसना नहीं है, सीधा आपको कॉल करना है। जब आप कॉल करेंगे तभी तो आप अपने दिल की बात हमसे कह पाएंगे ना। एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 4:19 और आपने अभी बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, सतेंद्र सरताज जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। सानू आजकल शीशा बड़ा छेड़ता। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो
1: मैम, गाने बोले चोरी चोरी जब आंख लड़ी।
0: सर अपना नाम तो बताइएगा।
1: मैम नाम बोल गई क्या
0: जी? आप बताइएगा अपना नाम, क्योंकि हमें तो पता है लेकिन हमारे न्यू श्रोता भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, शायद वो भी सुनना चाहते हैं। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्वालियर हो क्या मैम?
0: हाँ जी
1: ग्वालियर हूँ।
0: हाँ जी, आप ऑनियर है सर?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत आफ्ताब कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, अभी सो के उठे थे, सो के उठा मैंने, पहले केंद्र लगाया, कॉल पे लगा दी मैम, एक साथ मैंने 18 गोले लगा दी।
0: ओके,
1: और मैम मौसम कैसा है मुरादाबाद का?
0: जी मौसम बहुत प्यारा है
1: मैम, इधर भी ऐसे हो रहा है, ठंडी ठंडी मतलब हवाएं चल रही है, काफी सुहाना मौसम हो रहा है रामपुर में।
0: ओके
1: मैम, आप आइए, आपको चाय और समोसा खिलाएंगे, आप जी आती नहीं हमारी तरफ घूमने के लिए।
0: थैंक यू सो मच, आएंगे कभी नेक्स्ट टाइम सर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना, काम में इतना बिजी रहते हैं।
1: मैम आप दोनों आ जाओ, रीना जी और आपका इंतजार रहेगा मुझे दोनों का।
0: ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें इन्वाइट किया उसके लिए शुक्रिया आपका। सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा गाना। हाँ बताइएगा, टेल मी।
1: मैम मूवी का नाम है अफलातून, गाने के बोल रहे हैं चोरी चोरी जब आंख लड़ी। मैम आज के फरमाइश में मेरा सॉन्ग प्ले कर देना, को सुनने वाले हैं।
0: जी जी बताइए।
1: मैम सबसे पहले ये ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, सुहार से तैयार और रामपुर से अमान साधनापुरम।
0: ओके तो सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको, ठीक है सर?
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद हम आपसे भी करेंगे बातचीत, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, आपको अपना फ़ोन उठाना है और हमें कॉल लगाना है। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896868। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुन।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: देखिए दोस्तों, समय हुआ है 4:29 और ये शाम का समय, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम भी है बाहर। और इस मौसम में अगर अपनी पसंद के गाने हो जाएं तो नजारे और खूबसूरत हो जाते हैं। और आप भी चाहते हैं कि गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपका फेवरेट गाना भी प्ले हो जाए, तो आपको मुझे कॉल लगाना होगा। आप मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे खुशी। और अभी बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना।
1: जी मैं मोहम्मद हनी से बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, काजीपुर के पास में गांव पड़ता है हमारा, मिला खासम, एक छोटा सा गांव है।
0: ओके, उस छोटे से गांव में आप भी रहते हैं?
1: जी छोटे से गांव में मैं भी रहता हूँ, और साथ में फिलहाल चारों तरफ हरियाली हरियाली है। फिलहाल खेतों में धान लगे हुए हैं और हरी हरी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी हो रहा है, खुशनुमा मौसम हो रहा है बरसात का।
0: अरे वाह क्या बात है, इतना सुहाना सा मौसम है, चारों तरफ हरियाली है और ऊपर से अपना फेवरेट गाना, ओए होए होए, मौसम के नजारे ही खूब रंगीन हो जाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर आप?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है सुहाग।
0: हाँ,
1: और गीत के बोलने गोरे गोरे मुकुड़े तो काला काला चश्मा।
0: ओके
1: जी,
0: तो अभी आप खेतों पर हैं क्या?
1: जी मैं खेतों फिलहाल इस टाइम तो छत के ऊपर हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, गवावा खा रहा हूँ। मैम आप भी आ जाइए और गवावा खाइए।
0: अरे थैंक यू सर, थैंक यू। आपके घर पेड़ खड़े हैं शायद, है ना?
1: जी जी, फिलहाल अमरूद के अपने हाउस में जो है ना वृक्ष लगे हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने घर के पेड़ों के अमरूद खाने का मजा ही कुछ और होता है।
1: जी मैम बहुत जी। अच्छा लगता, आनंद आता।
0: हाँ जी, तो मीठे मीठे अमरूद आप खाइएगा और ये प्यारा सा गाना सुनिए, हम सुनवाते हैं आपको। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा। बहुत ही प्यारा गाना, बिना किसी देरी के सुनते हैं।

0: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। आप भी अगर चश्मा लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो लगाया कीजिए कभी कभी, अच्छा लगता है यार। बाकी अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: आदाब आवाज है मैम।
0: आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैं शान आलम बोल रहा हूँ मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: आज मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी परिवार में अच्छे होंगे।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हम सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपकी मिसेस कैसी हैं?
1: मैम सही है, वो अपने घर पर ही हैं।
0: अच्छा, बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: खराबी थी तो वो दवाई लेने गई भी हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी मौसम कैसा है राइट नाउ?
1: बढ़िया है मौसम मैम।
0: अच्छा,
1: थोड़ा धूप नहीं निकल रही है ना, तो अच्छा है।
0: ओके, तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सर?
1: मैम मैं मोहम्मद रफी साहब की 31 जुलाई को पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैं उनकी याद में कोई गीत सुनना चाहता हूँ।
0: ओके, तो हम एक प्यारा सा गीत,
1: मर्जी का हो।
0: हाँ जी, मेरी मर्जी का एक प्यारा सा गीत मैं सुनवाती हूँ, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना, वो थोड़ा सा बेईमान हो रहा है।
1: मौसम बहुत, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
0: हाँ, तो मैं यही ट्रैक प्ले करने वाली हूँ।
1: अच्छा, मैंने मैम ये इसलिए कॉल करी कि हमारे जो सुनने वाले जो होता है उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि मतलब 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, सही कहा आपने, बहुत से श्रोताओं को
1: दूर दूर तक सुना जाता है आपका।
0: जी जी जी सर, अलग अलग राज्यों में हमारा शो सुना जाता है और तमाम श्रोताओं को भी इसकी जानकारी मिल चुकी है।
1: जी मैम, शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ये खूबसूरत गीत।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, मिस्टर एंड मिसेस माही। बहुत ही खूबसूरत मूवी, और इसमें नजर आए जानवी कपूर साथ में राजकुमार राव, एंड बहुत ही प्यारी सी आवाज मोहम्मद फैज़ की। फैज़ ने कमाल कर दिया, लाइक कितने खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं। और ये ट्रैक गाए है सभी के दिल पर राज करता है। और दोस्तों, वक्त हुए हैं अभी 4:50। तो सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। जो आपकी शाम को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। स्वीट हार्ट बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से, एंड सारा अली खान साथ में नजर आए थे सुशांत राजपूत जी इस फिल्म में, एंड गाना भी बहुत ही प्यारा है।

हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुना, करण औजला की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, विकी कौशल का डांस, ओए होए होए, बहुत ही खूबसूरत है यार। और वक्त हुआ है अभी 4:49। तो दोस्तों, अभी हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति, मिलेंगे हम आपको कल सुबह 10 से 12। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, अपनों के साथ रहिए हमेशा। एंड वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल लिसनर्स। और नेक्स्ट शो लेकर आने वाली है आरजे रीना जी, जो आपकी इवनिंग को बनाएंगी मस्त एकदम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए, जुड़े रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई है।
5: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
4: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल है, क्या बात है श्रोताओं। हम दिल की पुकार सुन लेते हैं और आप भी हमारे दिल की पुकार सुन लेते हैं। जब भी तो 5 बजते ही हम सभी यानी कि मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ स्टूडियो में। और अभी समय

गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं, मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को सही दिशा देते हैं। इसी में गुरु गोविंद जी के दोहे हैं, यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का साथ इतना ऊंचा है कि वही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। आज के इस पावन अवसर पर अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहे जिन्होंने हमें कुछ अच्छा सिखाया, हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाया, क्योंकि गुरु के बिना शिक्षा अधूरा है। और हमें उन गुरुओं को आज धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से हम अपने जिंदगी में सफल हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो आज आई होप कि आप सभी ने अपने गुरुओं को धन्यवाद बोला होगा कि आपकी बदौलत ही हम यहाँ पर हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल से यानी कि सावन की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी। तो भाई सावन आते ही देखा आपने, दो दिन पहले इतनी झमाझम बारिश, लेकिन अभी भी वेदर थोड़ा सुबह जैसे धूप निकली हुई थी, अभी चेंज हो गया है। यानी कि देखिए बारिश दो तीन दिन तक बता रखी है, बाकी क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से भी यही कहते रहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, एकदम फैंटास्टिक वाला गाना है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:19 हो चुके हैं और ये समय यानी कि मोस्टली आप सभी को पता है कि देखिए अगर टेम्परेचर की बात करूं मुरादाबाद की तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यानी कि सुबह का जो वेदर देख लग नहीं रहा था कि आज धूप निकलेगी, लेकिन धूप भी ताबड़तोड़ वाली निकली। और भैया जिनके कपड़े दो दिन से नहीं सूख रहे थे उनके कपड़े भी आज सूख गए। और फिर से यानी कि 4 बजे से वेदर ने फिर से अपना रुख है वो चेंज कर लिया है। यानी कि हवाएं चलने लगी है, घटाएं छाने लगी है और बारिश आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। बस आपने प्रिपेयर रहना है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो छाता रेनकोट आपके साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आप ऑफिस से निकल गए हैं तो आपने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप मैं कहती हूँ कि आप पूरे पूरे कैमरे की निगरानी में है, इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है श्रोताओं। और आप कहीं ट्रैफिक में हैं बहुत ज्यादा काफी देर से तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं ताकि उस रूट से जाने वाले है वो थोड़ा बच सके, उनका समय थोड़ा बच सके, वो जल्दी अपने घर पहुंच सके, मंजिल तक पहुंच सके। चाहे वो घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे, बस उस रूट से जाने से बचे। क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है और मौसम का कुछ नहीं पता रहता, इसलिए समय पर आप अपने घर पहुंचिए, समय पर मंजिल पर पहुंचिए और बस घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि ये भागदौड़ की ऐसी दुनिया है ना कि अपने लिए क्या, मतलब घर वालों के लिए थोड़ा सा भी हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन मुझे लगता है कि घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर हमें एंजॉय करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल बने रहेंगे आप ही के साथ, अगला गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर। बहुत ही शानदार गाना।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ, और आप सुन रहे हैं अर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के बारे में। जरा सोचिए, अगर कल सुबह खेत में बीज डालना हो, खाद खरीदना हो या फसल में दवाई डालनी हो, लेकिन जेब में पैसे ना हो तो क्या करेंगे? किसी रिश्तेदार से उधार लेंगे या फिर साहूकार के पास जाएंगे, है ना? लेकिन अब साहूकार के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक और रास्ता है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। और अब EKCC की मदद से इसके लिए आवेदन करना पहले से कहीं आसान हो गया है। करना क्या है? बस अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन की जानकारी तैयार रखिए। पहले अपना नाम दर्ज कराइए, फिर बैंक और खाते की जानकारी भरिए। इसके बाद आवेदन जमा कर दीजिए। आपका आवेदन सीधे बैंक तक पहुँच जाएगा। अब जानते हैं इसके फायदे। खेती के लिए समय पर पैसे मिल सकते हैं। बीज, खाद, दवाई और सिंचाई जैसे काम समय पर हो सकते हैं। अगर आप गाय भैंस पालते हैं, डेयरी चलाते हैं या मछली पालन करते हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर समय पर बैंक का पैसा वापस करेंगे तो आगे भी जरूरत पड़ने पर ऋण मिलने में आसानी होगी। नियमों के अनुसार ब्याज में भी लाभ मिल सकता है। एक बात और याद रखिए, आवेदन करते समय कोई परेशानी आए तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। अपने नजदीकी बैंक या PSC केंद्र जाइए, सही जानकारी लीजिए। सही जानकारी, सही समय पर सही योजना, यही एक समझदार किसान की पहचान है। और सुनते रहिए अर्जुरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: जी गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ श्रोताओं। और आज यानी कि 29 जुलाई बहुत ज्यादा खास है। जंगल की असली पहचान अगर कोई है तो वो है बाघ। लेकिन सोचिए अगर जंगल में बाघ ही गायब हो जाए तो क्या जंगल पहले जैसा रह पाएगा? नहीं ना। आज की तारीख बेहद खूबसूरत है क्योंकि आज 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बाघ सिर्फ एक खूबसूरत जानवर नहीं बल्कि हमारे जंगलों का संतुलन बनाए रखने वाला सबसे अहम जीव है। जब बाघ सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, और जब जंगल सुरक्षित रहते हैं तो हमारी हवा, पानी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। दुर्भाग्य शिकार यानी कि जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के लगातार खत्म होने की वजह से बाघों के सामने बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, अब देखिए जंगल काटे जा रहे हैं तो उनके लिए खतरा ही हो गया ना। इसीलिए साल 2010 में टाइगर समिति के बाद यानी कि हर साल 29 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया मिलकर बाघों को संरक्षण का संकल्प ले। आज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ बचाइए, जंगल बचाइए, क्योंकि जब बाघ बचेगा तभी जंगल बचेगा, और जब जंगल बचेगा तभी हमारा कल बचेगा। क्योंकि जंगलों को भी यानी कि सुरक्षित रखने के लिए बाघ का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एनिमल्स हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से इंसान रह सकते हैं उस तरीके से जंगल एनिमल्स भी रह सकते हैं। लेकिन उनके रहने के लिए क्या, यानी कि जंगलें काटी जा रही हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये डे मनाया जाता है कि ताकि उनके रहने का घर तो जंगल ही है, तो उस जंगल को ना काटा जाए, उसको सुरक्षित रखें ताकि जानवर भी सेफ रहे। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओ, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। बने रहिए आर्जरीना के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Abra los ojos, open your eyes.
6: Oye, holy, holy, que David te not

शो में समय की बात करूं तो 5:52 हो चुके हैं और आज के समय में जितना जरूरी समय पर बिजली बिल भरना है उतना ही जरूरी पानी के कनेक्शन का रिकॉर्ड भी सही रखना है, क्योंकि सही जानकारी ही बेहतर सुविधा लोगों तक पहुंचा पाती है। इसी दिशा में यानी कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब करीब 30 लाख पानी के कनेक्शन की KYC की जारी की जाएगी। इसका मकसद यही है कि हर कनेक्शन सभी उपभोक्ता के नाम पर दर्ज हो, मीटर रीडिंग पारदर्शी तरीके से हो सके और पानी का बिल सही व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही सरकार जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और कई इलाकों में सीवर लाइन बिछाने पर भी काम कर रही है। यानी जिस तरह बिजली के कनेक्शन की जानकारी अपडेट रखना जरूरी होता है, उसी तरह अब पानी कनेक्शन यानी कि EKYC भी अहम हो गई है और आपके क्षेत्र में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। श्रोताओं, तो समय पर अपने दस्तावेज जमा रखें, EKYC जरूर पूरा करवाएं। याद रखिए, सही जानकारी, सही कनेक्शन और समय पर बिल भुगतान, यही है एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान। तो श्रोताओं, पहले बस बिजली बिल, भाई हर महीने ये देखते थे बिजली बिल कितना बिल आया है, लेकिन अब पानी का भी EKYC कनेक्शन आपने करवाना पड़ेगा, करवाना बहुत ज़रूरी है KYC। सो फिलहाल मैसेज आए हैं वो भी शामिल कर लेते हैं।

ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਖਰਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋਫਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। जय श्री राम। रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सनी मुंबई महाराष्ट्र से। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी FM सुनने वालों को। और क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये भजन सुनना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम आपको सुनवाएंगे बिंदास रिये। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मतलब ये सर हम जब शो खत्म करेंगे तब सुनाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा शाम और ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस टाइम अच्छा भी लगेगा ये भजन।

और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि जंगल की आपने बात करी, अच्छी जानकारी दी, और पेड़ नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। इनफैक्ट

अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और यही तो नतीजा है पेड़ काटने का। जो पेड़ कटे जा रहे हैं, गर्मी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर भैया 60 पे जाना, यानी कि कम सोचिए आने वाले समय में क्या होएगा। जब यही हाल रहा, पेड़ काटे जाएंगे, बिल्डिंगें खड़ी की जाएगी, तो बस फैक्ट्रियां बनाया जाएगा, तो यानी कि जो जंगल के राजा है, जो एनिमल्स है, वो तो रहेंगे नहीं, और गर्मी जो बढ़ेगी वो अलग ही बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और गाना आप सभी के बीच मिलेंगे, अपनी मुलाकात यानी कि दूसरे घंटे में होगी श्रोताओं, 6 बजे।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रणय ने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्नति हुड्डा दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। फिलहाल मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को और अपने साथी अभिषेक कपिल के साथ और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ. सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है जी, बहुत शानदार आपने गाना एंजॉय किया। श्रोताओं बताइए आप क्या चाहिए, आपको बताइए, मैसेज करके बताइए आपको क्या चाहिए। फिलहाल दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, अर्जुरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। और समय की बात करूं तो 6:09 हो चुके हैं, इवनिंग मस्ते शो में अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। और जैसे हम राष्ट्रीय गान की सम्मान करते हैं, वैसे ही वंदे मातरम का भी हमें सम्मान करना है। अदरवाइज कोई भी इसका उल्लंघन करता है, कोई भी मजाक उड़ाता है, तो आपको भी पता है कि 3 साल की जेल की सजा हो सकती है यार। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें और अपमान हमें नहीं करना है। और अब तो 15 अगस्त बहुत नजदीक है, हर घर में, अपने घर में तिरंगा जरूर लहराइए और तिरंगे का सम्मान जरूर करिए। और थोड़ा हेल्थ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, हेल्थ के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ना, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई बस यही कहता है कि वीकनेस फील हो रही है हमें,

लाभदायक होता है। शरीर में ताकत और ऊर्जा, इसमें प्राकृतिक सुगर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो ऊर्जा देने में मदद करती है। इम्यूनिटी मजबूत करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होते हैं जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें सहारा मिलता है। दिल के लिए अच्छा होता है, नियमित मात्रा में अनार खाना हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। श्रोताओं, एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है, पाचन में भी ये मदद करता है। इसमें फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और साथ ही साथ जो डायबिटीज के मरीज है कृपया डॉक्टर के सलाह से ही ले। और भी मैसेज हैं, जरा उनको भी शामिल करते हैं और बढ़ते हैं अपने शो में आगे।

जी, यानी कि मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आपके प्रोग्राम में शामिल है। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं। और एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं आगे। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी और इनका कहना है कि आप गाने बहुत बिंदास सुनवाती हो और आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये लिखती हैं, आवाज नहीं एहसास है आप, हर दिल की मिठास सी आस है आप, एफएम मुरादाबाद 89.6 की शान है आप, हर श्रोताओं के चेहरे की मुस्कान है आप। थैंक यू सो मच जी। और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, आपने बोला, आपने पिया, हमने पी लिया, बात एक ही है। और इनका कहना है कि आज एक्टर संजय दत्त जी का बर्थडे है तो हैप्पी वाला बर्थडे जी, और उन्हीं का एक गाना सुनवा दीजिएगा। डेफिनेटली जी, हम उनका गाना सुनवाएंगे। फिलहाल एक और खूबसूरत गाना, सो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए, चाहे आप गाड़ी में हैं, चाहे आप घर हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। यानी कि 90s के जो गाने होते हैं ना, बहुत ही शानदार होते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में गाना सुनिए।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

कबूतर ओए होए ओए होए। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। आर्जेरीना के साथ अब कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 6:23 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि देखिए कल से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सभी बोलिए, यानी कि प्रेम से दिल से बम भोले बम हर हर महादेव। सावन का पावन महीना शुरू होते ही शिव भक्त का रंग पूरे माहौल में छा गया। लाखों कावड़िया भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की आस्था और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ संस्थानों पर कावड़ मार्ग के होटलों और ढाबों में नॉनवेज के साथ साथ प्याज और लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है, ताकि धार्मिक भावनाओं को सम्मान बना रहे। और अगर आप भी कावड़ यात्रा पर निकल रहे हैं तो सिर्फ भक्ति ही नहीं, अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। अपने साथ छोटी सी फास्ट फूड किट रखिए, जिसमें बैंडेड, एंटीसेप्टिक, दर्द की दवा ORS, कॉटन टेप और जरूर रखिए। रास्ते में भरपूर पानी पीते रहिए, आराम करते रहिए और किसी भी परेशानी का नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। भक्ति का उत्साह बना रहे, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी है। बोलबम के जयकारों के साथ साथ सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपनी कांवड़ यात्रा को यादगार बनाइए और बोलिए हर हर महादेव। क्योंकि देखिए, कांवड़ लेकर आप तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने साथ ज़रूर रखिए। दर्द की दवा साथ में रखिए, ORS साथ में रखिए, क्योंकि पैदल यात्रा करेंगे और मुझे लगता है कि पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा भी लगे कि भैया थकान हो गया तो रुक जाइए, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ वाला इंसान आगे निकल गया है तो आप भी, तबीयत आपको लग रहा है कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है फिर भी आप बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। और इसी बात पर एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनाते जी, प्रा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
4: तो कब करेगी शादी
5: चुप दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है
4: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं कि तू क्या चीज है

क्या बात है श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 6:35 हो चुके हैं और इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। आय हाय क्या बात है, रीना का शो हो और उसमें कड़क सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है श्रोताओं। तो आज का कड़क सवाल हमारा बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल

पल, क्योंकि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, घर के बाहर यानी कि हम जा ही नहीं सकते हैं। तो आज का कड़क सवाल ये है, जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है। जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है, कौन है वो? मैसेज करके बताइए। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं। जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है।

0: Welcome to the success party.
1: Hello, जी, hello, good वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ. और देखिए एक मैसेज आ गया है, यानी कि साई बाबा की पालकी निकाली जा रही है. तो यानी कि ट्रैफिक जाम है इस टाइम. और बताते हैं किस साइड है.
2: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट.
1: मधुबनी की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिल सकता है. विक्की सागर जी का कहना है क्योंकि साई बाबा की आज पालकी निकलने वाली है.
3: ऐसी गलती.
1: और ये रणवीर सिंह जेठालाल जी कहते हैं, दुनिया में हजारों दर्द मिलते हैं पर काम के लोग कम मिलते हैं. जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं. क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने बात कही है. सो आज का हमारा कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है जी. हाँ, बस सोचना है. देखिए महिलाएं, मुझे लगता है जो विमेन हैं, लड़कों को तो बस वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी प्यारी विमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनको बड़ा टाइम लगता है. और कहीं शादी में जाना हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है. तो आप तो आसानी से आंसर बता सकते हैं, जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है. अब देखिए फॉर एग्जांपल भी आपको मिल गया है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. फिलहाल के लिए एक और गाना आप सभी के बीच, सो इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं शो में. श्रोताओं, बस आप सभी से यही कहते रहेंगे, मैसेज करते रहिए, अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रहिए.

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:46 हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आपके घर में भी LPG सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके लिए सुविधाएं और भी आसान हो गई है। जी हाँ, यानी कि डिलीवरी को बहुत ही फास्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बुकिंग करते हैं सिलेंडर LPG, तो अब ये कहा जा रहा है कि 4 घंटे के अंदर यानी कि सिलेंडर आपके घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी हर शहर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके इलाके में ये सुविधाएं शुरू हो गई है तो आपको गैस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी गैस सिलेंडर एजेंसी से संपर्क करिए और सुविधा का लुफ्त उठाइए। लेकिन अभी ये हर शहर में उपलब्ध नहीं कराया गया है, कुछ ही शहरों में उपलब्ध कराया गया है। अगर आपके शहर में उपलब्ध कराया गया है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वाला मैंने पूछा है आप सभी से। बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। इनफैक्ट जो लड़कियाँ हैं, विमेन है, वो अपने पर्स में भी रखती है, और आजकल तो लड़के भी रखते हैं भैया, छोटू वाली पैकेट रखते हैं वो। आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल मैं बताती हूँ, आप समझ जाएंगे मैं क्वेश्चन जब बताऊंगी। तो जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है, बस एक ही चीज को वो सवार सकता है, क्या है वो? सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9823789698 96। जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है। लेकिन देखिए, रीना ज़्यादा जब बोलती है ना तो उसके मुंह से आंसर स्लिप होने लग जाते हैं, इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ। आप मैसेज करिए और ये गाना एंजॉय करिए।

को मैं दिल दूंगी क्विकली ओ आई रे आई बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली ओ आई रे आई बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली।

हाय हाय, क्या बात है जी। विशाल ददलानी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत अपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:54 हो चुके हैं और आज का कड़क सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मैंने आप सभी से पूछा है। आज भी रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है और आज का कड़क सवाल, जिसके दांत है पर वह हमें काट नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं भैया, किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। ये हमारे साथ कनेक्ट हो गए बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि कंगा है राइट आंसर। ओके बबली अंजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि कंघी है। ओके मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर है कंघा। विक्की सागर जी का कहना है कि पैसा है। ओह माय गॉड, पैसा काटता है क्या सर? चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो संजू कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि हाय दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। आज बहुत दिनों में मैसेज

कर रही हूँ दी, मुझे भूल तो नहीं गई आप? अरे नहीं नहीं नहीं आप इतने प्यारे प्यारे श्रोता है तो कैसे भूल सकते हैं हमें। और ये खेतों में धान लगा रही है इस टाइम, इसीलिए इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं जी, किसानी करना गलत बात थोड़ी है। और उसे चावल, बिल्कुल जी, किसने कहा किसानी करना गलत बात है? आप सभी की वजह से हम सभी के घरों में अनाज, चावल, गेहूं, सब्जियां आती है। तो खेती करना कहीं गलत बात नहीं है। पापा की हेल्प करा रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी फैमिली की हेल्प कराइए, और किसानी करना गलत बात नहीं है जी। ये आप सभी का मेहनत का ही परिणाम है जो आज लाखों करोड़ों आबादियों के घर में यानी कि अनाज जाता है। आप सभी की बदौलत है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो राहुल जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि कंघा राइट आंसर होता है। रूपाली जी का मैसेज आता है, इनका कहना है कि राइट आंसर कंघा है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है यानी कि बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हुए थे और इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर पहुँचाया है। तो आज आप बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के विनर और आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को श्रोताओं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। फिलहाल जो आपने गाना बोला था सर, वो मैं गाना आप सभी के लिए प्ले करती हूँ। और कुछ गाने ना सच में बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही, और ये गाना उनमें से एक है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। कल

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉर्टपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल हैं? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आरजे आनंद के साथ हैं आप। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट टॉक शो, जहां पर हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। ऑफ कोर्स आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन है, तो यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिल को टच करके जाती है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी भी हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद है, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में, जिनकी आवाज में एक मैजिक है, एब्सोल्युटली मैजिक है भाई। आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। एंड मैं जो इतना कनेक्ट हुआ हूं ना मैम के साथ, वो उनकी वॉइस की वजह से ही मैं कनेक्ट हुआ। एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोग मैम को जानते होंगे और शायद इनका चेहरा आपकी आंखों के सामने भी आ जाएगा जब आप इनकी वॉइस सुनोगे। बहुत सारे इवेंट्स करती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैम की लाइफ में चलती रहती हैं और हम भी उन्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल, उसके बाद भी इतनी प्यारी स्माइल और इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं कैसा हूँ मेरे पास शब्द नहीं है। बाय द वे मैम का वार्म वेलकम करेंगे। हेलो, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। ये टॉक शो है जहाँ पर मैं और आप ढेर सारी बात करेंगे। सो कैसे हैं आप? हाउ आर यू मैम?
1: हेलो मुरादाबाद, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और अपने लिए इतना अच्छा अच्छा सुन के तो मैं और भी ज्यादा फाइन हो गई हूँ।
0: एक्चुअली मैम, जब कोई डायनेमिक पर्सनालिटी आपके बीच में हो तो आपको उसके बारे में चार शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि उनकी जो थकान है वो भी दूर हो जाए और एक पॉजिटिविटी और अच्छे से आ जाए।
1: Absolutely.
0: So, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुरादाबाद को आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने स्टाइल में आप बताएं। ऑफ कोर्स आप इतनी अच्छी स्पीकर हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नो डाउट।
1: मुरादाबाद मेरे लिए मेरी गृहस्थी है, मुरादाबाद मेरे लिए एक ऐसी जगह है जिसको मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी शहर जो आपको बनाता है, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपका फर्ज बनता है रीपे करने का। सो अभी इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, बहुत सारे सेटबैक्स भी दिए हैं, बट वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट हुए हैं। और इन सब चीजों को सीखने के बाद आज जब मैंने मुकाम पाया है तो अब मेरा टाइम चल रहा है कि मैं इस शहर के लिए कुछ अच्छा करूं।
0: Very
1: मैं
0: nice.
1: इस शहर को वो सब वापस दूं जो इस शहर से मुझे मिला।
0: वेरी नाइस nice. मतलब एक वंडरफुल इनिशिएटिव के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, नो डाउट।
1: ऑफ कोर्स इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो दुनिया की हर जगह पे जहां आप दिल से खड़े हो जाते हैं आपको कुछ ना कुछ करने मिल ही जाता है।
0: Right.
1: So, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं जहां खड़ी हो जाती हूं वहां मुझे या तो काम ढूंढ लेता है या मैं काम को ढूंढ लेती हूं।
0: क्या बात है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये हर किसी में तो नहीं होता मैम, ये ना एक वाइब मैच करने की बात भी होती है और जब अंदर से आपके वो आती है ना एक कि यार अब मुझे ये चीज करनी है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाती है। राइट,
1: ऑफ कोर्स मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि आपके अपने लाइफ के प्रति जो आपके एथिकल वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको ड्राइव करती हैं इस तरीके का कोई भी काम करने के लिए। इनिशिएटिव जो वर्ड आपने यूज किया, इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप हर चीज की पहल के लिए तैयार रहते हैं।
0: राइट,
1: वो तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, सोसाइटी से कमिटमेंट करते हैं कि आप जो भी करेंगे 100% करेंगे।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और अभी तक देखिए मैम का नाम नहीं जा रहा ना, मैम की खूबसूरत बातें तो आप तक पहुंच ही रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर गाने भी चलेंगे और ढेर सारी बातें भी चलेंगी और आज का सेशन भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो यार। वेल मैम, थोड़ा सा अपने बारे में तो बता दें, अपना नाम बता दें, उतना लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। आप क्या करती है प्रोफेशनली और आप कहाँ से बिलोंग करती है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को दीजिएगा प्लीज।
1: वैसे तो मैं ये कहूँ की मैं हूँ हर प्रोग्राम की होस्ट और आपकी अपनी प्यारी दोस्त गरिमा सिंह। ये मुरादाबाद मैंने कहा मेरी दूसरी गृहस्थी है, तो आप सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट की, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप प्लेस अलीगढ़ है एंड आई बिलोंग्स टू द राजपूत।

0: जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे बड़े बड़े स्टेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स पर गए। यहाँ से शुरुआत करते करते क्योंकि मेरे फादर दूरदर्शन में थे तो हम छोटे से थे तभी से हम ये स्टूडियोज में जाना, प्रोग्राम्स में बैठ जाना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने सारे दूरदर्शन के सीरियल्स और उनके अंदर बैठ चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। सो वो जो माहौल हमें बचपन से मिला उसने कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस इसको बिल्डअप किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और हर किसी का एक ऑलरेडी इंस्टिंक्ट इंटरेस्ट होता है जो आपके अंदर इनबिल्ड होता है।
1: एब्सोल्युटली।
0: वेदर मैंने अपनी एजुकेशन के बिहाफ पर कॉर्पोरेट सेक्टर को चुना, आई हैव वर्कड विद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड विद फाइनेंस इंडस्ट्री एंड नाउ आई एम वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड पीआरओ इन सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल। बट ये सब चीजों के बाद भी जो मेरा दिल है, मेरा पैशन है और मेरा इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एंकरिंग, इवेंट्स, इन चीजों में है। एक कीड़ा है मेरे अंदर जो कभी मरता ही नहीं है। और बस
1: शायद इसी वजह से आप रेडियो पे तो नहीं आ गए हो, आपके अंदर का जो पैशन है आपको यहाँ भी ले आया है, सोचिए ना।
0: बिल्कुल आप ये कह सकते हो आनंद। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर मैं अपना एकेडमिक्स देखूं तो मैंने अपनी एकेडमिक और अपनी जो पढ़ाई करी वो काफी हद तक इसी इंडस्ट्री में करी है, इवेंट में। मैंने एनआरएआई से कोर्स भी किया है आरजे का और न्यूज रीडिंग, एंकरिंग एंड इन सब का। बट वो मेरा फर्स्ट एंड प्राइम करियर कभी नहीं बन पाया, पर वो जो एक चाहत थी उसको हमेशा प्लेटफॉर्म भी मिलता रहा। तो चाहे मैं कंपनीज में रही तो मैंने कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट किए, मुरादाबाद में आई तो मुरादाबाद में मुझे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स के थ्रू अनोखी क्लब मिला, मुझे शिखा गुप्ता मैम का साथ मिला। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में जुड़ते गए जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। और इस शहर में मैंने बहुत काम किया है, अच्छा भी बुरा भी सब तरह का फीडबैक लिया है, लेकिन हर फीडबैक को मैंने दिल से एक्सेप्ट किया। जहां मुझे काम करने की जरूरत थी वहां खुद पर काम किया और उस निखार के बाद आज शायद मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं 89.6 एफएम में आपका हिस्सा बन रही हूँ।
1: वेरी नाइस मैम। और मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी अनाउंसर से या किसी प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई मेरा एंकर बैठा हुआ है, कोई आरजे बैठा है और जो आज हमारे साथ इस शो को और भी ब्यूटीफुल बना रहा है। नो डाउट,
0: आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेक यू टू दिस जर्नी।
1: एब्सोल्युटली। सो गाइस अभी तो शुरुआत है, आपकी हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई मत घुमाइए, आई विल बी राइट बैक। एक अमेजिंग गाना आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इसके सेशन भी बहुत स्पेशल है, बताऊंगा ये गाने के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आरजे आनंद को।

0: Once again, welcome back. You are listening to FM Moradabad. Show का नाम है टॉक शो. इसमें आज हमारे साथ गरिमा जी मौजूद हैं स्टूडियो में. हमारे शो की गरिमा बढ़ा दी है मैम आपने यहाँ पर आके. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत मजा आ रहा है आपसे बातचीत करके. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनको भी डेफिनेटली मजा आ रहा होगा. और आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. नो डाउट हमारे स्टूडियो में जो भी लोग आते हैं वो बड़े धुरंधर होते हैं और उनमें से एक आप भी है. नो डाउट बहुत ही धासु पर्सनालिटी है हमारे साथ. सो मैम प्लीज टेल अस कुछ बताएं. और आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं. आपको मजा आ रहा है यानी पहले ये बताइए स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
1: मैंने आपको बताया ना कि मेरे अंदर ऑलरेडी कीड़ा है इवेंट वाला.
0: Right.
1: और मैं उसी माहौल में बैठी हूँ जो मेरा पैशन है. तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है.
0: वेरी नाइस. और जब हम अपने फेवरेट जॉनर में होते हैं ना तो वहाँ पे वाइब ही अलग होती
1: Perfect.
0: है.
1: Yes,
0: है ना? Yes. और मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर और ज्यादा जो ना बातूनी सेशन बन जाता है. सो मैम मैं थोड़ा सा आपके करियर के बारे में पूछना चाहूंगा पहले तो कि आप ये एंकरिंग वाले फील्ड में कैसे आए. मतलब आपको कैसे लगा कि यार मुझे इस चीज में आना चाहिए. आई नो आपके अंदर वो कीड़ा है पैशनेट है आप उस चीज को लेकर. लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट दिमाग में ट्रिगर करता है ना कि हमें इसमें जाना ही जाना है या हमें ये करना ही करना है. बट करना क्यों है ये भी बहुत जरूरी है. जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा. राइट. तो थोड़ा सा इसके बारे में आप प्लीज आए.
1: ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कि बचपन से हमें एक ऐसा माहौल मिला. मैं टॉकेटिव हमेशा से रही हूं.
0: Right.
1: और दिल से बात करना ये मेरी एक खूबी रही है और ये मुझे बहुत पसंद है.
0: Okay.
1: मैं किसी से भी मिलती हूँ मेरी कभी भी बात करने में या कोई स्पीच देने में कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता. वो हमेशा दिल से होता है.
0: नेचुरल जेन्युइन.
1: यस नेचुरल एंड जेन्युइन. और ऐसा क्यों हो पाता है उसका रीजन है कि अगर आप कुछ भी अपने जीवन में करते हैं आपकी जो व्यक्तित्व है अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्लियर है आपकी नीयत बहुत साफ है तो आपके व्यक्तित्व की ये झलक आपकी आवाज में
0: Absolutely.
1: बिल्कुल आएगी.
0: Definitely.
1: म्यूजिक हो डांस हो एंकरिंग हो ये सब कहीं ना कहीं इंसान को खुशी देने वाले प्लेजर देने वाली चीजें हैं.
0: Correct.
1: और मैं इन सब चीजों को साधना मानती हूँ. तो जो अपनी साधना में प्योरिटी रखता है उसकी प्रेजेंटेशन उतनी ही प्योर पब्लिक के सामने जाती है. एंकरिंग करना मुझे हमेशा से पसंद था. लोगों से बात करना रादर मुझे बहुत पसंद था. और ये बात करने का सिलसिला कब मेरे प्रोफेशन में आ गया ये मुझे भी नहीं पता चला. मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरे लोग उन लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया मुझे चुना इस चीज के लिए. और जब मुझे चुन के भेजा गया किसी स्टेज पर तो वहां जो पब्लिक थी वहां जो जनता थी उसने मुझे एक्सेप्ट किया दिल से एक्सेप्ट किया. और उन्हीं की वो तारीफें वही मेरा मोटिवेशन बनी इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए.
0: क्या बात है बहुत ही बढ़िया. अच्छा मैम जैसे अभी आपने बताया कि एंकरिंग के बारे में आपने भी जिक्र किया और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जब आप करते हो ना कोई भी चीज जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है या आप अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो जो आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया ना वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है अगर आप कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो. है ना. सो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया. एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ हमें सुन रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जो आपकी तरह कुछ अच्छा करना चाहते हैं ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हैं मेरी तरह आपकी तरह बट वो कर नहीं पाते क्योंकि इसलिए उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है और उसी की वजह से वो पीछे हो जाते हैं अपने करियर में अपनी लाइफ में. आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ और आप हमारे लिसनर्स को क्या सजेशन दोगे आज.
1: कॉन्फिडेंस जो वर्ड है उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है. अगर आपको स्वयं अपनी चीजों पर या अपनी काबिलियत पर भरोसा है आप दूसरों के द्वारा जज नहीं किए जाते खुद को खुद जज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट होगा अलग से पता चलेगा. अगर हम एंकरिंग लाइन की बात करें हम जब कोई भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं किसी भी मंच पर चाहे वो बड़ा मंच हो छोटा मंच हो वहां पर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको 3 घंटे 4 घंटे तक अपनी ऑडियंस को बांधने के लिए तैयार करता है. आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी बात में वेटेज लाता है. और ये मुझे ऐसा लगता है मैंने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए कि आप लोगों के द्वारा सराहे जाएं. अगर आप सच बोलते हैं आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हैं तो ये सारी चीजें मिलकर के आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट करती हैं और ये कहीं ना कहीं इस लाइन में प्रोफेशनल करियर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है. तो जितना भी यूथ है केवल अच्छा बोलने से आप एंकर नहीं बनते. अच्छा एंकर बनने के लिए जो मुझे लगता है आपके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी पर आपको काम करना पड़ेगा. आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए आपका लोगों के प्रति नजरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. एक एंकर कभी भी किसी को ये जज नहीं करता कि ये अच्छा है या बुरा है.
0: True.
1: आपके सामने जितने लोग बैठे हैं वो आपसे कनेक्ट होने चाहिए और वो कनेक्शन तभी बनता है जब आप दिल से बात करते हो और बिल्कुल प्योरिटी के साथ में आप सामने वालों से आई कॉन्टेक्ट बनाते हो.
0: राइट. आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या है थोड़ा सा ये भी बता दीजिए.
1: मेरे कॉन्फिडेंस का राज ये है कि वसुधैव कुटुंबकम. मैं हर किसी से प्यार करती हूँ. इस पृथ्वी पे रहने वाला हर वो व्यक्ति जो मुझसे मिलता है वो कहीं ना कहीं अगर लोग इस बात को मानते हैं लेकिन मैं मानती हूँ उसका कहीं ना कहीं पिछले जन्म का मुझसे नाता है यानी वो मुझसे अलग नहीं है. वो मेरा ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं मेरा उसका कनेक्शन है, इसीलिए वो आज मेरी लाइफ में एंटर हुआ है। तो जब आप सबको अपना समझेंगे तो आपको किसी से कोई द्वेष नहीं होगा, तो आप दिल खोल के बात कर सकेंगे, बिना किसी स्क्रिप्ट के बात कर सकेंगे, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ बात कर सकेंगे, और यही आपको एक मंच पर कॉन्फिडेंट झलकाएगा।
0: वेरी नाइस। मुझे लगता है मैम आपने जितना ही बोला है बहुत ही अपने आप में अमेजिंग है और बिल्कुल जेन्युइन चीजें आपने बताई हैं, और अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए तो ऑफकोर्स हमारी पर्सनालिटी डेफिनेटली बदल जाएगी, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। और मुझे लग रहा है आप काफी स्पिरिचुअल टाइप भी है, नो डाउट। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप काफी कनेक्ट कर रही हैं चीजों को, बिकॉज अभी आपने एक चीज बोली कि मैं आपको प्यार करती हूँ, और जिनका नजरिया पॉजिटिव होता है ऑफकोर्स उनके लिए सारी चीजें बहुत प्यारी सी हो जाती है, जो जैसे होता है वैसे सोचता है ना मैम, ये भी तो है ना। तो ये कायनात तो सच में बहुत खूबसूरत है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं, राइट। सो गाइज ऐसी अमेजिंग बातें चलती रहेंगी गरिमा जी के साथ। फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, और मैं चाहूंगा ये ट्रैक आपकी पसंद का, जो आप चाहेंगी कि हमारे लिसनर्स को ये गाना जाना चाहिए आनंद, यू नो एक होता है कि यार हाँ ये गाना मेरा फेवरेट है, कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आनंद ये गाना बजना चाहिए हमारे श्रोताओं के लिए। आज आपके पास माइक है तो आप भी इसमें थोड़ा सा अपना सहभागिता निभाइए अपनी।
1: श्योर, मैं आनंद आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं लिसनर वाली सीट पर होती और मुझे अपना चॉइस सॉन्ग देना पड़ता, तो अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है उसके हिसाब से दिल है छोटा सा छोटी सी आशा,
0: ब्यूटीफुल ट्रैक है।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन. बहुत सारी बातें चल रही हैं गरिमा मैम के साथ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एशन, आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. और
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है.
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा.
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
3: कॉल 7500153841. DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.

0: मिल जाए तो और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है कॉन्वर्सेशन। आई डोंट नो ये कहां तक चलने वाला है सिलसिला, ये रफ्तार कहां रुकेगी मुझे नहीं पता। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरीबॉडी, मुझे ऐसा लगता है कि ना हर इंसान के अंदर एक यूएसपी होती है, हर इंसान की अपनी खुद की यूनिक पहचान होती है ना, और हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, जरूरत है उसे सही समय पे पकड़ के पहचानने की और उसे पॉलिश करने की, राइट मैम, है ना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है, कोई भी ऊपर से खाली नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ना खुद को पहचान नहीं पाते हैं, और जब वो पहचानते हैं
1: टैलेंट को सही समय पे पहचान लेना और फिर उसको अपना पॉजिटिव पार्ट, अपनी स्ट्रेंथ बनाना
0: उसको पॉलिश करके उसमें आगे बढ़ के काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, राइट। अच्छा मैम, एक स्पीकर के लिए या एक आरजे के लिए, जो आपके मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, उनके लिए सिर्फ अच्छा बोलना ही मैटर नहीं करता है, उनकी प्रोनंसिएशन, उनके शब्दों की क्वालिटी, ये भी बहुत मैटर करती है, राइट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ बोलना ही तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा आप अच्छा स्टेज संभालती है, नो डाउट, आप मेरे से बहुत बड़ी है, तो आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आई एम श्योर, हमारी तो अभी शुरुआत है। सो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या सच में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप बोलते हो तो सिर्फ बोलना मैटर नहीं करता है, आपके शब्द, आपकी क्लैरिटी बहुत मैटर करती है?
1: देखिए, अगर कोई दो बातें हैं, एक चीज तो ये है कि हम शौकिया तौर पे एंकरिंग कर रहे हैं,
0: राइट।
1: किसी स्कूल का फंक्शन है, स्कूल के टीचर को खड़ा कर दिया, भाई अच्छा बोलते हैं, चलो। लेकिन माइक पर जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इस तरीके के कहते हैं शौकिया तौर पे करने पर आप भी नॉर्मली कर रहे होते हैं, कई बार आप अनस्क्रिप्टेड होते हैं तो उसमें का ध्यान नहीं रहता, बहाव में बह जाते हैं, अपना ट्रैक कोई बात करते करते दूसरे ट्रैक पर आ जाते हैं, सब अपना जो आपका स्टेटमेंट है वो कंप्लीट भी नहीं होता, उससे पहले दूसरा स्टेटमेंट सामने आ जाता है। हमें ये लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपके सामने जो आपके लिसनर बैठे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, वो क्या पसंद करने वाले लोग हैं, वो छोटे शहर के लोग हैं, वो बड़े शहर के लोग हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं, उनका प्रोफाइल कैसा है। आपकी बात हमेशा उनके प्रोफाइल से मैच करती होनी चाहिए, तभी उनको इंटरेस्ट आएगा, तभी वो आपसे कनेक्ट होंगे। एंड एक एंकर को भी मजा तब आता है जब सामने वाला इंटरेक्टिव होता है, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, आपकी बात पे सर हिलाया, आपकी बात पे नजर चलाई, आपकी बात पे खुद बिना कहे ताली बजाई, तो ये आपकी गेन्स है, ये आपको तभी मिलती है जब आप उनको वो देते हैं जिसके लिए वो वहां बैठे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल की, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप अफोर्ड करते हैं तो ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में अच्छा बोलते हैं ये हमें पता है, लेकिन बहुत सारे अच्छा बोलने के बाद भी जब आप माइक पर जाते हैं तो आपकी जो पिच है, या तो रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, आपकी वॉइस में एक समान स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रिदम में आप चल रहे होते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाते हैं। तो वॉइस को एक मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, कहां किन शब्दों पे स्ट्रेस करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ही आप बहुत अच्छे एंकर माने जाएंगे,
0: करेक्ट,
1: या आप बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलेंगे तब आप अच्छे एंकर माने जाएंगे। आपको वो बात कहनी है, वो लैंग्वेज यूज करनी है, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज इंग्लिश और वेदर इट इज प्योर हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल है। Correct. आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जितना साफ निकलेगा उसी फ्रीक्वेंसी और उसी स्पष्टता के साथ में वो पब्लिक के माइंड में और दिल में जाएगा,
0: राइट।
1: और अगर कोई एंकर इंटायर द प्रोग्राम सामने वाले से आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाता, उसके दिल में नहीं उतर पाता, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है।
0: 100% सही बात है, और उस कमी को अगर आप सुधारोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। अच्छा मैम, जब हम बात यहाँ पर बोलने की कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, हम रेडियो में बैठे हैं तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमें लग रहा है कि मैं और आप ही हैं, लेकिन इसके बाहर कितने लोग सुन रहे हैं ये आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन जब हम किसी एक उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पे हमारे साथ 8-10,000-500 लोग होते हैं, लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, या कोई कॉन्सर्ट हो गया, कोई इवेंट्स हो गया, तो वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सबके साथ होता है आई एम श्योर, मेरे साथ नहीं, हम में से जो इस चीज को कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि जब हम लाइव चीजें करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जैसे आपने बताया ट्रैक से उतर जाते हैं, कई बार हम फंबल भी करते हैं, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम बात कुछ और कहना चाह रहे हैं बट कुछ और बोल जाते हैं क्योंकि हम स्क्रिप्टेड नहीं है, कई बार बहुत सारे लोग नहीं करके जाते स्क्रिप्ट, बट उन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने काम पे अपने आप पे, बट अगर अनफॉर्चुनेटली कभी आप ट्रैक से उतर गए या आपके साथ फंबल हुआ, आपके साथ वैसे कभी हुआ ये सिनेरियो?
1: देखो, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी, फंबल कब होता है, फंबल तब होता है क्योंकि जो हमारा माइंड है वही हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है,
0: Right.
1: वहीं से हमें शब्द मिल रहे होते हैं और वो आगे निकल रहे होते हैं। अगर हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, घर परिवार बॉसेस लड़ाई
0: खिचड़ी बन रही है घर,
1: बहुत कुछ चल रहा है, तो आपके बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रेलिवेंट है और कुछ इनरेलीवेंट,
0: राइट।
1: तो लेकिन वो जब एक ही स्टेट पर है तो वो कुछ भी आपके मुंह से निकल सकता है, समटाइम्स इट इज एक्सेप्टेड, समटाइम्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जो बात आपने कही फंबल की, एक तो सबसे पहली चीज, जो लोग भी प्रोफेशनली इस करियर में है या आप कभी भी माइक पर आते हैं, आप ये मान के चलिए कि जैसे एक पायलट की जिम्मेदारी होती है कि उसके प्लेन में अगर 200 सवारी हैं तो उन्हें उनको सेफली लैंड कराना है। इसी तरह एक एंकर की जिम्मेदारी होती है कि आपकी उस 1.5 घंटे की जर्नी में आपके संग 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी लोग हैं उन्हें आपको कम्प्लीटली बांध के रखना है और हैप्पी मोमेंट से उन्हें एंटर कराना है और हैप्पी मोमेंट से उन्हें लैंड कराना है।
0: करेक्ट।
1: वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप स्वयं खुश नहीं हो, तो आप हैप्पी वाइब्स दोगे ही कैसे?
0: सही बात।
1: आपके फेस में स्माइल नहीं है तो आप सामने वाले की स्माइल लाओगे कैसे?
0: 100%.
1: तो इसलिए आपकी व्हाटएवर द लाइफ यू आर स्पेंडिंग या व्हाटएवर द सिचुएशन यू आर इन, आपको उससे बाहर निकलना होगा। और वो कब होता है, मैं अपने केस का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हर किसी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, मेरा प्रोफेशनल, सोशल, बहुत सारा करियर ऑप्शन चीजें हैं जो छाता चलते, लेकिन जब मैं माइक पर जाती हूँ सो मैं सिर्फ 2 गहरी लंबी सांसें लेती हूँ, अपने प्रभु को थैंक्स करती हूँ उस पल के लिए, और उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं एक जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं मुझे उनके चेहरे खुशी लानी है।
0: वाओ।
1: और वो तभी पॉसिबल है जब मैं इधर से अपने प्रयासों से खुद भी खुश रहूंगी, स्माइलिंग फेस रखूंगी और पॉजिटिव वाइब सामने ट्रांसफर करूंगी।
0: करेक्ट।
1: तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ भूल करके बिल्कुल सिर्फ वन फोकस, और जो लोग बाकी इस प्रोफेशन के प्रति पैशनेट है वो अपने आप उस जगह पे जाके सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि दे आर एंजॉयिंग दैट
0: मोमेंट। एब्सोल्युटली।
1: बिकॉज़ आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप खुद के लिए भी कर रहे हैं, यू ऑल्सो एंजॉय।
0: करेक्ट। बहुत अच्छा मैम ने बोला और बहुत ही साफ शब्दों में जो है क्लियर कर दिया है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं करूंगा अभी, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा भी हो और आप में से कई लोगों का भी होगा, और ये डर भी कई बार ना हमें पीछे छोड़ देता है और हम इस डर की वजह से कई बार अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। वो कौन सा डर है, वो कौन सी बात है? एक गाने के बाद मैं डेफिनेटली आता हूँ। आई बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आनंद को। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। सोशली आपको मिलता हूँ रेडियो वाला आनंद के नाम से। डोंट फॉरगेट फॉलो कीजिए, हमारी ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें देख भी सकते हैं। एक गाने के बाद मिलते हैं।

0: सो गाइस वेलकम बैक। यू वंस अगेन, ये पॉजिटिविटी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ डोज आप ले रहे हैं, आई एम श्योर आपको सुन के मजा आ रहा होगा एंड मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग अलॉट बिकॉज मैम के साथ इतनी सारी बातें हो रही है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमें हर बार कुछ सीखने को मिले, कभी कभी कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स यार यहाँ तो आपको सीखने को ही मिलेगा। रेडियो पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना अच्छी बातें भी होती है, तभी तो हम इसको बोलते हैं इन्फोटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो वो एक इन्फोटेनमेंट सेशन बन जाता है। जैसे कि मैम गरिमा मैम हमारे साथ बैठ के ढेर सारी बातें कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैम आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? वैसे आनी तो नहीं चाहिए बिकॉज आपका तो खुद ये पार्ट है, आई नो, बट मेरा काम है बीच बीच में लोगों को जगाते रहना, बिकॉज यहाँ जितने भी लोग बैठते हैं मैं सबको पूछता हूँ बार बार कि भैया आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
1: आरजे आनंद के साथ में अगर दो पल तसल्ली वाले नहीं मिले तो फिर मुरादाबाद में एफएम का होना और एफएम में आनंद का होना बेकार है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। मैम इतना अच्छा आपने बोल दिया, मजा आ गया है। एंड अब एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लोगों को भी बताया था और आपके सामने ही मैंने एक क्वेश्चन मार्क दिया था कि मैम बहुत सारी चीजें ना हम करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें होती हैं इनकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में अभी भी बना हुआ है इंग्लिश, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी वो पार्ट है। यू नो आप सभी को पता है गाइस मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी खासी है नहीं, वैसे अगर अच्छी खासी होती तो शायद मैं कहीं अच्छी जगह बैठा होता हूं। इसका मतलब ये मतलब नहीं कि मैं रेडियो में अच्छा, भाई ये मेरे लिए बहुत, आई लव माई जॉब, आई लव माई प्रोफेशन, मैं इसके लिए ही बनाऊँ तभी शायद ये मुझे यूनिवर्स ने दी है। बट मैं बात करता हूँ बैक टू पॉइंट, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार इंग्लिश हमारी है नहीं, इवेंट्स में जाते हैं बड़े बड़े स्क्रिप्ट इंग्लिश में आते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे तो होस्ट कैसे करेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं और कई बार ये अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
1: मैंने अभी पहले भी कोट किया था कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप अपना बेस्ट उसी में दे पाएंगे,
0: ठीक है, राइट।
1: अगर इंग्लिश आपके लिए इतना मैटर करती है तो फिर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप प्लीज उन्हें ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जितनी भी अगर हम कॉन्फ्रेंसेज की बात करें, बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात करें, येस ऑफकोर्स वहां पर आपकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में होती है, बट आज के टाइम में गूगल बाबा का सपोर्ट लेके आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं
0: 100%।
1: अगर जिस स्टेट में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां कोई भी ऐसा मंच नहीं है जो आपको हिंदी बोलने से रोकेगा,
0: 100%
1: और
0: true।
1: ये तो हो सकता है कि उस ऑडियंस में 15 लोग इंग्लिश में बोली हुई बात ना समझे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी हिंदी में बोली हुई बात ना समझे।
0: Great
1: तो जब मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस हिंदी समझ सकती है तो मेजोरिटी ऑफ स्पीकर्स हिंदी में बात क्यों नहीं कर सकते,
0: राइट।
1: और हिंदी में अगर मैं आपको बात कहूँ तो इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, बहुत अच्छे वर्ड्स भी आप बोलना चाहते हैं तो आपको दिल से फीलिंग नहीं आएगी उन्हें बोलने में। इंग्लिश एक ड्रामेटिक लैंग्वेज है जो मैं समझती हूँ। जब हमें किसी पे इम्प्रेशन डालना होता है तब हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं।
0: Exactly,
1: अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी एक आत्मा से निकली हुई लैंग्वेज है, वो हमारी ओरिजिन है जिसके संग हम पैदा हुए हैं और बचपन से चलते आ रहे हैं, तो वी आर कम्फर्टेबल, कहीं गड़बड़ भी होगा तो संभाल लेंगे। और जब हम हिंदी से बात करते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं और जो हमारी बात करने का स्टाइल होता है, खासकर हिंदी में हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश एक प्रभाव डालने का तरीका है, हिंदी इंटरनली या इमोशनली कनेक्ट करने का तरीका है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हिंदी और इंग्लिश के समावेश से आप आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि इंग्लिश मेरा बैरियर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपका पर्पस लैंग्वेज प्रमोट करना नहीं है, आपका पर्पस खुशी हैप्पीनेस एक लाइव मोमेंट वहां पर बनाने का है,
0: राइट।
1: तो
0: राइट।
1: उसके लिए सिर्फ आपका अच्छा बोलना और कनेक्टेड होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: एग्जैक्टली exactly. बहुत ही अच्छा बोला मैम आपने, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ज्यादातर हिंदी में बहुत अच्छे से हमें कनेक्ट कर पाती है, नो डाउट। और हम भाई लंदन का इवेंट तो होस्ट कर नहीं रहे हैं, जो मुझे भी कई बार लगता है कि यार रेडियो पे था इंग्लिश बहुत अच्छी, फिर मुझे बहुत से लोग
1: बोलते हैं लंदन के प्रोग्राम में भी अगर कभी मुझे होस्ट करने का मौका मिलेगा ना, तो मैं हिंदी से स्टार्ट करूंगी। और मुझे इतना पता है कि उन्हें समझ में आए ना आए, बट हिंदी के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि सामने वाला इमोशनली ट्रैप हो जाता है।
0: क्या बात है, एग्जैक्ट। मैम आपने तो लंदन की बात को भी ऐसे घुमा दिया है ना कि वो सेट हो गया हमारी कॉन्वर्सेशन पे, अमेजिंग। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा मैम कई बार ना लोगों को यू नो ये लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हर एक इवेंट्स में आप जरूरी नहीं है कि आप स्क्रिप्ट लेके जाएं, जैसे आपका बहुत चैलेंजिंग रहता है शेड्यूल, बहुत ज्यादा आपके लिए यू नो ऐसा हिटिंग वाला हो जाता है, कई बार आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो, नहीं भी आप कर पाते होंगे, बट आप इतने क्रिएटिव हो कि आप उस इवेंट्स को कर लेते हो मैनेज। बट हर इंसान इतना क्रिएटिविटी में यू नो नहीं स्ट्रांग होता है, तो वो क्या उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन किसी भी इवेंट से पहले?
1: देखो शुरुआती दौर में जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं या हम इसे एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, है. सो ऑफकोर्स फंबल्स, क्योंकि जो आपकी शुरुआत होती है वो लोगों के माइंड में आपका परसेप्शन सेट है, अच्छा आरजे है या बुरा आरजे है या अच्छा एंकर है बुरा एंकर है. तो जब तक लोग आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे होते हैं या परसेप्शन बना रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड में आपका पॉजिटिव पार्ट ही उनको दिखाई दे, आपकी गलतियां कम से कम नजर आए, तो वो आपके प्रोफेशनल करियर में आगे आपको मदद करता है.
0: राइट.
1: अनस्क्रिप्टेड होना गलत बात नहीं है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं ध्यान कि मैंने कभी किसी की चोरी की हुई या कॉपी की हुई कोई भी कविता पढ़ी है या कभी किसी की शेर शायरी पढ़ी है. मैं सिर्फ वो दो पन्ने जरूर लेती हूँ जो उस प्रोग्राम से रेलेवेंट होते हैं, जैसे प्रोग्राम का.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद.
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा.
4: तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा. दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से लेकर 11 तारीख तक आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार जनहित सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में अनावश्यक नियमों को कम करने और कामकाज को आसान बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा की. बैठक के दौरान श्री संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रभावी ढंग से लागू करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हुई देरी के बावजूद वर्तमान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. एक रिपोर्ट.
5: बैठक में जानकारी दी गई कि सुधार अभियान के पहले चरण में चिन्हित 23 प्राथमिक क्षेत्रों में से 13 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है, जबकि 4 सुधार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अप्रासंगिक हो गए हैं. समीक्षा के दौरान ये भी बताया गया कि सुधार अभियान के दूसरे चरण में जून महीने के मध्य तक लागू 3 प्राथमिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है. इनमें दिल्ली नगर निगम की दोहरी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उदार बनाना और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं. बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के मसूदे पर हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई. प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा.
4: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है. ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस सर्टिफिकेट में दाहिने ट्रिगस के सामने एक कटा हुआ घाव दर्ज है जिसे हल्की चोट बताया गया है. डॉक्टर के अनुसार ये एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा निष्कर्षों में गोली लगने की आशंका नहीं है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं. वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है. परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है.
6: इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वाहन उद्योग के समन्वित प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों को कवर करता है। भागीदार राज्य पात्र लाभार्थियों को 10 वर्षों के लिए 100% तक मोटर वाहन कर में छूट और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: दिल्ली सरकार ने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता सुनीता कांगड़ा के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं मनोज कुमार और सुशांत सागर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पुनर्गठन आयोग की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की मंजूरी के फैसले के बाद आज बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
7: मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमन लेड डेवलपमेंट के मूल मंत्र को दिल्ली में पुनः चरितार्थ करने के लिए एक और योजना सुचारू रूप से शुरू करी है, जिसका नाम है लक्ष्मी योजना। लगभग 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। दिल्ली की मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत ही मजबूत पहल है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवकों, भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी। अगले 100 सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज होलंबी क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने बताया कि ये पहल नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने कहा कि ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और दिल्ली के निवासियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए निगम के संकल्प को और मजबूत करती है। दिल्ली सरकार ने आज डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर हंसराज बवेजा, डॉक्टर एस के टंडन और डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा को दिल्ली चिकित्सा परिषद का सदस्य नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये नियुक्तियां परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक राजधानी में सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। इस अवधि के दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।
8: यातायात पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। यातायात पुलिस ने बताया कि वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, GT रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है या दूसरे मार्ग पर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुष्ता रोड, आशाराम त्यागी मार्ग और लोनी रोड सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। यातायात पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सड़क के किनारे अपने वाहन खड़ा न करने की सलाह दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
9: जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा की, और गुरु के सानिध्य में ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है, दिल्ली को विकसित करने का रास्ता है और भारत को आगे ले जाने का है।
4: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्रॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में युवाओं के साथ पूजा अर्चना की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्मरण करने का भी दिवस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात कर असम में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। श्रीमती गुप्ता ने राहत और बचाव कार्यों में असम सरकार द्वारा किए जा रहे समर्पित और सतत प्रयासों की सराहना की। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: एजेंडा हो गया, वर्क इवेंट फ्लो हो गया, या लोगों के नाम की लिस्ट हो गई, लेकिन बाकी सब चीजें मैं वही के वही क्रिएट करती हूँ, स्पॉन्टेनियस होती हैं। और उसके लिए क्या है कि जो लोग आपने जब किसी का अनाउंस किया और फिर कोई पर्सन आया तो उसने क्या बोला, यू हैव टू बी नॉट ओनली अ गुड स्पीकर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज वेल। उसने जो बात कही उसी बात में से आपको एक लाइन उठानी है और उसी को आधार बना के अपनी अगली लाइन बोलनी है। तो जो लोग ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, ये चीजें आप कितना ज्यादा पेशेंस लिसनर है इस चीज से आती हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग में बिगनर हैं, उनको तो मैं यही कहूंगी कि वो स्क्रिप्टिंग करें, बट स्क्रिप्टिंग में आप सिर्फ रेफरल पॉइंट्स लिखें, पूरी कहानी अगर आप लिखेंगे और अगर आप उसको पढ़ के बोलेंगे तो एक तो वॉइस का मॉड्यूलेशन कभी भी स्क्रिप्टेड चीज में नहीं बन सकता, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेट करने के लिए अपर और हायर और लोअर और मीडियम जाने के लिए आपको आई कनेक्टिविटी और इमोशनल बैलेंस की जरूरत होती है, वो स्क्रिप्टिंग करते वक्त नहीं हो पाता। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका प्रोग्राम, आपकी सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप बार बार नजर चुराओगे और पेपर पे नजर लेकर के जाओगे। आप जिस भी लाइन में जिस भी व्यक्ति को उस समय देख रहे हो तो वो उससे आपका एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो रही होती है, वो रिदम टूट जाता है।
6: Exactly.
5: तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ रेफरल पॉइंट्स आप अपने हाथ पे लिख सकते हो या एक ऐसे पेपर पे सामने की तरफ लिख लो जिससे आपकी नजर ज्यादा ना भटके और आप अपनी ऑडियंस के संग की इस, अगर हम कोर वर्ड बात करें जो क्रक्स है वो यही है कि जितना बेटर आप अपनी ऑडियंस के संग कनेक्ट रहोगे उतना बेटर आपकी परफॉर्मेंस आएगी एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय योर एंकर।
6: वेरी नाइस। एक गाने के बाद मैम से लेंगे इजाजत, बहुत सारी बातें होगी मैम को, मैंने थका डाला यार, लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें ऑफकोर्स मैम से सुनेंगे, एक अच्छा सा मैसेज जो वो कन्वे करना चाहती है हमारे यूथ को, मुरादाबाद को। पर उससे पहले गाना, उसके बाद हम लौटते हैं।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है। कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग थी, मजा आ गया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करेंगे, ये जो घड़ी घड़ी है ना, मुझे लगातार इशारा कर रही है, टिक टिक करके बेटा निकलो, टाइम हो गया है। और कभी कभी ना हमें समय के साथ भी चलना पड़ता है, राइट मैम? और गरिमा मैम तो टाइम की बड़ी पंचुअल है, जो टाइम दिया था उससे पहले ही आके बैठ गई। मेरे को लगा यार कैसे,
1: ये भी मेरी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है।
0: रियली? तो मतलब कैसे मैनेज करते हो यार, एकदम टाइम से पहले पहुंचना ही अपने आप में मेरे लिए तो बड़ा चैलेंज है। मैं हर बार ही लेट हो जाता हूँ, पता नहीं कैसे, मैं कितनी भी जल्दी करूँ बट मेरा हो ही

0: देखो, ये तो पूरा मुरादाबाद मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है।
1: इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे
0: एक क्वेश्चन, मेरा जो प्रोफेशन है और जैसा मेरी अपीयरेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जब लोग बात करते हैं, एक पैपी सी फिगर माइंड में आती है, एंकर, पतली दुबली सी प्यारी सी मॉडल पर्सनैलिटी होगी, पब्लिक के बीच में जाएगी, चिट चैट करेगी। बट गरिमा अपने काम की वजह से जानी जाती है। सो मेनी टाइम्स मैं अपने ऑफिस में पूरा काम कर रही होती हूँ और ऑफिस के बाद मुझे कोई प्रोग्राम होस्ट करना होता है, मैं फटाफट भागी भागी जाती हूँ, शायद बाल भी सेट नहीं कर पाती हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती हूँ, जिस हिसाब से मेरी अपीयरेंस होनी चाहिए मैं वैसी अपीयरेंस भी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन जब मैं माइक पर जाती हूँ और जब मेरा प्रोग्राम ओवर होता है तो आई ऑलवेज कलेक्ट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ थैंक्स और बेस्ट विशेस कि मैंने बहुत अच्छा काम किया।
1: फर्स्ट टाइम मैंने किसी डांडिया नाइट में इवन में आपको सुना था, मुझे कौन बोल रही है लेडी, इतना अच्छा साउंड कर रही है। फिर बाद में मुझे मेरे साथ उस टाइम पे आरजे रास्ते उन्होंने बताया शी इज गरिमा जी और ये ऐसे ऐसे, मैं वाओ यार, मेरे को तो।
0: लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से ये नहीं कहूंगी कि आप मेरी तरह झल्ली बन के रहा करो, वो भी जरूरी है कि आपको मस्त बन के रहना चाहिए, ये इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। बट मैं फिर भी ये कहूंगी आपकी पर्सनैलिटी बैरियर नहीं हो सकता, आप छोटे हो मोटे हो कैसे भी हो, लेकिन अगर आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है और आप अपना पैशन से उस चीज को डिलीवर कर रहे हो तो लोग कायल हो जाएंगे आपके इस काम के। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, कोई बच्चा बहुत शैतान होता है, बहुत शरारते करता है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा होता है तो उसकी सारी शरारतें माफ हो जाती है। तो जब अपने काम में अच्छे होते हैं तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं आपकी वो पब्लिक माफ कर देती है और पब्लिक आपसे दिल से प्यार करती है।
1: वेरी नाइस, बहुत ही ट्रू बोला आपने मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। कुछ चीजें ना बात के लिए भी बचा के रखते हैं, सारी चीजें एक ही बार में नहीं निकाल ली, अभी फिर आपको बाद में परेशान करते रहेंगे बीच बीच में। सो जाते जाते आप कोई एक जो डिलीवर करना चाहती है हमारे रेडियो के माध्यम से तमाम मुरादाबादीज को, या फिर कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारी जेंजी को आप देना चाहें जाते जाते, और कोई एक प्यारा सा ट्रैक।
0: मेरी पंच लाइन है जीवन की और बहुत सालों से वो पंच लाइन, और ये पंच लाइन मुझे मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस और परिस्थितियों से ही मिली है। ए खुदा दूसरों के काबिल बना।
1: क्या बात है।
0: आपके अपने जीवन का हर मोमेंट हर पल हमेशा दूसरों के लिए डिवोटी होना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली जेंजीज, आपको मैं बता दूं क्योंकि आप आज में जीते हैं, इसलिए आप सिर्फ दूसरों की परवाह करनी शुरू कर दो, भगवान आपकी परवाह खुद करने लगेंगे
1: 100%।
0: तो जिस दिन आपने दूसरे की रोटी के बारे में सोचना शुरू किया, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी, जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत पैसा देके या पैसा खर्च करके चैरिटी कर सकता है, किसी की हेल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बट एवरी डे यू शुड हैव वन कमिटमेंट विद यू कि शाम को जब मैं जाऊं तो मुझे ये पता हो कि आज मैंने इसकी मदद की।
1: राइट, वो दिल से होना चाहिए बेसिकली।
0: तो ए खुदा दूसरों काबिल बना।
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल लाइन, छोटी है लेकिन बहुत ही अमेजिंग था मैम, सच्ची ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद यू, बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी मजा आया होगा। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। आपको लिखने का भी शौक है ना, आपने किताब भी लिख डाली है, वो तो अभी खैर पीछे छूट गया, लेकिन क्या करें टाइम इतना ज्यादा हो गया पता ही नहीं चल रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गरिमा मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप
0: बहुत मजा आया।
1: फर्स्ट टाइम आप आए, फर्स्ट टाइम ही कॉन्वर्सेशन थी, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा, आनंदित हो गया होगा आपका मन भी यहाँ आके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, एंड पूरे एफएम मुरादाबाद की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आने वाला टाइम फेस्टिविटी का है, ऑफ कोर्स हम आपको बहुत सारे इवेंट्स में फिर से सुनने वाले हैं, नो डाउट फिर से आपको देखेंगे। और गाइस, आप में से कई लोग तो मैम को जान चुके होंगे, ऑफ कोर्स नहीं जाना है तो अब मुझे पता नहीं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या नहीं, आई हैव नो आइडिया मैम, आप ही बताओ है या नहीं।
0: आई एम ऑन फेसबुक ओनली।
1: ओह माय गॉड, अच्छा तो किस नाम से आपका फेसबुक अकाउंट?
0: गरिमा आवी से।
1: ठीक है गाइस, फॉलो कर लीजिए, कोई बात नहीं, फेसबुक सबसे पुराना है और सबसे बढ़िया आज भी दमदार है। इंस्टाग्राम भले ही 1% बंदे ना चले, फेसबुक हर कोई चलाता है, राइट? सो बहुत अच्छा लगा मैम वंस अगेन आप आए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।
0: ऑफ कोर्स।
1: जाते जाते कोई गाना मैंने आपको कहा था,
0: जिंदगी की हर सिचुएशन पे जो गाना सेट बैठता है, और स्पेशली ये गाना मैं अपनी बेटी के लिए डेडिकेट करती हूँ, जब कोई बात बिगड़ जाए,
1: जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
0: तो ये आज मैं डेडिकेट कर रही हूँ मुरादाबाद वालों के लिए, क्योंकि मुरादाबाद मेरा अपना है, मेरा घर है। सो मैं मुरादाबाद वालों से भी यही कहती हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो प्लीज देना साथ मेरा।
1: वेरी नाइस, क्या बात है, ऑलवेज मुरादाबादी आपके साथ है, नो डाउट, एंड बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, आप कहीं मत जाइए ऐसे ही, प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए स्पेशल सेगमेंट में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है यार, लाइफ बहुत खूबसूरत है, जितनी पॉजिटिविटी लाइफ को दोगे ना उतना ही आपको वापस मिलेगा, तो इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा आएगा, क्रॉस योर फिंगर, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, फिर मिलूंगा कि और सफर पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, कहीं जाइए मत, रेडियो की सुई घुमाइए मत। इसी गाने के साथ लेता हूँ आपसे इजाजत, बाय बाय।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम में आप सभी का फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। किस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उन्हीं की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं पूरी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चंदा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
4: थैंक यू अनंत, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है
3: जी।
4: मैं सीएल गुप्ता आंखों के संस्थान में कॉर्निया डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूं
3: जी। सर,
4: मेरी ट्रेनिंग एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, जहां मैंने हाई वॉल्यूम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, रिट्रैक्टिव सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी में काफी दक्षता हासिल करिए।
3: अरे वाह, ब्यूटीफुल। सर ने बहुत ही मतलब प्यार के साथ जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है मुरादाबाद वालों को। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, मुरादाबाद के रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
4: जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ।
3: अरे वाह, वेरी नाइस,
4: हम आपसे जुड़ सके हैं और इसके जरिए हम बाकी लोगों से भी अपने प्रिय बाकी सबसे जुड़ेंगे। इस बात में बहुत सारी खुशी।
3: क्या बात है, थैंक यू सो मच संजय जी। सर, आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकल कर आए हैं डॉक्टर संजय जी। सर, मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने अपने लिसनर्स के साथ किया था, उनसे मैंने साझा करी कि हमारी शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी आंखें, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताइए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी कायनात, पूरी ये दुनिया देखते हैं खूबसूरत।
4: जी, आपने बखूब कहा कि आंखें हमारी एक महत्वपूर्ण इंद्रियों में से है।
3: बिल्कुल,
4: और सटीक जानकारी, समय पे चेकअप और अपनी सूझबूझ के जरिए हम अपनी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छी सेहत में रख सकते हैं। इन विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, हम साथ डॉक्टर संजय चंदा जी मौजूद हैं। आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की, तो डेफिनेटली आंखों की बातें होना तो बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपका हम वंस अगेन वेलकम करेंगे। और लिसनर्स, चलिए सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपने रूटीन में डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए।
4: देखिए आनंद, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें आंखों की सेहत को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं देखना चाहिए।
3: ट्रू,
4: 100%। डेली अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, समय पे आंखों की चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय पे स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अपनी आंखों को मसले नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे ब्रेक ले, रिलैक्स हो। जो कड़ी धूप में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी धूप में सन प्रोटेक्शन करें। बच्चे या युवा जो लंबे समय तक अपनी आंखों की चेकअप नहीं कराए, वो अपने रिफ्रेक्टिव करेक्शन की अच्छी जांच कराए। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आप पौष्टिक अच्छे खाना खाएं, जिसमें से विटामिन ए रिच जाए, जैसे दूध हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर वो सारे जो आंखों की सेहत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आती है कि जितने लाल पीले आपको फ्रूट्स या सब्जियां दिखे, जिनमें से पपाया, मैंगो, कद्दू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं।
3: अच्छा, कैरेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है?
4: जी जी, आपने सही कहा, कैरेट्स एक विटामिन ए रिच एक अच्छी सब्जी और अच्छी हमारी आंखों की हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम इसका भी आप सेवन करते हैं तो हमारी आंखों को विटामिन ए की पर्याप्त परिमाण मिलती है, जिससे आंखें बिल्कुल सेहतमंद रहती है।
3: डॉक्टर साहब, कहा जाता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो क्या सच में ये जेन्युइन है?
4: जी जी जी, गाजर में अच्छी परिमाण में विटामिन ए है और विटामिन ए हमारे विजुअल साइकिल को बनाए रखने में बेहद मदद करती है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है केवल गाजर ही नहीं, जो आपको गाजर ना मिले तो सारे लाल पीली सब्जियां जिसमें सारी भरपूर परिमाण में विटामिन ए होती है, उन सारी चीजों का, फ्रेश वेजिटेबल्स का, अच्छे से सेवन करिए, इससे आंखों की सेहत अच्छी बनी रहे।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, प्रोग्राम आपका फेवरेट है हेलो डॉक्टर। और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर संजय चंदा जी, जो कॉर्नियो स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में, हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं और सवालों की जो ढेर सारी, मैंने एक पूरी चिट्ठी रखी हुई है आपके लिए, एंड आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली देंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे नहीं, हमारे लिसनर्स के भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पता है डॉक्टर साहब आजकल ना कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें चश्मे लगने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है?
4: जी आनंद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमारा ये मानना है कि देखिए आज के बच्चे और युवा बहुत ज्यादा अपना टाइम लैपटॉप मोबाइल टीवी स्क्रीन पे बिताते हैं, तो इससे क्या होता है कि आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, बाहर खेलना कूदना और ये वक्त बिताना उनका बिल्कुल कम हो गया
3: है। राइट,
4: देखिए एक 2024 में जर्नल में आर्टिकल आई है जिसपे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2050 तक लगभग आधी मानव जाति 50% ह्यूमन पॉपुलेशन चश्मा लेकर पहन के बाहर घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप और हम जब सड़क चलेंगे हर दूसरे आदमी की आंखों में चश्मा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन अगर हम चाइना में देखें तो कक्षा 10 में पास होते हुए बच्चों में 100 बच्चों में से केवल 10 ही बच्चे ऐसे नॉर्मल होंगे जो बिना चश्मे से, 90% चश्मे पहन रहे। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जो आर्थिक तरीके से पूरे सशक्त है। जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे स्वीडन, आज से कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि वो पेपरलेस हो चुके और 100% डिजिटल रिवॉल्यूशन को अपनाया। सारी पढ़ाई लिखाई जॉब और सारी चीजों में उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के जमाने में जितने युवा निकले, न केवल उनकी मेमोरी रिटेंशन कम हो गई, उनकी अटेंशन स्पैन कम हो गई और सारे सबको चश्मा लगना चालू हो गया। ये एक सरप्राइजिंग घटना है कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली अब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से ये नया मुहिम चलाया कि अब उनको वापस पेन एंड पेपर पे वापस जाना है। और एट द सेम टाइम हमें भी ये सोचना होगा कि इन सारे चीजों के पीछे अल्टीमेटली गोल क्या है। आप अपने मानव जाति को क्या चश्मे के साथ देखना चाहते हैं या उतना स्वस्थ देखना चाहते हैं? देखिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर 2 साल से नीचे है तो उसकी स्क्रीन टाइम एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए, उसके हाथों में बिल्कुल कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के बीच में तो दिन में महज 30 मिनट या उससे ज्यादा नहीं। इसका रिलेवेंस ये कि देखिए एक्सेप्शंस भी है, आजकल वर्किंग वुमेन है, अपने बच्चों को घर रख के जाते हैं तो अपने मम्मी पापा नाना नानी से कुछ समय के लिए तो वीडियो कॉल में जरूर वो मिल सकते हैं।
3: एब्सोल्युटली।
4: और आगे की मुहिम ये कि हमारे सेल गुप्ता आंखों के अस्पताल में हमने मायोपिया क्लिनिक बनाई है। मायोपिया क्लिनिक में उन बच्चों को अब दिखा जाता है जिसमें उनके चश्मे चढ़ते हैं, उनके लिए हम ग्लासेस देते हैं ताकि वो 100% अच्छी रोशनी दिख पाए। न केवल वो रोशनी को अच्छा एंजॉय कर पाए, पर हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम उन बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिनमें मायोपिया प्रोग्रेस होने की चांसेस है, जिसमें चश्मे के नंबर बढ़ने की चांस। ऐसे हालात में हम उनको अगर चुनिंदा बच्चों को DIMS जो कि डिफोकस इंड्यूस मायोपिक सेगमेंट ग्लासेस देते हैं, लो डोज एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स देते हैं, इनसे दिखा गया कि आगे जाके उनके चश्मे के नंबर बढ़ने के तादाद कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये क्या तरीका रहेगा जिससे हम आंखों के नंबर कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा, बच्चों को धूल मिट्टी धूप में खेलने देना होगा, और जिनमें चश्मे चढ़ गए हैं उनको जरूर आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल तक आंखों की स्क्रीनिंग या चेकअप के लिए आना पड़ेगा,
3: लगातार उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही कमाल की जानकारी जो है आज आपको मिल रही है हमारे स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ संजय चंदा जी मौजूद हैं स्टूडियो में, जो ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी आई से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी आंखें, जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, तो आज बस उसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप बारी क्वेश्चंस भी हमें भेजते हैं, आज उन्हीं को हमने सोचा सर के साथ में जो है हम पूछेंगे और सर से उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी बीच एक और सवाल, लगातार आपको भी पता है मोबाइल लैपटॉप टीवी और तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल हमारा यूथ बहुत समय बिताता है, क्या लगातार हम जब स्क्रीन पे रहते हैं तो इससे हमारी आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? जो मोबाइल की लाइट है, जो लैपटॉप की लाइट है, जो हमारी स्क्रीन की लाइट है, वो कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
4: जी देखिए इसके दो पहलू है।
3: जी
4: आजकल ज्यादातर लोग, युवा या प्रोफेशनल लोग, सभी ज्यादातर वक्त अपना डिस्प्ले मॉनिटर्स पे काम करते हैं।
3: बिल्कुल,
4: बच्चे कहिए, वो स्कूल के होमवर्क, या फिर प्रोफेशनल लोग के लिए लंबे घंटों तक डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार है। डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें आप लंबे समय कंप्यूटर्स पे बिताने के कारण आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जैसे सूखापन, आंखों में जलन होना और धुंधलापन की शिकायत होती है। और यही जब लंबे समय तक चले तो आंखों में साथ साथ आपको सरदर्द होने लगती है, कंधे में दर्द, और इसके साथ अलग अलग तरह की शिकायतें आनी शुरू होती है आपको।
5: जी जी।
4: तो देखिए इसके दो पहलू है, पहली बात है एक तो मनोरंजन और दूसरी बात है जरूरत। आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों ये एक लत लगी हुई है कि वीडियो गेम, कार्टून और इन चीजों पे वो बहुत जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
5: एडिक्शन होने लग गई है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरत एक ऐसी चीज है जिसमें हम चीजों को चाहते हुए भी अवॉइड ना कर पाए।
5: बिल्कुल।
4: क्योंकि जमाने के साथ साथ एडवांस रहने के लिए आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते।
5: एब्सोल्युटली सर।
4: अब ऐसे हालात में हमारे पास एक ही तोड़ बचता है जो लंबे समय तक स्क्रीन पे बचे हैं, वो 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो कंस्टेंटली एक जगह स्क्रीन पे फोकस कर रही है वो साइकिल ब्रेक होगा। और देखिए आप और हम जैसे सहज भाषा में बात कर रहे तो हर मिनट में जाने अनजाने हमारी पलकें लगभग 17 या 18 बार ब्लिंक कर रही है।
5: ओके।
4: लेकिन जब हम ध्यान से एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं तो पूरे मिनट में केवल वो 2 या 3 बार ब्लिंक करती है।
5: करेक्ट।
4: इससे ये होता है कि आंखों के सामने आए हुए जो आंसू के परत है पूरी तरह से सूख जाते हैं और ये सारी समस्या उससे जुड़ी हुई है। आंखों का थक जाना, लाल हो जाना, बर्निंग सेंसेशन आना, ये सारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायतें हैं। देखिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डील करने के लिए या डिजिटलाइज स्ट्रेन को डील करने के लिए आपको नियमित आंखों की चेकअप की जरूरी होगी। अगर सूखेपन की शिकायत होगी तो आपको डॉक्टर के पास आके लुब्रिकेंट की दवाइयां इस्तेमाल करनी होगी, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्प्ले यूनिट पे लंबे समय पर आप है तो ब्लू कलर ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी डिजिटलाइज स्ट्रेन को कम कर सकती है। इसके साथ ही आपकी सिटिंग पोजिशन जिसे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, आपकी स्किन की ब्राइटनेस इतनी कम होनी चाहिए कि आंखों को तकलीफ ना दे। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो ताकि आपकी आंखों के लेवल से नीचे डिस्प्ले यूनिट हो। एक ही साथ अपनी बैठने की कला, कंप्यूटर स्क्रीन को एटलीस्ट एक हाथ दूरी पे रखें, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इन चीजों को बारीकी से हम ध्यान दें, आपके डिस्प्ले यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम के आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अगर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, और एक ही साथ हम ये भी ध्यान दें कि कोई तेज गति में चलता हुआ एसी या पंखा आपके चेहरे या आंखों पे डायरेक्टली हवा ना डाले, इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटल आई स्क्रीन या लैपटॉप या स्क्रीन से आते हुए दिक्कतों को हम ओवरकम कर सकते हैं।
5: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ साझा करी है। लिसनर्स, इस वक्त आप आनंद के साथ हैं और ऐसी तमाम सारी जानकारियां जो है आज लगातार आपको मिलती रहेंगी इस प्रोग्राम में। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल 9837968। मेरे स्टूडियो का नंबर है, इस स्टूडियो के नंबर पे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आज हम सर से ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम है और ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए हम है खतरनाक हैं, लेकिन हम अक्सर अवॉइड करते हैं। मानसून का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारी आंखें लाल होती है, हम अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली पानी आंख में चला गया। इसलिए सच में मानसून में भी हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने जो पॉइंट उठाया, मानसून और ये बारिश हमारे लिए सजा भी है और मजा भी।
5: ये तो टैगलाइन बनी, सजा और मजा।
4: जैसे मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी होती है और तुरंत बारिश,
5: राइट,
4: बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर कम हो जाना, ऐसे ही माहौल में प्रचंड परिमाण में चारों और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये वायरसेस का फैलना चालू होता है।
5: जी जी।
4: इसमें सबसे कॉमन है वो एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे भाषा में हम कहते हैं कि आई फ्लू। ऐसे जब लोगों को आई फ्लू हो जाए, आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, सूजन आना और एक ही साथ में धुंधलापन होने की शिकायत होती है।
5: जी जी।
4: आई फ्लू एक ऐसी स्थिति है जिसमें छुआछूत की परिस्थिति रहती है।
5: ओके।
4: आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कोई भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनमें एक दो लोगों को अगर आई फ्लू हो जाए, साथ में सबको एक ही साथ वो देती हुई जाती है, एक के बाद एक सबको होता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, बार बार आंखों को छूना नहीं है, हैंड वॉश करते रहना है, जिनकी आंखें लाल हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, उनके इस्तेमाल किए हुए तौलिए, गमछे या प्लेट, इन सारी चीजों को दूरी बनानी है। और अगर आंखें लाल के साथ होने साथ साथ आपको दर्द भी होता है तो डॉक्टर की चेकअप जरूर करानी है। कॉमन आई फ्लू के सिवा कुछ चीजें और है, जैसे लोग मैदानों में कीचड़ में अगर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ऐसे में कोई कीचड़ आंखों में आ जाए तो माइक्रोस्पोरिडियल कंजंक्टिवाइटिस, ये भी एक स्थिति है जो आंखों में रोशनी धुंधलापन और यही फ्लू जैसे लक्षण लाते हैं। अक्सर इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो 2 दिन से ज्यादा आंखों में दर्द, दुखन, लाली लाए, तो आप बेझिझक आपकी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही मानसून का सीजन है जो हमें इस सारी चीजों में दिखते को मिलता है कि सबसे ज्यादा आंखें इन्हीं चीजों से परेशान रहती है।
5: देखिए मॉनसून में आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, बारिश में भीगना सभी को पसंद है, आप जरूर भीगिए, आप चाय पकौड़ों का भी आनंद लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों की हेल्थ का भी विशेष कर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है और इसको रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करी, तो उन बातों को अवॉइड नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बट वही चीजें होती हैं जो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरा सवाल रहेगा, मोतियाबिंद और काला मोतिया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या काला मोतिया बिना लक्षण के भी हो सकता है? कई लोगों में ये मिथ होता है कि नहीं बिना सिम्टम्स के तो होगा ही नहीं।
4: जी जी जी आनंद, जब हम जन्म के साथ आते हैं कुदरती तौर पर हमारी आंखों की जो लेंस होती है वो बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ या पारदर्शी होती है, कांच की तरह, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है और हमें साफ दिखता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लगभग 50 के दशक में वही जो पारदर्शी ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस है वो धीरे धीरे सफेद बनने चालू होती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मोमबत्ती जैसी सफेद बनने लगती है। अब क्या होता है, जो पहले 100% रोशनी आंखों के अंदर जा रही थी केवल 10% या 20% रोशनी पहुंच पाती है और इससे आंखों में धुंधलापन चाहता है। यही है सफेद मोतिया या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट एक बार उम्र के साथ बन जाए तो उसकी आई ड्रॉप, चश्मे, गोलियां और एक्सरसाइज से कोई इलाज नहीं हो पाता। इसका एक ही तरीका है कि आपको ऑपरेशन करा के सही चश्मों का इस्तेमाल करना। जबकि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अक्सर ये प्रेशर से जुड़ी हुई हालात होती है जिसमें आंखों में हुए आंखों की प्रेशर जो बढ़ी हुई रहती है नसों को इतनी डैमेज कर देती है कि उसके रोशनियां कम हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसी हालात में इसके कोई लक्षण नहीं होते
5: जी।
4: जब तक आपकी आंख की रोशनी उतनी ना कम हो जाए कि आपको महसूस हो कुछ गड़बड़ हो, तब तक अपनी ये ग्लॉकोमा काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए इसे थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है या रोशनी की चोर भी कही जाती है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके परिवार में कोई ग्लॉकोमा के पीड़ित है, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आंखों की चेकअप करके ग्लॉकोमा को ढूंढ निकालना। और कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र से ऊपर है उनकी नियमित साल में एक बार चेकअप

0: जरूर हो, ताकि अगर ग्लोकोमा उनमें छुपी हुई हो तो वक्त से पहले न केवल हम जात से ढूंढ निकाले बल्कि सही इलाज करके उनको घटती हुई रोशनी से रोक सके।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा करी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहूंगा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ बिना इधर उधर बातें घुमाए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब आंखों की रोशनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी आंखों पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सर? और कितने समय में उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए अगर वो मरीज इससे ग्रस्त है तो?
0: जी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ लगभग सबको आती रहती है।
1: ठीक है,
0: अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आंखों की रक्त नलिका या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से लीक होने लगते हैं जिसके कारण पर्दों में या फिर रेटिना में खून के धब्बे आ जाते हैं। आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैकुला, पर्दे का एक अंग, उसमें सूजन आ जाती है जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। अक्सर प्रेशर बढ़ने के कारण खून की नसें जो अंदर में फट जाती है जिससे खून और रक्त प्रवाह रुक जाती है, इसे वास्कुलर ऑक्लूशन कहते हैं, जो कि ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको बीपी और शुगर की डायग्नोसिस बनी है, अगर आपकी नियमित चेकअप नहीं हुई, तो साल में एक दफा जरूर आंखों की पर्दे की चेकअप करें क्योंकि ये पर्दे को नुकसान देती है। और अगर पहले से ऑलरेडी आप डायग्नोस हो चुके हैं कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी या बीपी के कारण कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको साल में हर 6 महीने में या उनके कहे मुताबिक और ज्यादा चेकअप की भी जरूरत है।
1: ओके, बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर साहब, अगर आंखों में चोट लग जाए या आंखों में धूल, केमिकल या कोई बाहरी चीज चली जाए तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और इसका असर क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इस पे भी आप बताइए। जैसे कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।
0: जी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है क्योंकि बच्चे और बड़े युवा सब में हमने कभी ना कभी आंखों में चोट को महसूस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में सभी हम ये थोड़े हक्के बक्के रह जाते कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, छोटे धूल कण और धूल मिट्टी आंखों में आ जाए तो उसे साफ पेयजल से आप इसे आंखों को साफ करिए। अगर इससे ज्यादा कुछ है, मान लीजिए आंखों में नुकीले कुछ चीजें चुभ गई है और उससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसी में इसमें आपको आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना ही जब पड़ेगा ताकि आप इसे कोई जाने अनजाने में आंखों को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना दे दे। देखिए, केमिकल पड़ जाना भी बहुत एक स्वाभाविक तरीका है। जैसे बच्चे खेलते खेलते हुए फेविकॉल गिरा देते हैं, वॉल की पेंटिंग चल रही है वो टर्पेंटाइन ऑयल गिरा देते हैं, चूने आंखों में लगा देते हैं। दिवाली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा उन्होंने कार्बाइड गन से अपनी आंखों को इंजरी किया। अक्सर बड़े अपनी वॉशरूम या टॉयलेट क्लीन करते हुए तेजाब आंखों में गिरा देते हैं। ये हर्पिक जैसी चीजें जिससे टॉयलेट क्लीन कर जाते हैं वो भी आंखों में गिर जाए तो बहुत खतरनाक नुकसान आंखों को दे सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बेझिझक आप अपने सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आंखों को ज्यादा समय तक एटलीस्ट 15-20 मिनट अच्छे से धोइए और बिना कोई वक्त गवाए आप एटलीस्ट डॉक्टर के चेकअप में आइए ताकि इसके जुड़े हुए आगे जो नुकसान है उसको हम तुरंत झेलने से बच सके।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू, और सच में आप बहुत ही तमाम ऐसी खास जानकारियां और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप हमारे रेडियो के जरिए तमाम शहरवासियों को आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट टाइम और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब, ये लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है? लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के उम्मीदवार कौन होते हैं और इसमें उन्हें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बताइए।
0: जी आनंद, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के सामने कॉर्निया की शेप बदल देते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि जो लोग लंबे अरसे से चश्मा पहन रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: और वो चाहते हैं कि वो अपने चश्मे हटाकर बिना चश्मे से अपनी पूरी रोशनी देख पाए।
1: जी,
0: देखिए, लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जैसे कुछ लोगों का शौक है कि मुझे स्विमिंग, हैवी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना है। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरी शादी है, मेरी शूटिंग है जिसमें मेरा चेहरा सुंदर दिखना है। कुछ लोगों की ये जरूरत है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है आर्मी, डिफेंस, पुलिस, नेवी, और मेरा एग्जाम फिट आया, लेकिन अब मुझे मेडिकल फिटनेस में इतना दिखाना है कि मेरी रोशनी बिना चश्मे से फुल 6x6 या 100% है। ऐसे हालात में उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल एक नायाब तरीका है जिसमें हम लेजर की प्रक्रिया से आंखों की पुतली में ऐसी परिवर्तन लाते हैं जिससे आप जो भी माइनस नंबर हो, प्लस नंबर हो, उसे लेसिक पीआरके जैसी पद्धति से आपकी रोशनी को फुल बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से पूरी रोशनी दिलाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ये ऑपरेशन कराना चाहे वो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करे। इसमें हम मेनली ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पुतली में उतनी ताकत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन को झेल जाए। अक्सर पुतली के मोटापे पे ये निर्भर करता है। अगर वो लेसिक या पीआरके के लिए सुटेबल ना निकले तो उनमें दूसरी पद्धति जैसे आईसीएल जैसी पद्धति से हम पूरी रोशनी दिला सकते हैं। अक्सर इसके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी उम्र 20-21 साल से ऊपर हो और पुतली में अच्छे मोटापे हो। सो लेजर डिफेक्टिव सर्जरी की पद्धति से हम उन सारे तमाम लोगों को वो नई उम्मीदें देते हैं जो लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस और मोटे चश्मे पहनकर थक चुके हैं और अपनी कॉन्फिडेंस और जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं।
1: बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इसी बीच, नेत्रदान बेसिकली क्या है और कौन है जो अपनी आंखों को दान कर सकते हैं और नेत्रदान से किस प्रकार के मरीजों को जो है मतलब लाभ होता है?
0: जी, आपने ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मृत्यु के पश्चात वो अपनी आंखें किसी और को दान दे जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में दोबारा रोशनी बन सके।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, भारत में आज के दिन लगभग 13-14 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी अंधता है जिसमें आंखों की काली पुतली जो पारदर्शी होती है उसमें किसी प्रकार की सफेदी आ जाती है। वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, कभी घाव लग जाना, चोट लग जाना या जन्मगत आए हुए कुछ कृत्रिम या विकृतियों के कारण उनकी आंखों की पुतली स्वच्छ नहीं रह पाती। देखिए, नेत्रदान कोई भी कर सकता है मृत्यु के पश्चात। इसके लिए कोई भी उम्र का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी लिंक हो, इसमें किसी तरह की परहेज नहीं होती। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे आपको फोन करना है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके सबसे नजदीकी आई बैंक को सूचित करते हैं। जब भी आपके प्रियजनों की किसी मृत्यु होती है तो आप उनसे संपर्क करें। जो नजदीकी आई बैंक के टेक्नीशियन है वो बेझिझक आपके घर पहुंच जाएंगे और हम आपकी आंखों में से कॉर्निया, केवल नेत्रदान में हम आंखों की कॉर्निया को ही लेते हैं जिसमें चेहरे में किसी किस्म की विकृति नहीं होती, ना ही कोई खून बहता है और ना ही चेहरा खराब लगता है। ऐसे हालात में आए हुए उन दो पुतलियों से हम एटलीस्ट दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। अब ये नेत्रदान के फायदे उन लोगों को होता है जो कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। तो नेत्रदान एक महादान है बाकी सब दानों में, जिसमें हमारी आज के दिन में जो इंडिया की मौजूदा स्टेटिस्टिक्स है इसमें साल में 30,000 से ज्यादा नए पुतली की जरूरत वाले मरीज जुड़ते चले जा रहे हैं जबकि ट्रांसप्लांट केवल 20-25 लोगों को हो पा रहा है। तो नेत्रदान की आज के दिन में हमें बहुत आवश्यकता है जिसमें लोगों की जागरूकता कम होने के कारण हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करूंगा कि वो नेत्रदान के विषय में अपनी जागरूकता बढ़ाए और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे जरूर कॉल करें ताकि एक अंध व्यक्ति की जिंदगी में हम दोबारा कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई तक उन कमियों को कमियों को निकाल के हम उनकी अच्छी रोशनी दिला सके।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जो है एक संदेश भी था सोशली लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा आपने जो है कहीं ना कहीं इसको ये भी आपने एक संदेश दे दिया कि सिर्फ आंखें हमारे लिए नहीं होती, हमारे जाने के बाद किसी और की जिंदगी को भी वो रोशन कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे की, है ना। और डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कॉर्निया प्रत्यारोपण या कॉर्निया ट्रांसप्लांट की विभिन्न तकनीकों में कौन सी एक ऐसी नेत्रदान और कितने मरीजों को इसका लाभ हो सकता है?
0: देखिए, आधुनिक उपकरणों से आज के दिन नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के दिन हम केवल ये चुनना चाहते हैं कि जिनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है पुतली की कौन सी लेयर उसमें प्रभावित है। जो परत प्रभावित है हम सिलेक्टिवली केवल उसी परत को बदलने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है बचपन में लगे हुए चोट के कारण उनकी जो सफेदी है केवल आगे की लेयर पे है, ऐसे परिस्थिति में हम एंटीरियर लेमेला केराटोप्लास्टी करते हैं जिनमें पहले हो चुके मोतियाबिंद ऑपरेशन या पुतली की अंदरूनी लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसकी कमजोरी के कारण अंदरूनी लेयर में कुछ कमजोरी आ गए तो सिलेक्टिवली केवल 10-15 माइक्रोन की अंदरूनी लेयर बदलते हैं जिसे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसके तरीके डिसेक डिमेक हो सकते हैं। और जिनको पूरी कॉर्निया टोटली आपकी सफेद हो चुकी है या पूरी के सारे लेयर पड़ चुके हैं उनके हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। तो एक दान में मिली कॉर्निया से आगे की लेयर से हम एक आदमी की आगे की परत को बदल सकते हैं, उसी दान में मिली पुतली की पीछे के लेयर से एक दूसरे बंदे की पीछे खराब हुई लेयर को बदल सकते हैं। अब उनके दान में मिली पुतली में जो स्टेम सेल होते हैं उससे किसी ऑकुलर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें मदद मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझे कि एक पुतली एक कॉर्निया से शायद हम 2 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाले की उम्मीद रख सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर संजय चंद।
2: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक आपका अपना बैंक, सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की फैसला हो भरोसे का,
3: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
2: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
3: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
2: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
3: बस एक कदम
2: और सपनों को नई रफ्तार।
3: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में आइए
2: या विजिट करें बैंक वेबसाइट।
3: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक,
2: सचमुच आपका।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
6: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
6: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है, टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
5: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
7: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
5: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
8: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
9: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
5: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
10: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
11: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
5: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
12: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे, कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने

0: प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां हो रही हैं दिल से दिल की बातें। बिल्कुल सही पकड़े हैं, दिल से दिल तक अखिल संग। पूरी उम्मीद है आज थोड़ा सा मौसम जो था ना, हल्का सा बादलों वाला था और बाकी सूरज देवता जी बिल्कुल सही समय पे दिख गए थे, तो मौसम जो है आनंद तो ले लिया दिन में। थोड़ा बहुत इस समय ट्रैफिक का आनंद ले रहे होंगे, अगर ट्रैफिक का आनंद ले रहे हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें और बताएं कॉल करके कहाँ आप फंसे हुए हैं, कहाँ आपकी गाड़ी फंसी हुई है और कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं, क्योंकि इस समय जाम जो है ना वो बिना बताए लग जाता है। हम हॉर्न बजाते रहते हैं मगर फ़ायदा कुछ होता नहीं है भाई साहब, सामने वाला अपनी ही चाल चल रहा होता है।

0: मगर करना तो है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो करना ही है उठ के। तो अपने लिसनर से बात करते हैं और पता करते हैं कि उनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है और उनका रूटीन कैसे रहता है। और हाँ, आप भी बताइए हमें 9837896896 पे। नरेंद्र जी से बात हुई थी, हेलो हुई थी, और नरेंद्र जी बिल्कुल ही कहीं बिजी हो गए, नेटवर्क में दिक्कत हो गई, मगर कोई नहीं, हमारे पास एक लिसनर है, अभी करते हैं उनसे बात, देखते हैं क्या करते हैं आज। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या कर रहे हैं इस समय? अपना नाम बताइए सभी श्रोताओं को, और बताइए आप इस समय हैं किधर?
1: सर, जिला रामपुर, ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इसरत आपसे बात कर रहा हूँ। सर आपकी याद आ रही थी, सोचा कॉल लगा लिया। सर कॉल लग गई, सर आपसे बात कर लेते हैं, तो मतलब रात की शुरुआत बहुत अच्छी होती है।
0: रात की शुरुआत होती है, रात का तो इसमें अंत होता है, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रात की शुरुआत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या कर रहे थे इशरत जी इस समय आप?
1: सर मैं बैठा था और आपका इंतजार कर रहा था।
0: अच्छा, मेरा किस पे? FM पे?
1: जी जी सर।
0: तो इशरत जी, आज कैसा रहता है आपका डेली रूटीन, और क्या क्या आप कहते हैं कि आपकी कोई एक ऐसी हैबिट जो आपको बहुत पसंद है कि हाँ, मैं कम से कम एक आदत तो है जो मुझे अपनी अच्छी लगती है?
1: सर मैं जैसे सुबह उठता हूँ।
0: सुबह तो सर हम भी सुबह ही उठते हैं सब,
1: थोड़ी आदत के बाद बता रहे हो ना बाद में।
0: अच्छा, बिल्कुल एकदम सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं ये बताइए ना
1: सर। उससे पहले तो जो हमारी मम्मी है,
0: हाँ जी,
1: वो शुरुआत कर देती है 6 बजे से। सर वो पंखा चलता कमरे के अंदर, सर यही काम रहता रोजाना, बंद करेंगी मैं खोल देता हूँ, बंद करती मैं खोल देता हूँ। तो सर के मैं उठ जा, टाइम बहुत हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए। सर मैं ऐसा ना रात को लेट सोता हूँ 12 बजे तक।
0: तो सुबह
1: जो हमारी अम्मी की ड्यूटी है वो ये है, सुबह में उठेंगी और पंखा बंद कर देती है।
0: तो आपकी अम्मी की आदत नहीं, वो बहुत मोस्टली अम्मियों की आदत है, सबकी मम्मियों की आदत है कि सुबह सुबह भैया थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो गया, पंखा बंद करो, एसी बंद करो।
1: तो मैं कहता हूँ मम्मी से, तुम्हारी ये ड्यूटी अच्छी है रोज की, तुम्हें क्या दिया जाए, महीने का बता दो।
0: और क्या, ये तो आपकी सुबह उठने वाली बात हो गई, उसके अलावा?
1: उसके अलावा सर मेरा एक पशु है बहुत प्यारा सा, सर मेरी आदत रोज की है, मैं उसे मतलब सुबह उठता हूँ, पूछ काटता हूँ।
0: अच्छा।
1: काफी प्यार करता हूँ उससे मैं। तो उसके बाद में सर मैं पशु के लिए दो एक पेरा चारा ले आता हूँ, काट के उन्हें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं नहा के खाना खा के सो जाता हूँ, फिर 3 बजे उठता हूँ, FM मुरादाबाद लगा देता हूँ 5 बजे तक। तो सर 5 बजे से बाद में फिर अपना वही काम, चारे वाला, बस सर यही अपना काम जो भी है।
0: सही है, बहुत बढ़िया, मतलब आपके दिनचर्या में FM भी शामिल है, हमें बहुत अच्छा लगा ईश्वर जी।
1: हाँ सर, ये केंद्र सुनता हूँ मैं मुरादाबाद, बहुत काफी अच्छा लगता है ये केंद्र।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ, ये रीना जी आती है शो में,
0: हाँ जी,
1: कॉल नहीं उठाती है बिल्कुल, बेरात मेरी 15 कॉल आती है शो में।
0: सर हम पे बहुत कॉल्स आती हैं, और उस समय हम जिसकी हम कॉल पहले मतलब उठा लें या उस समय मौका लग जाए उसी हिसाब से कॉल उठाते हैं, मगर आपकी अब कॉल अब उठ गई है, तो इशरत जी अब आपकी बात होनी चाहिए पूरी, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है।
1: पहले कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने भी बचपन से रेडियो सुना सर, मुझे सब मालूम है आपने क्या नहीं होता, मतलब जानबूझ के कॉल नहीं उठाती है। मैं गौरव सर हैं, मैं उनसे शिकायत करने के लिए बोल रहा था, चलो देखता हूँ फिर अगली बार में क्या रहता है। सर वो मेरी कॉल नहीं उठाती है अक्सर, मैं ही देखता।
0: चलिए अभी मैंने आपकी कॉल उठाई है, आप गाना बताइए, वरना पता चला गाना भी कहीं स्टेशन से छूट ना जाए।
1: सर आज मूवी का नाम है अफलातून, गाने के बोले चोरी चोरी जब नजर मिली, सर इस टाइप के बोले, आज के सॉन्ग में ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर, और अच्छे से सोइएगा, और अब रात की शुरुआत अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है इशरत साहब?
1: सर शुरुआत तो हुई, अच्छी हुई है सर आपसे बात।
0: बस बस बस, धन्यवाद इशरत जी, धन्यवाद,
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ इशरत जी, कह रहे हैं अब हमारी रात की तो शुरुआत हो ही गई है, और इनको ना सुबह सुबह जब मम्मी इनकी उठा देती है ना, तो वो इनकी गुड हैबिट बन गई है, कह रहे हैं ये मेरी बहुत अच्छी आदतों में से है, और सुबह सुबह पंखा बंद हो जाता है, और कहते हैं ना डांट भी पड़ती है, चलो भाई अब उठ जाओ बिस्तर पर से, चलना है, काम करना है। तो कोई बात नहीं ईश्वर साहब, बहुत ही बढ़िया आदत है आपकी, और बना के और संभाल के रखिएगा। तब तक हम सुनते हैं ईश्वर जी का पसंदीदा गाना, आप सब लोग कहीं ना जाएं, चुपचाप से अपनी गद्दी पे बैठे रहें, स्टेयरिंग बिल्कुल सीधा होना चाहिए साहब, मतलब मौके के हिसाब से सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साहब मोड़ते हुए भी स्टेयरिंग सीधा ही कर रखा है। तो 9837896896 पे कॉल करें और बात करें।

एक फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना रेडियो स्टेशन। कहते हैं ना साहब, सुबह सुबह उठना जो है ना, फिर उसके बाद योगा करना, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग करते ही करते होंगे। क्या आप वॉक पे चले जाते हैं या फिर एक गर्म चाय के साथ हल्की सी शुरुआत हो जाती है चुस्की लेके, सारी दिन की बात, हाथ में होते हैं अखबार और भाई साहब, चलो भाई साहब आज अपने पसंद की खबर सुन लेते हैं, या अपने पसंद की जो है, हमें खबर भी वही पढ़नी होती है जो हमें पसंद आती है। ये भी है, हमारे पास मैसेज आया है रितिका जी का। रितिका जी लिखती हैं, मैं रोज़ सुबह अपनी मम्मी के साथ 20 मिनट वॉक करती हूँ और इसने देर में फ्रेश, मतलब इससे मेरे को फ्रेश महसूस होता है। क्या बात है रितिका जी, बहुत ही बढ़िया। फैमिली के साथ टाइम बिताने का ना ये एक और कहते हैं तरीका है, और थोड़ा सा हेल्दी भी है। सुबह सुबह वॉक पे निकल जाओ और 10-15 मिनट आसपास का वातावरण से पता चल जाता है कि हाँ भाई साहब अपने यहाँ काम भी क्या क्या हुआ है, या रात में कुछ और था, सुबह नज़ारे कभी बदल जाते हैं। होता है ऐसे कि एक दिन वॉक पे करने आए और सामने का डिवाइडर जो था बिल्कुल सही चल रहा था, अगले दिन देखा वॉक करते हुए देखा तो उसी डिवाइडर पे 3-4 पेड़ और चल रहे थे। तो पता चल जाता है, कभी कभी बदलाव ऐसे भी पता चल जाता है। एक पहेली आप लोगों के लिए, हमें बताइएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज़ बढ़ती भी है और रोज़ कम भी होती है। हाँ हाँ साहब, जो कहते हैं अगल बगल वाली चीज़ें कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गायब हो रहा है, कुछ कुछ अगल बगल में आपकी चीज़ें होती हैं जो रोज़ बढ़ रही हैं और रोज़ कम भी हो रही हैं। पैसा भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है, इसका आंसर पैसा नहीं है। तो बताइएगा 9837896896 पर कॉल करें और हमें मैसेज भी करें। तब तक हम लेते हैं अपने कॉलर को लाइन पे, करते हैं बात, क्या कह रहे हैं वो आज। हमारे कॉलर साहब चले गए हैं जरा वॉक पे, जैसी वॉक की बात हुई साहब वॉक पे चले गए, कोई बात नहीं, उनकी पसंद का गाना प्ले कर देते हैं और कहते हैं साहब थोड़ा सा कीजिए आराम, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। आपकी कॉल का इंतजार है 9837896896 पे।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आदत अगर अच्छी हो तो तकदीर बदल जाती है, छोटी सी कोशिश भी जिंदगी संभाल जाती है। तो आदतों का तो दौर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर इतना बदलाव लेके आ जाती है कि अगर अच्छी आदत हो तो खूब सारी अच्छी आदतें भी आपके साथ, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ लेके आती हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही एक लिसनर को लेके आए हैं, चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? धैर्य जी, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: अभी कुछ नहीं।
0: कुछ तो कर रहे होंगे, आपने डिनर कर लिया नहीं कर लिया?
1: करने वाले हैं।
0: तो डिनर आप सही टाइम पे कर रहे हैं, वेरी गुड, ये भी एक गुड हैबिट में है। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं ना, आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आपको आदत है जो अब अच्छी लगती है, और हेल्थ के हिसाब से थोड़े से बदलाव आपको लगे कि हाँ मैं अपनी हेल्थ पे अब ध्यान देता हूँ।
1: मेरा तो रोज का सही है, मतलब आज ही चल रहा है कि मैंने सुबह यहाँ से घर से निकलता हूँ और तीन से आधा घंटे पार्क में चले जाता हूँ और लटक जाता हूँ।
0: तो लटक के जब से पार्क में आज से चालू किया है या पहले ही लटक रहे थे?
1: लटक तो मैं जहाँ पे मौका मिला था मैं वहाँ पे लटक लेता हूँ, लेकिन आज से मतलब पार्क में आज से स्टार्ट करा है।
0: पार्क आज से स्टार्ट किया है?
1: हाँ।
0: चलो ये तो अच्छी बात है, आज ही आपने। हाँ, और आज ही गुरु पूर्णिमा भी है, ये तो बहुत ही अच्छा दिन चुना है आपने एक अच्छी आदत के लिए। तो अब बताओ आप, पूरा डेली रूटीन आपका कैसे रहता है? सुबह उठ के स्कूल जाना, उसके बाद जल्दी से एकदम समराइज करके बताना। वेरी
1: गुड।
0: तो आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं धैर्य साहब, ऐसे ही करते रहे, खूब अच्छे से मन लगा के खेले भी और पढ़े भी। तो आज कोई गाना मैं अपनी मर्जी का प्ले कर दूं आपके लिए बढ़िया सा? आप ये गैस मुझे बाद में बताना कि ये इस गाने में हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, ठीक है ना?
1: और वो पहली का आंसर है टैक्सी।
0: पहली का क्या आंसर है?
1: टैक्सी।
0: टैक्सी। चलो बता दूंगा मैं सही जवाब कौन सा है, थोड़ा आसपास तो हो मगर बिल्कुल सही जवाब बताता हूँ मैं कौन सा है। और जैसे ही सही जवाब मिलेगा ना तो एक वाउचर भी मिलेगा, गिफ्ट वाउचर से संभाल के रख लेना, ठीक है? ठीक है धैर्य। तो श्रोताओं, हमारे साथ धैर्य थे जो कह रहे थे कि आज ही मैं पार्क गया सुबह सुबह और आज ही आपने इस टॉपिक पे बात कर ली और मैंने लटकना भी चालू किया। तो साहब बिल्कुल सही काम किया है आपने, सुबह सुबह उठ के पार्क जाना और थोड़ा सा अपने आप को ना कहते हैं ना फ्रेश हवा में घूमना और फ्रेश कहते हैं सारी आपकी बातें जो हैं आपके माइंड में जितना है सब कुछ फ्रेश आता है। तो बढ़िया है, लटकना भी है और लटकने ना हाइट भी अपना मेज़र करना चालू कर देना कि भाई आज पहले दिन लटका था तो मेरी कितनी हाइट थी और आज से एक महीने बाद ठीक इसी डेट पे देखना क्या एक आध इंच ऊपर नीचे हुआ नहीं हुआ, तो चेक करके ज़रूर बताएगा हमें धैर्य। तब तक सुनते एक बढ़िया सा गाना जो आपको गुनगुनाने में मजबूर कर देगा, पक्का कंफर्म कहता हूँ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद,
3: कॉल 7500153841।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। गुड हैबिट्स सिर्फ हेल्थी नहीं, रिलेशनशिप भी हमारी स्ट्रांग बनाती है। और हमारे पास हमारे लिसनर हैं अमित जी, वो कहते हैं मैं रोज घर पहुंचकर सबसे पहले पेरेंट्स के साथ 15 मिनट तक बैठता हूं। यही छोटी छोटी आदतें हैं ना, बड़े रिश्तों को बहुत ही मजबूत कर देती हैं। पहेली का आंसर तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, मगर इस एक ब्रेक और चलिए, एक गाने के बाद हम आपको इस पहेली का जवाब देंगे। तब तक सोचिए कि क्या है उसका जवाब। जो कहते हैं ना, जब खुद खर्च होती है तो दूसरे को भी खर्च कर देती है। तो इस पहेली को आपको बताना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोज पड़ती भी है और रोज कम भी होती है। तो सोचिए सोचिए और हमें मैसेज करिए। जो जवाब हमारे पास धैर्य ने दिया था उससे मिलता जुलता है, मगर आप बता सकते हैं ज़रूर कि क्या है। चलिए, हमारे एक लिसनर हैं, उनका मैसेज आया है, उनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए।
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: जी
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं को बताइए।
1: मुरादाबाद यूपी से रणबीर सिंह जेठालाल।
0: जेठालाल जी, इस समय कैसा मौसम है? इस समय आपको गर्मी ज्यादा लग रही है या हवा चल रही है?
1: ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है। आपके गाने सुनने में मजा आ रहा है।
0: हमारे गाने सुनने में मजा आ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है और आपकी कौन सी एक आदत है जो आपको बहुत अच्छी लगती है।
1: जी हमारा तो रूटीन सही रहता है, मगर हमें सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें।
0: बहुत बढ़िया जेठालाल जी,
1: जो परेशान हो उसकी, जो दिखावा करे उसकी नहीं।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात कहा। जो परेशान हो और हमें पता लग जाए कि वो परेशान है तो ज़रूर जो है ना उसकी मदद तो ज़रूर करनी चाहिए।
1: जी मैं दिल्ली से आ रहा था सर।
0: हाँ जी,
1: बस तो वो गाजियाबाद से कुछ सवारी बैठी तो वो बैठ गए। बैठने के बाद जब उन्होंने कंडक्टर ने कहा पैसे दो, तो उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे कम पड़ गए।
0: मतलब टिकट के पैसे कम पड़ गए उनके पास।
1: कम पड़ गए, तो उसमें दो लेडीज थी, एक जेंट्स थे।
0: ओके,
1: अब मैंने कि भाई मैं इनसे कहूंगा तो ये पूछेंगे, ये कहेंगे हम ये क्यों कह रहे हैं हमसे।
0: हाँ जी,
1: थोड़ा आजकल का साहब थोड़ा डर सा लगता है ना सर।
0: ये तो है सर, डर तो लगता ही है थोड़ा थोड़ा।
1: हाँ, अब वो बस वाले ने टिकट काट दिए और जो कह मैं तो पैसे लूंगा। जब काफी जहने में होने लगी तो मैंने कि भाई साहब आप बताइए आपको कितने पैसे कम पड़ना है। बोले नहीं नहीं थोड़े बहुत कम पड़ना है। मैंने बता दो, वो मैंने पैसे उन्हें दे दिए। तो वो बस वाले तो कह रहे थे आप कपूर कंपनी पे उतार देंगे, वहीं हम उतर के आपको पैसे दे देंगे। वो कंडक्टर बोला नहीं जी मुझे तभी चाहिए। तो सर मैंने उन्हें पैसे दिए। तो मैं तो चाहता हूँ कोई भी इंसान हो, अगर हम इसका अधीन है या किसी की मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत भी,
0: क्या बात है रणवीर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि कौन सा मदद जो है पूरी दिल से निकली और आपने देखा सुना, थोड़ी सी उनकी मजबूरी समझी और वहाँ आगे आके आपने उसकी मदद करी। वैसे आजकल एक बात बताइए, गाजियाबाद से मुरादाबाद तक आ रहे हैं तो रोडवेज का क्या किराया है?
1: कम से कम मेरे ख्याल से 200 के आसपास है।
0: 200 के आसपास है साहब, हम तो एक समय में 60-70 रुपए में पहुंच जाते थे। तो चलिए बहुत ही बढ़िया रहा। कौन सा गाना सुनेंगे रणवीर जी?
1: वही वाला है, सीधा चाहे टूट भी जाए दिल ना किसी का टूट न पाए।
0: क्या बात है, गाना भी आपने इतना अच्छा चुना है। कोई शायरी सुनाएंगे चलते चलते?
1: बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: जरूर बताइए सुनाइए सर।
1: टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, जिंदा रहने की हमको एक वजह दे जाओ।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब, बढ़िया साहब। शायरी हो तो जेठालाल जी जैसी हो।
1: अरे साहब आप आपके उस पर चल रहे हैं, हम तो पद चिन्हों पे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, आप पद चिन्हों पे चलते चलते एक बार लाइन पार आ जाइए, रामलीला मैदान के पास
1: ना, ना,
0: जरूर मुलाकात
1: देख लिया मैंने, आज देख लिया पानी बहुत बरबाद आपके स्टूडियो के बारे
0: पानी बहुत बरबाद कोई बात नहीं सर, हम
1: पानी सड़क पे पानी है, पानी पर सड़क है
0: सर। ये जो है ना आजकल कंपटीशन चल रहा है कि कौन से मोहल्ले गली में जितने स्विमिंग वाले तैराकी हैं, कौन से गली मोहल्ले में ज्यादा रहते हैं, तो ये पूरे मुरादाबाद में कंपटीशन चल रहा है, जहाँ भी आपको पानी भरे मिले इसका मतलब वहाँ पे तैराकी लोग बहुत ज्यादा है।
1: नहीं सर ये वाली बात नहीं है, बात यह है आपने क्या कोई आपसे मिलने आया है, आपको रखने पानी भर जा।
0: बिल्कुल सही कर, चलिए साहब सही पकड़े हैं, बिल्कुल जेठालाल जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने बात,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुनते हैं आपकी फरमाइश।
1: ओके
0: धन्यवाद जेठालाल जी, नमस्कार, शुभ रात्रि। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे जेठालाल जी, जिन्होंने बताया कि उनकी आदतों में एक आदत है मदद करना, और ये आदत नहीं, ये एक अंदर से कहते हैं ना कहीं से इंसानियत और दिल की बात है जो निकल के आ जाती है कि आप दूसरों की मदद बिना कहे, कभी कभी सिर्फ बातें ही सुन के मदद हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने किस तरीके से एक सफ़र में कितनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, उन्होंने भी मदद करी उसकी कि जो कहीं ना कहीं मजबूर था और पैसे नहीं थे उस समय, और उसे सफ़र करना भी ज़रूरी था। तो चलिए आपके पास भी कोई एक ऐसी हैबिट जो आपके अंदर आई हो अभी, और क्या दिनचर्या रहती है आपकी जो थोड़ी बहुत दूसरों को भी सिखा जाए कुछ ना कुछ, तो हमें ज़रूर बताएं 9837896896 पे हमें मैसेज करें या फिर कॉल करें जल्दी से। और तब तक ही सुनते हैं गाना बढ़िया सा।

பண்ணு யாரு

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना रेडियो स्टेशन। हर दिन एक नई शुरुआत हो, हर सुबह एक नया इरादा हो, जो आदत खुद को बेहतर बनाए बस वही जिंदगी का वादा हो। तो जी ऐसे ही होता है अपने से कुछ ना कुछ वादा। इससे पहले जो हम गाना सुन रहे थे आदमी जो कहता है आदमी जो कहता है, वो हमारे एक लिसनर अनुज जी की फरमाइश पे था। अनुज जी आप जहाँ भी हैं इस समय, गाड़ी में हैं या घर पे हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आनंद लीजिए और खूब मस्ती कीजिए और खूब सेहत से, मतलब कहते हैं ना एकदम हेल्दी रहिए सर। तो आज करते हैं अपने हम एक लिसनर से बात। उससे पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं एक मैसेज जो आया है हमारे ही एक रेगुलर लिसनर का, ललिता कश्यप जी मुरादाबाद से। कहती हैं सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आप हम सबसे पूछ रहे हैं, धन्यवाद ललिता जी। सर हमारा जवाब है हमारा हमेशा समय इक्वल हो चुका है भैया जी, क्योंकि समय के साथ साथ थोड़ा सा बदलना पड़ता है। हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने रोज का रूटीन घर पे का काम करने से शुरू हो जाता है और साथ में 6:00 बजे फिर हम एफएम ऑन कर देते हैं। क्या बात है, आपकी रोज़मर्रा के में समय में हमारा एफएम भी साथ है तो बहुत इससे अच्छी बात क्या है। उसके साथ साथ हमारा समय भी कट जाता है, क्या बात है। बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना, उनका नाश्ता बनाना, साथ में घर के सारे कार्य करना और साथ में एफएम सुनते रहना। तो ललिता जी बहुत ही बढ़िया आपका डेली रूटीन है, सुबह से लेकर शाम को आपको पता ही नहीं चलता होगा, बीच बीच में आप एफएम लगा लेती होंगी और हमारा चेक करते रहते होंगे कि सही से नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा, गाने आपके पसंद के बज रहे हैं नहीं बज रहे हैं। हर लफ्ज़ में अपनापन, हर बात में कमाल, अखिल सर की आवाज़ से सस्ता है हर ख्याल। 89.6 एफएम की पहचान है वो, यूं ही नहीं दिलों पे राज करने का रखते हैं बेमिसाल हुनर सही। धन्यवाद धन्यवाद ललिता जी, आपने इतनी अच्छी शायरी में कितनी बढ़िया बातें कही हैं, मैं तो कहता ना एकदम याद रह जाएगी अब ये शायरी मेरे को अपने साथ। सर हम सब खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लीजिए और हम आपका शो भी सुन रहे हैं, ललिता कश्यप मुरादाबाद से। धन्यवाद, हम खाना खा लेंगे, आप भी खाना खा लीजिए। और ये लौकी तुरई बन रही है आज या फिर बन रही है कोई नई सब्जी, ये भी बता दीजिए। आज है एक्टर संजय दत्त जी का हैप्पी वाला बर्थडे, तो विश यू अ हैप्पी बर्थडे संजय दत्त जी। हैप्पी बर्थडे संजय दत्त जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ पूरे मुरादाबाद की तरफ से और ललिता कश्यप जी की तरफ से। चलिए हम करते हैं लिसनर से बात, क्योंकि ये है हमारे आखिरी इस समय लिसनर इस शो के और फिर होगी कल आप लोगों से मुलाकात। तो उससे पहले करते हैं थोड़ा सा और धमाल। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: ठीक है साहब।
0: सर अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मोहम्मद उस्मान शाह गुप्ता बोलना की जारत के बीच है, नदी पे से बोल रहे हैं। कन्या पिक्चर का गाना सुनना है, बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते हैं अच्छे।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली है साहब, ये गाना भी इतना अच्छा है और ये बात भी बिल्कुल अच्छी है।
1: ये सर
0: बच्चों की जो शैतानी है ना,
1: ये
0: बच्चों की जो शैतानियां हैं वो जब भी हम देखते हैं तो एकदम ही छोटी छोटी सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है।
1: ये सर
0: सही कह रहा हूँ।
1: मैं कल से उनकी नजर से जब मेरी नजर टकराई, मेरी खिड़की भक्त गवाही बनकर इतराई, जब उन्होंने मुझसे देख ली अपनी खुदाई, वो बेनकाब हो गए बाग में जितने पेड़ थे बबूल के, वो ये सब गुलाब हो गए।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शायरी। तो उस्मान जी आप ये बताइए आपका दिन जो है कैसे पूरा व्यतीत होता है, कौन सी आदत है जो आपके अंदर बहुत अच्छी है मदद करने के अलावा?
1: मदद करने के अलावा क्या, सुबह ही उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाथे धोते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम में बिजी लग जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
1: जी सर
0: सही है, बहुत ही बढ़िया उस्मान जी। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ये फरमाइश करते हैं अभी पूरी। कोई शायरी इतनी पक्का पक्का पक्का, इतनी अच्छी शायरी सुनाइए, कल फिर एक बढ़िया सी शायरी सुनेंगे आपसे उस्मान जी।
1: ठीक है सर,
0: धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ उस्मान जी, और इनकी शायरी तो आपको पता ही है, जो भी निकाल के लेके आते हैं ढूंढ के पता नहीं कहाँ से एकदम गजब सी लेके आ जाते हैं। कभी कभी हमारी शायरी हमें लगती है कि भाई साहब कहाँ रह गई थी। तो जो पहली का आंसर था ना, वो आपको पता तो चली गया होगा, वरना आप लोगों ने इतना तो गैस मार लिया होगा। पहली का जो आंसर है वो है मोमबत्ती, कैंडल। हाँ जी, जितनी जलती है ना उतनी ही रोशनी ज़्यादा फैलाती है, खुद भी कम होती रहती है मगर रोशनी बढ़ाती रहती है। तो साहब मोमबत्ती तो अब पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ जलती है, अब तो दिवाली के टाइम पे ही मोमबत्ती लगा लेते हैं, उसी से पटाखे फोड़ते रहते हैं कि आज ये मोमबत्ती थोड़ा सा लंबा चलेगी, मगर हमारी तो कभी कभी एक बम के धमाके से मोमबत्ती बुझ जाती थी। मैंने कहा चलो जी फिर जलाओ, माचिस की डब्बी तभी भी लेके आनी होती। हमारे एक लिसनर है राहुल जी, कहते हैं मैं मोबाइल के स्क्रीन टाइम को कम कर दिया है और अब रोज़ बुक्स पढ़ता हूँ, क्या बात है। राहुल जी सबसे बढ़िया मैसेज आया अभी तक लिसनर्स में हमारे पास कि क्या हैबिट आपने बढ़िया करी है कि मोबाइल का आपने स्क्रीन टाइम कम कर दिया है। ना चाहते हुए भी कभी कभी होता है ना, बस चलो एक बार इंस्टाग्राम की रील देख लेते हैं, फेसबुक की रील देख लेते हैं या किसी का व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं, ना चाहते हुए भी मोबाइल का वो बीच वाला जो बटन है वो दब जाता है और उस पर फिंगरप्रिंट का निशान आता है ना कि चलो टच करो और आपका स्क्रीन खुल जाता है, वो खुल ही जाता है साहब। मगर कमाल करते हो राहुल जी, अगर आपने इस पे इस हैबिट पे कंट्रोल कर लिया है तो सल्यूट है अंदर से दिल से। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हैबिट थोड़ी सी कम हो जाए, मगर क्या करें, मीडिया से जुड़े हुए हैं ना, आसपास के सोशल नेटवर्क से ऐसे जुड़े हुए हैं कि बार बार हर एक दो मिनट में बटन दबी जाता है, देखना पड़ता है कि साहब क्या चल रहा है हालचाल, और इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो अगर ना पता चले तो फिर खुद का एक प्रोटेस्ट खड़ा हो जाए। मगर आपने बहुत बढ़िया कहा, ये भी एक प्रोटेस्ट से कम नहीं है जो आपने अपना स्क्रीन टाइम कम किया है। हर दिन एक नई शुरुआत हो, हर सुबह एक नया इरादा हो, जो आदत खुद को बेहतर बनाए बस वही ज़िंदगी का वादा हो। तो श्रोताओ, इसी शायरी के साथ आज के लिए लेते हैं अलविदा, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए मस्ती के साथ। और कहते हैं ना, आपके लिए कोई भी हैबिट और कोई भी अच्छी आदत जो भी आपने अपनाई है आज से या थोड़े टाइम पहले से, तो उसको कंटिन्यू करना दोस्त, उसे छोड़ना नहीं है। तो मैं था आपका दोस्त, हूँ आपका दोस्त अभी भी, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 89.6 मेगाहर्ट्स, गुनगुनाते रहो, बजाते रहो, और ये बढ़िया सा सॉन्ग सुन के चलते हैं साहब।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।